0: अरे ये लाहौर इलाकों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
1: क्या हुआ चचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
0: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए हैं, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
1: तो मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
0: अरे बेटा कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटरू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ आ गए?
1: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: अच्छा?
1: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी।
0: अच्छा कौन सा ऐप है वो?
1: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
0: जयपुर रेडियो? पर बेटा हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर?
1: चाचा देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
0: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
1: लाइए, मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो। तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान,
2: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
3: जयपुर रेडियो अपनार आवाज अपनार परिचय, सुनते थाकुन बंधुगण, जयपुर रेडियो
2: आपकी आवाज का जादू, कैसे रहे खुद पर काबू, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
4: तवा बुधी राय आयो जयपुर रेडियो ते भक्ति आराधना।
2: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम गीता दर्शन।

कभी सोचा है क्यों जीवन में जब समस्याएं बढ़ जाती हैं, हम एक उलझन में फंस जाते हैं? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता हमें कहीं नहीं ले जाएगा। अगर आप भी इस स्थिति से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये उस समय की बात है जब महाभारत के मैदान में अर्जुन ने अपनी कर्तव्य की राह पर चलने में संकोच किया। उसकी आत्मा युद्ध में शामिल होने के कष्ट से घबराई हुई थी और वो ये समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना चाहिए। अर्जुन जो महान योद्धा था, उस दिन किसी कमजोर इंसान की तरह भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन चाहता है। वो खुद को नकारात्मक विचारों से घिरा हुआ महसूस कर रहा था। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसके लिए सही रास्ता कौन सा है। युद्ध के मैदान में उसकी आंतरिक दुविधा और मानसिक अवसाद का कोई हल नहीं दिखाई दे रहा था। यही वो समय था जब श्री कृष्ण ने उसे भगवद गीता के 12वें अध्याय के रूप में उस अमूल्य ज्ञान का उपदेश दिया जिसे आज हम अपनी जीवन की दिशा को बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अध्याय 12 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह स्पष्ट किया कि भक्ति जीवन का सबसे सशक्त और सरल मार्ग है। इस भक्ति के मार्ग में न केवल भगवान के प्रति प्रेम बल्कि खुद से अपनी आत्मा से भी सच्ची निष्ठा और समर्पण की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भक्ति की शक्ति से ही हम अपने भीतर छिपे डर, संकोच और मानसिक उलझनों को पार कर सकते हैं। भक्ति का रास्ता कभी भी सरल नहीं होता, लेकिन जब हम इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाते हैं तब ये हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। इस अध्याय में भगवान ने यह भी बताया कि भक्ति के माध्यम से हम न केवल अपने संसार से जुड़ाव महसूस करते हैं बल्कि हमारी आत्मा की सच्चाई को भी समझ पाते हैं। अर्जुन की तरह हम भी अक्सर जीवन के जटिल सवालों से घिर जाते हैं। कभी कभी ये लगता है कि जीवन में कई रास्ते हैं लेकिन सही दिशा कौन सी है ये समझ पाना मुश्किल हो जाता है। ये संघर्ष तब और बढ़ जाता है जब हम मानसिक और भावनात्मक रूप से थक चुके होते हैं। लेकिन अध्याय 12 का ये उपदेश हमें ये समझाता है कि जब हमें सही मार्गदर्शन मिल जाए तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं और जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। इस अध्याय में विशेष रूप से ये बात कही गई है कि भगवान के प्रति समर्पण में जो शक्ति है वो हमारे जीवन के हर पहलू को रूपांतरित कर सकती है। अगर हम खुद को और अपनी भावनाओं को शुद्ध करना चाहते हैं, अगर हम अपनी इच्छाओं और द्वंद्वों से मुक्त होकर शांति की तलाश में हैं, तो हमें भक्ति के मार्ग को अपनाना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि हर कोई भक्ति के रास्ते पर चल सकता है, लेकिन ये उस व्यक्ति की निष्ठा और उसकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है कि वो इसे कितनी गहराई से समझता है और किस प्रकार से अपने जीवन में लागू करता है। आप सोच सकते हैं कि भक्ति का मार्ग सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक शुरुआत है। भक्ति का असली अर्थ तब समझ आता है जब हम इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू करते हैं। ये एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसमें हम भगवान से जुड़ते हैं और अपने भीतर की गहरी शक्तियों को जागृत करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था कि जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर निष्ठावान रहते हैं उनके लिए दुनिया के सभी संघर्ष आसान हो जाते हैं। आज हम अध्याय 12 की गहरी समझ को लेकर आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। हम ये जानेंगे कि भक्ति के मार्ग पर चलने से न केवल हमारी मानसिक स्थिति सुधरती है बल्कि हम जीवन में सच्ची सफलता भी प्राप्त करते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस प्रकार से सही दिशा

हर बिंदु को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार श्री कृष्ण की भक्ति में छिपे ज्ञान से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस ज्ञान से आपका जीवन जरूर बदलने वाला है। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ये जिज्ञासा प्रकट की कि भक्ति के दो मार्गों में से कौन सा श्रेष्ठ है, निराकार ब्रह्मा की आराधना या साकार रूप की भक्ति, तो ये स्पष्ट था कि अर्जुन के मन में भक्ति का सही स्वरूप जानने की उत्सुकता थी। ये सवाल उन सभी लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो जीवन में सही आध्यात्मिक मार्ग की तलाश में है। श्री कृष्ण ने बड़ी ही सटीकता और गहराई से इस प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों मार्ग महत्वपूर्ण है, लेकिन साकार रूप की भक्ति को सरल और सहज बताया। उन्होंने समझाया कि जब एक भक्त भगवान के साकार रूप की पूजा करता है तो वो भावनात्मक रूप से भगवान के साथ गहराई से जुड़ता है। ये जुड़ाव न केवल मन को स्थिर करता है बल्कि व्यक्ति को आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करता है। साकार रूप में भक्ति करना मनुष्य के लिए आसान होता है, क्योंकि हमारा मन और हृदय दृश्य और अनुभवात्मक चीजों से जल्दी जुड़ता है। दूसरी ओर श्री कृष्ण ने यह भी स्वीकार किया कि जो लोग निराकार ब्रह्मा की पूजा करते हैं वे भी उच्च आध्यात्मिक स्थिति में होते हैं, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ये मार्ग कठिन है। निराकार ब्रह्मा में श्रद्धा रखने वाले को अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित करना होता है और हर अनुभव से परे जाकर केवल आत्मा और ब्रह्मा की एकता को समझना होता है। ये मार्ग बहुत गहन और अनुशासन की मांग करता है जो हर किसी के लिए संभव नहीं है। इस संवाद के माध्यम से श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि भक्ति का मार्ग केवल आस्था का विषय नहीं है, बल्कि ये हर व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक स्थिति के अनुसार होता है। जो लोग भगवान को साकार रूप में पूजते हैं उनके लिए भक्ति जीवन के हर पहलू में एक आनंदमय अनुभव बन जाती है। उनके जीवन में स्थिरता, श्रद्धा और प्रेम का समावेश होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि निराकार ब्रह्मा की पूजा गलत है। ये केवल ये दर्शाता है कि ये मार्ग चुनौतीपूर्ण है और इसे अपनाने के लिए गहरे ज्ञान और ध्यान की आवश्यकता होती है। इससे हमें अपने जीवन में ये समझना चाहिए कि भगवान तक पहुंचने के रास्ते अनेक हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है अपने मार्ग पर सच्चे और समर्पित रहना। अगर हम साकार रूप में भगवान की पूजा करते हैं तो हमें अपनी भक्ति में प्रेम और श्रद्धा का समावेश करना चाहिए, और अगर हम निराकार ब्रह्मा में विश्वास रखते हैं तो हमें अपने मन को नियंत्रित करते हुए ध्यान और साधना के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का ये उत्तर हमें ये भी सिखाता है कि भक्ति केवल किसी विशेष पद्धति का नाम नहीं है, ये भगवान के प्रति हमारा समर्पण है। चाहे वो साकार रूप हो या निराकार, सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन को भगवान के चरणों में अर्पित करें। जीवन की चुनौतियों के बीच भी अगर हमारी भक्ति अडिग रहती है तो यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति के माध्यम से आत्मा की उन्नति को जीवन का सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग बताया। जब हम ईश्वर में श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तब हमारा जीवन केवल बाहरी साधनों पर निर्भर नहीं रहता बल्कि आंतरिक रूप से संपूर्ण और शुद्ध हो जाता है। ये भक्ति हमें न केवल जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी स्थिरता प्रदान करती है। श्री कृष्ण ने समझाया कि जो व्यक्ति अपने मन और हृदय को परमात्मा के साथ जोड़ लेता है वो कभी भी दुखी नहीं होता। ये इसलिए क्योंकि वह जानता है कि हर परिस्थिति, चाहे वो सुख हो या दुख, भगवान की इच्छा और योजना का हिस्सा है। इस विश्वास से वो व्यक्ति जीवन की हर स्थिति को सहजता और समर्पण के साथ स्वीकार करता है। ऐसा व्यक्ति बाहरी कठिनाइयों से प्रभावित हुए बिना अपने अंदर गहरी शांति का अनुभव करता है। एक आस्थावान भक्त जब किसी कष्ट या पीड़ा से गुजरता है तो उसे भगवान की इच्छा मानकर सहर्ष स्वीकार करता है। वो समझता है कि ये उसकी आत्मा को और शुद्ध करने का एक माध्यम है। इस प्रकार भक्ति हमें न केवल ईश्वर के करीब लाती है बल्कि हमारे दृष्टिकोण को भी परिवर्तित करती है।

सामान्य व्यक्ति कष्ट में टूट जाता है, वही भक्ति करने वाला व्यक्ति उन क्षणों में और भी मजबूत बनता है, क्योंकि वो जानता है कि भगवान उसकी हर स्थिति में साथ है। भक्ति केवल भावनात्मक या आध्यात्मिक जुड़ाव नहीं है, ये आत्मज्ञान का भी मार्ग है। जब हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, तब हमारा मन सांसारिक इच्छाओं और बंधनों से मुक्त होता है। ये मुक्ति हमें आत्मा के सत्य स्वरूप को जानने और अनुभव करने का अवसर देती है। भक्ति की ये स्थिति आत्मज्ञान का आधार बनती है, जहाँ व्यक्ति अपने और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं देखता। श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं हमें ये बताती है कि भगवान की भक्ति न केवल आत्मा की उन्नति करती है, बल्कि जीवन को एक नया दृष्टिकोण भी देती है। भक्ति हमें ये सिखाती है कि हर कष्ट और अनुभव हमारे भीतर छिपी दिव्यता को उजागर करने का साधन है। इसलिए अपने जीवन में भगवान की भक्ति को अपनाएं। ये न केवल आपको जीवन की अनिश्चितताओं से निपटने की ताकत देगा, बल्कि आपको एक ऐसा आंतरिक संतुलन और शांति प्रदान करेगा, जिसे कोई भी बाहरी परिस्थिति डिगा नहीं सकती। भक्ति के माध्यम से ही हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं और आत्मज्ञान के शिखर तक पहुंच सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो शिक्षा दी है, वो जीवन को पूरी तरह से समझने और उसे सही दिशा में चलाने का मार्गदर्शन करती है। जब कोई व्यक्ति भगवान के गुणों का निरंतर स्मरण करता है, तो उसका मन दुनिया की मोहमाया और अवसाद से मुक्त हो जाता है। वो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहता है, क्योंकि भगवान के नाम में उसे आंतरिक शांति और बल मिलता है। ऐसा व्यक्ति संसार की अस्थिरता से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसकी आस्था और विश्वास भगवान में स्थिर होता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि एक सच्चा भक्त अपने सभी कार्यों को भगवान के चरणों में समर्पित करता है। वो किसी भी कार्य को खुद के लिए नहीं करता, बल्कि भगवान की सेवा के रूप में करता है। जब हम अपनी हर क्रिया और कर्तव्य को भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं, तो हम संसार के कार्यों से अपना मोह तोड़ लेते हैं और जीवन में एक गहरी शांति का अनुभव करते हैं। ये समर्पण हमें ये सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य भगवान की सेवा है और हर कार्य को उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम के रूप में करना चाहिए। भक्ति का मुख्य उद्देश्य भगवान से मिलन है और इस मिलन की अवस्था परम शांति की होती है। जब भक्त भगवान के साथ आत्मीय संबंध में होता है, तब उसका मन किसी भी प्रकार के शांति की तलाश में नहीं होता, क्योंकि वो शांति उसके भीतर ही होती है। ये मिलन केवल भक्ति में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता और प्रेम में भी है। जब हम भगवान से मिलते हैं, तो हमें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उस अवस्था में परम शांति का अनुभव होता है। भगवान में शरण लेने से जीवन में सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। शरणागति का मतलब है कि हम अपनी संपूर्ण इच्छाओं, विकारों और अहंकार को भगवान के पास छोड़ देते हैं। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, तो वो हमारी सभी गलतियों, पापों और दोषों को दूर कर देते हैं। भगवान की कृपा से हम अपने आत्मज्ञान और शुद्धता की ओर बढ़ते हैं और जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो लोग दूसरों की सेवा करते हैं, वे भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। सेवा का ये मार्ग केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि मानवता की सेवा भी है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हम भगवान की रचनाओं के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम को व्यक्त करते हैं। भगवान का प्रिय वही होता है जो न केवल अपनी भक्ति में गहराई से रत होता है, बल्कि संसार के लोगों की भलाई के लिए काम करता है। सेवा के माध्यम से हम भगवान के साथ अपने संबंध को और गहरा करते हैं और अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ते हैं। इससे हमें ये समझना चाहिए कि भक्ति केवल पूजा और ध्यान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे हर कार्य, हर सेवा और हर पल में समर्पण और प्रेम का प्रतीक बन जाती है। जब हम भगवान के गुणों का ध्यान करते हैं, जब हम अपने कार्यों को समर्पित करते हैं और जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, तो हम वास्तव में भक्ति के उच्चतम स्वरूप को जीते हैं। इस भक्ति से हम अपने जीवन में शांति, संतुलन और उद्देश्य का अनुभव करते हैं और भगवान के साथ मिलन की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के हर पहलू में
हमें एक महान शिक्षा दी है जो हमारे जीवन को सही दिशा में चलने का मार्गदर्शन करती है। जीवन में हर कार्य को भगवान के लिए करना चाहिए, न कि किसी निजी लाभ के लिए। जब हम अपना हर कार्य, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, भगवान के लिए करते हैं, तो हमारा जीवन परम उद्देश्य की ओर बढ़ता है। ऐसे कार्यों में अहंकार या स्वार्थ नहीं होता और हमें इस संसार में कोई भी परिणाम की चिंता नहीं रहती। हम केवल अपने कर्तव्यों को भगवान की इच्छा के रूप में स्वीकार करते हैं और उनके लिए समर्पित रहते हैं। इससे न केवल हमारा जीवन सरल होता है, बल्कि हमारे कार्यों में भी गहरी आस्था और संतोष का भाव आता है। जो लोग क्रोध, घृणा और अहंकार से मुक्त होते हैं, वे भगवान के प्रिय भक्त होते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि भक्ति का वास्तविक स्वरूप केवल पूजा या ध्यान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे आचरण और भावनाओं में भी व्यक्त होती है। जब हम क्रोध, घृणा और अहंकार से मुक्त होते हैं, तो हम एक शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति बनते हैं जो भगवान के करीब होता है। ऐसे भक्त अपने मन में किसी प्रकार की नफरत या द्वेष नहीं रखते और वे अपने जीवन में शांति और सौहार्द का पालन करते हैं। भगवत भक्ति का मार्ग सरल और सीधे दिल से किया गया कार्य है। श्री कृष्ण ने हमें बताया कि भक्ति का मार्ग कोई कठिन या जटिल नहीं है। ये केवल हमारे दिल से भगवान के प्रति श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का मार्ग है। जब हम भगवान के साथ अपने संबंध को सरलता और ईमानदारी से जोड़ते हैं, तो हमें किसी विशेष तरीके या विधि की आवश्यकता नहीं होती। ये एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है, जो हमें भीतर से शांति और संतोष प्रदान करती है। सच्चे भक्त के मन में कभी द्वेष और ईर्ष्या नहीं होती। एक सच्चा भक्त अपने जीवन को भगवान की सेवा और प्रेम के रूप में जीता है। उसके मन में न तो किसी से प्रतिस्पर्धा होती है और न ही किसी से नफरत। वो हर व्यक्ति में भगवान का दर्शन करता है और इसलिए किसी के प्रति भी द्वेष या ईर्ष्या नहीं रखता। ये भावना ही उसे शुद्ध और सच्चा बनाती है और भगवान के प्रति उसकी भक्ति को और भी प्रगाढ़ करती है। एक सच्चा भक्त हमेशा संतुलित और संयमित रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये सिखाया कि भक्ति केवल प्रेम का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये आत्मनियंत्रण और संतुलन का भी प्रतीक है। जब हम भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, तो हमारे भीतर एक प्राकृतिक संयम और संतुलन उत्पन्न होता है। हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और जीवन के सभी पहलुओं में संतुलित रहते हैं। ये संतुलन न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे आत्मिक विकास के लिए भी आवश्यक है। सारांश में श्री कृष्ण ने हमें ये सिखाया है कि सच्ची भक्ति हमारे आचरण, हमारी भावनाओं और हमारे कार्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जब हम भगवान के लिए अपने कार्य करते हैं, जब हम क्रोध, घृणा और अहंकार से मुक्त रहते हैं, जब हम सरलता और ईमानदारी से भक्ति करते हैं और जब हम संतुलित और संयमित रहते हैं, तो हम भगवान के प्रिय बन जाते हैं। इस तरह से हम न केवल अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं, बल्कि भगवान के साथ अपने संबंध को भी प्रगाढ़ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें जीवन के वास्तविक सार को समझाया है और उनके उपदेशों से हमें एक नया दृष्टिकोण मिलता है कि कैसे हम अपने जीवन को संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ से मुक्त रहता है, वो भगवान का सबसे प्रिय भक्त होता है। जब हम अपने जीवन में स्वार्थ और लोभ को त्यागते हैं, तो हम भगवान के साथ एक सच्चे और शुद्ध संबंध स्थापित करते हैं। स्वार्थ और लोभ से मुक्त व्यक्ति अपनी इच्छाओं को संयमित करता है और अपने कार्यों में केवल सत्य और नैतिकता का पालन करता है। इस प्रकार वो अपने जीवन में भगवान की कृपा और आशीर्वाद को आकर्षित करता है। श्री कृष्ण ने बताया कि जो लोग अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और ईश्वर से शरण लेते हैं, उनका उद्धार होता है। हम सभी से कभी ना कभी पाप होते हैं, लेकिन जब हम अपने पापों का एहसास करते हैं और सच्चे मन से भगवान से माफी मांगते हैं, तो हम शुद्ध हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति ईश्वर से शरण लेते हैं, उनकी सभी गलतियां और पाप क्षमा हो जाते हैं।
और वे मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। ये सिखाता है कि पश्चाताप और शरण लेने से न केवल हमारी आत्मा शुद्ध होती है बल्कि हमें भगवान की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। भक्ति से मनुष्य के भीतर सच्ची शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। जब हम भगवान के प्रति भक्ति और श्रद्धा के साथ जीवन जीते हैं तो हमारे मन में शांति का वास होता है। भक्ति के मार्ग पर चलने से हम अपने भीतर संतोष की भावना महसूस करते हैं क्योंकि अब हमारे जीवन का उद्देश्य केवल भगवान की सेवा और भक्ति बन जाता है। इस शांति और संतोष के माध्यम से हम जीवन की परेशानियों का सामना सहजता से कर पाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति भगवान के प्रति निष्ठावान होते हैं उनका जीवन सुखमय होता है। जब हम भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा और विश्वास रखते हैं तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ढाल सकते हैं। निष्ठा का अर्थ केवल भगवान के प्रति श्रद्धा रखना नहीं है बल्कि ये अपने हर कार्य और विचार में भगवान की उपस्थिति को महसूस करना है। ये निष्ठा हमें जीवन के हर संघर्ष में मजबूती देती है और हमें सुख की अनुभूति कराती है। जो व्यक्ति प्रेम और शांति से भगवान की पूजा करते हैं वे जीवन में हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। भगवान की पूजा केवल आचार व्यवहार तक सीमित नहीं है बल्कि ये एक सच्चे प्रेम और शांति के साथ की जाने वाली प्रक्रिया है। जब हम भगवान के प्रति प्रेम और शांति का अनुभव करते हैं तो हमारे भीतर एक अनोखी शक्ति उत्पन्न होती है। इस शक्ति के साथ हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं क्योंकि भगवान का प्रेम और शांति हमें हर कठिनाई में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। सारांश में भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि भक्ति का मार्ग स्वार्थ और लोभ से मुक्ति, पश्चाताप, निष्ठा, प्रेम और शांति से जुड़ा हुआ है। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल भगवान के प्रिय बनते हैं बल्कि हम अपने जीवन को संतुलित और सुखमय भी बना सकते हैं। भगवान में आस्था रखने वाला व्यक्ति आत्मनिर्भर और साहसी होता है। जब हम भगवान में पूरी आस्था रखते हैं तो हमें जीवन के प्रत्येक पहलू में शक्ति और साहस मिलता है। ये आस्था हमें जीवन की मुश्किलों का सामना करने के लिए मानसिक दृढ़ता देती है। भगवान पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति किसी भी संकट के समय खुद को अकेला नहीं महसूस करता क्योंकि वो जानता है कि भगवान हमेशा उसके साथ है, जिससे वो आत्मनिर्भर बनता है और किसी भी चुनौती से घबराता नहीं है। जो व्यक्ति भक्ति में गहरे विश्वास रखते हैं उनका जीवन सच्चे उद्देश्य की ओर बढ़ता है। भक्ति केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है बल्कि ये जीवन के उद्देश्य को समझने और उस पर ध्यान केंद्रित करने का माध्यम है। जब हम अपनी भक्ति को सच्चे विश्वास और निष्ठा के साथ निभाते हैं तो ये हमारे जीवन को सही दिशा देती है। भगवान में आस्था रखने से हमें अपने जीवन के उद्देश्य का पता चलता है और हम अपनी यात्रा में सच्चे मार्ग पर चलते हैं, जिससे हम अपनी आत्मा की उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि भक्ति का कोई निश्चित रूप नहीं होता, ये एक व्यक्तिगत और अंतरात्मा का अनुभव होता है। भक्ति एक व्यक्तिगत अनुभव है जो व्यक्ति के अंतरात्मा से जुड़ा होता है। ये किसी बाहरी रूप या कर्म से नहीं बल्कि सच्ची भावना और श्रद्धा से उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि भक्ति का कोई भी रूप हो सकता है, चाहे वो मंत्र जाप हो, पूजा हो या भगवान के साथ मानसिक संवाद। ये सब उस व्यक्ति के आस्थावान हृदय पर निर्भर करता है। हर व्यक्ति का भक्ति का अनुभव अलग अलग होता है लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही होता है, भगवान के साथ जुड़ाव और आत्मज्ञान प्राप्त करना। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हर कठिनाई का सामना सहजता से कर सकता है। भक्ति हमें मानसिक शांति और धैर्य प्रदान करती है जो हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार करती है। जब हम भगवान के प्रति अपने विश्वास को सच्चे मन से बढ़ाते हैं तो हमारी आत्मा में इतनी ताकत और धैर्य आता है कि हम किसी भी मुश्किल का सामना बिना भय के कर सकते हैं। भक्ति हमें यह सिखाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं लेकिन अगर हमारा मन भगवान में रमा हो तो हम किसी भी परेशानी से नहीं घबराते। जो व्यक्ति संतुलन बनाए रखते हैं वे भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना
एक महत्वपूर्ण गुण है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों में संतुलन बनाए रखते हैं तो हम मानसिक शांति और संतोष की स्थिति में रहते हैं। श्री कृष्ण ने यह बताया कि जो व्यक्ति जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखते हैं वे भगवान के प्रिय होते हैं। संतुलन से हमारा मन शांत रहता है और हम अपने कार्यों में ईमानदारी और निष्कलंकता से जुड़े रहते हैं। इस संतुलन के माध्यम से हम भगवान के सबसे करीबी और प्रिय भक्त बन जाते हैं। निष्कर्ष में, भगवान में आस्था रखने वाला व्यक्ति साहसी, आत्मनिर्भर और उद्देश्यपूर्ण होता है। भक्ति के मार्ग पर चलकर हम जीवन की कठिनाइयों का सामना सहजता से कर सकते हैं और इस यात्रा में भगवान के साथ हमारे रिश्ते की गहराई बढ़ती है। भगवान में विश्वास रखना और जीवन में संतुलन बनाए रखना हमें न केवल आध्यात्मिक उन्नति देता है बल्कि हमें मानसिक शांति और संतोष भी प्राप्त होता है। भक्ति का मार्ग अहंकार और स्वार्थ से मुक्त होकर परमात्मा से जुड़ने का मार्ग है। भक्ति का वास्तविक अर्थ सिर्फ पूजा और अनुष्ठान नहीं है बल्कि ये अपने अहंकार और स्वार्थ को छोड़कर भगवान से जुड़ने की एक गहरी साधना है। जब हम अपने आत्मगौरव और स्वार्थ से मुक्त होते हैं तो हम अपने दिल और मस्तिष्क को भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा और प्रेम से भर देते हैं। इस मार्ग पर चलने से हम समझ पाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य केवल अपने स्वार्थ को पूरा करना नहीं बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन है। इस प्रकार भक्ति हमें आंतरिक शांति और परमात्मा के साथ एक अडिग संबंध स्थापित करने का मार्ग दिखाती है। जो लोग भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं उनका मन कभी भी व्यर्थ विचारों से भरता नहीं है। जब हम भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं तो हमारा मन स्थिर और शांत हो जाता है। भक्ति के माध्यम से हमारा मानसिक संसार भगवान के ध्यान में रमा होता है जिससे नकारात्मक विचार, चिंता और भ्रम की स्थिति दूर हो जाती है। ऐसे लोग जो भगवान में गहरी श्रद्धा और विश्वास रखते हैं उनके मन में किसी प्रकार के व्यर्थ विचारों का प्रवेश नहीं हो पाता क्योंकि उनका हर विचार और कार्य भगवान के प्रति समर्पित होता है। यही वो मानसिक स्थिति है जो हमें संतुलित, शांति और सकारात्मक दिशा में अग्रसर करती है। भक्ति से परम शांति प्राप्त होती है। भक्ति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें मानसिक और आंतरिक शांति प्रदान करती है। जब हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करते हैं तो हमारा मन और आत्मा शांति से भर जाते हैं। भक्ति का मार्ग हमें सिखाता है कि हम बाहरी दुनिया की आपाधापी से ऊपर उठकर अंदर की शांति की ओर ध्यान केंद्रित करें। जब हम अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं तो हर कठिनाई और तनाव का सामना करने में हमें सहजता होती है क्योंकि हमारी आत्मा शांति से भरी रहती है। श्री कृष्ण ने बताया कि जो व्यक्ति सत्य और दया से जीवन जीते हैं वे भगवान के साथ एक होते हैं। श्री कृष्ण ने हमें बताया कि भक्ति का मार्ग सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है बल्कि ये हमारे जीवन के हर पहलू में सत्य और दया की भावनाओं को समाहित करता है। जो व्यक्ति सत्य बोलते हैं और दया से जीवन जीते हैं वे अपने जीवन में भगवान की उपस्थिति को महसूस करते हैं। उनके हर कार्य में भगवान का दर्शन होता है। जब हम सत्य और दया को अपनाते हैं तो हम भगवान के साथ एकजुट होते हैं क्योंकि भगवान स्वयं सत्य और दया के प्रतीक है। इसलिए भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में सत्य और दया के साथ चलना है। भक्ति का मार्ग हमें न केवल भगवान के साथ जुड़ने का मार्ग दिखाता है बल्कि ये हमें अपने जीवन को अहंकार और स्वार्थ से मुक्त कर शांति और संतुलन की दिशा में अग्रसर करता है। सत्य, दया और समर्पण से जीवन जीने वाले लोग भगवान के साथ एक होते हैं और उनके जीवन में परम शांति का वास होता है। आत्मनिर्णय और आत्मसमर्पण भक्ति के सबसे महत्वपूर्ण गुण होते हैं। जब हम आत्मनिर्णय और आत्मसमर्पण की भावना से भक्ति करते हैं तो हम अपनी पूरी इच्छा, अपने संकोच और भय को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। आत्मनिर्णय का मतलब है अपने कार्यों को सही तरीके से करना, जबकि आत्मसमर्पण का मतलब है अपने अहंकार और सभी व्यक्तिगत इच्छाओं को त्याग कर
भगवान

की इच्छा के अनुसार जीना, यही भक्ति का वास्तविक रूप है। जब हम अपने आप को भगवान के हाथों में सौंप देते हैं तो हमारी यात्रा सरल, शुद्ध और अर्थपूर्ण बन जाती है। भक्ति से व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार होता है। भक्ति के माध्यम से एक व्यक्ति अपने अंदर से न केवल मानसिक शांति पाता है, बल्कि एक अदृश्य शक्ति और ऊर्जा का अनुभव करता है। जब हम भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास और प्रेम रखते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास और बल का संचार होता है। भक्ति हमें ये समझने का अवसर देती है कि हम किसी भी कठिनाई या चुनौती से जूझने में सक्षम है, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे साथ है। इस विश्वास के साथ हम अपने लक्ष्य की ओर बिना डर और संकोच के बढ़ सकते हैं। जो भक्त परमात्मा के प्रति निरंतर प्रेम रखते हैं, उनका जीवन प्रेमपूर्ण और शांतिपूर्ण होता है। भक्ति का सबसे बड़ा गुण प्रेम है। जब कोई व्यक्ति भगवान के प्रति निरंतर प्रेम करता है तो उसका जीवन शांतिपूर्ण और संतुष्ट होता है। भगवान के प्रति प्रेम ही उसे जीवन के हर क्षेत्र में प्यार, दया और सहानुभूति की भावना से भर देता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन एक ऐसी धारा की तरह होता है जो अपने चारों ओर शांति और खुशी फैलाता है। भक्ति में प्रेम को प्राथमिकता देने से व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है और उसका संबंध भगवान से प्रगाढ़ हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भक्ति का मार्ग सच्चे आत्मज्ञान के द्वारा खुलता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा कि भक्ति का वास्तविक मार्ग तब खुलता है जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। आत्मज्ञान से अभिप्राय है आत्मा की प्रकृति और भगवान के साथ हमारे संबंध को समझना। जब हम सत्य और ज्ञान के साथ भगवान को जानने की कोशिश करते हैं तो भक्ति के मार्ग पर चलने में कोई कठिनाई नहीं होती। आत्मज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि भगवान के साथ हमारा संबंध आत्मा से है और हम उसकी अनंत शक्ति का हिस्सा है। ये ज्ञान हमें भक्ति की गहरी और सच्ची समझ प्रदान करता है। भक्ति के मार्ग में आत्मनिर्णय, आत्मसमर्पण और निरंतर प्रेम की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये हमें भगवान के करीब लाती है और जीवन को शांति और ऊर्जा से भर देती है। जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति निष्ठावान होते हैं वे दुनिया के सभी दुखों से उबर सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि जब व्यक्ति अपने जीवन में भगवान के प्रति पूर्ण निष्ठा और विश्वास रखता है तो उसे कोई भी बाहरी दुख या कष्ट प्रभावी नहीं हो सकते। ईश्वर में विश्वास रखने से हम अपने दुखों को भी भगवान की इच्छा मानकर सहन करते हैं। इस प्रकार भक्ति हमें मानसिक रूप से सशक्त बनाती है और हमें किसी भी संकट से निपटने की शक्ति देती है। ऐसे लोग भले ही शारीरिक रूप से संघर्ष करें, लेकिन मानसिक रूप से वे हमेशा शांत और स्थिर रहते हैं, क्योंकि उनका आस्था और विश्वास भगवान पर दृढ़ होता है। श्री कृष्ण ने बताया कि जो लोग भगवान के प्रति एकाग्रचित होते हैं वे अपनी जीवन यात्रा में कभी भी हारते नहीं हैं। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जब हर कार्य में ईश्वर को अपनी ध्येय और लक्ष्य मानकर चलता है तो उसे किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मिलती। भगवान के प्रति एकाग्रता का मतलब है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों में ईश्वर को सर्वोच्च स्थान देते हैं। जब हम भगवान को अपने जीवन का उद्देश्य मानकर जीते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें पराजित नहीं कर सकती। एकाग्रचित व्यक्ति अपने हर संघर्ष को ईश्वर की कृपा से पार करता है और अपने जीवन के हर कदम में विजय प्राप्त करता है। भक्ति का उद्देश्य आत्मा का सच्चा रूप जानना है। श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति का असली उद्देश्य आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझना है। जब हम ईश्वर में समर्पित हो जाते हैं और उसे पूरी श्रद्धा से अपना मार्गदर्शक मानते हैं तब हम आत्मा की वास्तविकता को अनुभव कर पाते हैं। भक्ति से हम अपनी वास्तविक पहचान को जान पाते हैं। हम न शरीर हैं, न मन, बल्कि हम एक दिव्य आत्मा है जो अनंत और शाश्वत है। ये ज्ञान हमें जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर अग्रसर करता है, जहां हम स्वयं को ईश्वर के अंश के रूप में पहचानते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि जो भक्त हर एक कार्य में भगवान का ध्यान रखते हैं वे शांति और संतोष से भरपूर होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया
कि भक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें अपने सभी कार्यों में भगवान का स्मरण करना चाहिए, चाहे वो छोटे से काम हो या बड़ा कार्य। यदि हम उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हम मानसिक शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर कार्य भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है। उनका जीवन भरे रहता है शांति और संतोष से, क्योंकि वे हर कार्य को भगवान की कृपा मानते हैं और किसी भी कार्य को अपने स्वार्थ से नहीं जोड़ते। भक्ति से मानसिक संकुचन और आत्मसंकोच समाप्त होते हैं। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अपनी सीमाओं और संकोच को पार करता है। भगवान की भक्ति से व्यक्ति के मन में आत्मविश्वास पैदा होता है, जो उसके मानसिक संकुचन को समाप्त करता है। जब हम भगवान के प्रति निष्ठा रखते हैं और उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक मानते हैं, तो हमारी आत्मा में शक्ति और स्वतंत्रता का अनुभव होता है। भक्ति हमें यह सिखाती है कि हम किसी भी संकोच, डर या आत्मसंदेह से मुक्त होकर एक सशक्त और आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में अपने जीवन को जी सकते हैं। इन बातों से हमें यह समझ में आता है कि भक्ति केवल पूजा और आराधना तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर पहलू में भगवान के प्रति निष्ठा, प्रेम और एकाग्रता की स्थिति है। जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि भगवान के करीब भी पहुंचते हैं। भक्ति का मार्ग व्यक्ति को हर प्रकार की चिंता और भय से मुक्त करता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि जब व्यक्ति अपने मन और हृदय को भगवान में समर्पित कर देता है तो उसकी सारी चिंताएं और भय दूर हो जाते हैं। भगवान पर विश्वास रखने से हम जान पाते हैं कि हम किसी भी समस्या से अकेले नहीं जूझ रहे हैं, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे साथ है। चिंता और भय अस्थाई है, लेकिन जब हम भगवान की कृपा में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं तो हम हर कठिनाई को सहजता से पार कर सकते हैं। भक्ति एक आंतरिक शक्ति है जो हमें मानसिक स्थिरता और साहस प्रदान करती है। जो व्यक्ति भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं, वे जीवन में हर चुनौती को पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि श्रद्धा का मतलब केवल आदर नहीं, बल्कि ये एक गहरी आस्था और विश्वास है। जब हम भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को पूरे दिल से समर्पित करते हैं तो वो हमें हर संघर्ष और चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। भक्त का विश्वास अडिग होता है और यही विश्वास उसे जीवन में आने वाली हर कठिनाई और परीक्षा से निपटने के लिए तैयार करता है। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति किसी भी संघर्ष में अपने भगवान के साथ होने का विश्वास रखता है और यही विश्वास उसे सच्ची शक्ति और धैर्य प्रदान करता है। भक्ति में विश्वास रखने से व्यक्ति कभी भी अकेला नहीं होता, वो हमेशा भगवान के साथ रहता है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि भक्ति का मार्ग केवल बाहरी आराधना नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक जुड़ाव है। जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं और उनका ध्यान करते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। भगवान हमारे साथ हर पल रहते हैं। वे हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारे कर्मों में हमारे साथ है। भक्ति का सबसे बड़ा लाभ यही है कि वो हमें शांति और सहारा प्रदान करती है, क्योंकि हमें ये आभास होता है कि हम कभी भी अकेले नहीं होते। भगवान का साथ हमेशा हमारे साथ रहता है और ये हमें हर क्षण में आत्मसंवेदनशील और धैर्यवान बनाए रखता है। जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में भगवान को याद करते हैं, उनका जीवन सच्ची सफलता की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जो लोग हर समय भगवान को स्मरण करते हैं, चाहे वे किसी भी स्थिति में हो, उनका जीवन सच्ची सफलता की ओर अग्रसर होता है। भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा करना नहीं है, बल्कि भगवान के प्रति निरंतर श्रद्धा और ध्यान रखना है। जब हम किसी भी परिस्थिति में भगवान का ध्यान करते हैं तो हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। ये निरंतर ध्यान हमें सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है और हमारे जीवन को एक सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन करता है। भगवान के साथ निरंतर संपर्क बनाने से व्यक्ति का जीवन पूर्ण रूप से बदल जाता है।
भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जब भगवान से निरंतर संपर्क में रहता है तो उसका जीवन स्वाभाविक रूप से बदल जाता है। भगवान के साथ लगातार जुड़ाव रखने से हम आत्मा की गहरी समझ प्राप्त करते हैं और हमारे विचार, कार्य और उद्देश्य साफ होते जाते हैं। श्री कृष्ण ने यह कहा कि जब व्यक्ति भगवान के साथ स्थायी संपर्क में रहता है तो उसकी जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल जाती है। उसका जीवन शांति, संतोष और प्रेम से भर जाता है। निरंतर भक्ति के द्वारा व्यक्ति अपने भीतर एक गहरी आंतरिक शांति और संतुलन पाता है जो उसे हर परिस्थिति में स्थिर और संतुष्ट बनाए रखता है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं वे कभी भी मानसिक व्यग्रता का सामना नहीं करते। श्री कृष्ण ने हमें बताया कि भक्ति में लीन रहने वाला व्यक्ति मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करता है। जब हम अपने मन और हृदय को भगवान में समर्पित कर देते हैं तो हर प्रकार की मानसिक व्यग्रता, चिंता और तनाव दूर हो जाते हैं। भक्ति के द्वारा मन शांत होता है और व्यक्ति एक सशक्त और सकारात्मक मानसिकता के साथ जीवन को देखता है। भगवान के प्रति अधिक श्रद्धा रखने से हमारी आंतरिक शांति बनी रहती है जिससे हम किसी भी परिस्थिति में मानसिक शांति को बनाए रख सकते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि हर भक्त के लिए भक्ति का मार्ग अलग होता है क्योंकि हर व्यक्ति का हृदय अलग होता है। भगवान के प्रति भक्ति का मार्ग हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है क्योंकि हर व्यक्ति का स्वभाव, उसकी आस्था और उसका जीवन अनुभव भिन्न होते हैं। श्री कृष्ण ने यह समझाया कि भक्ति का कोई एक तरीका नहीं है, ये हमारे हृदय और मानसिकता पर निर्भर करता है। हम अपनी भक्ति को अपनी परिस्थितियों और क्षमता के अनुसार अपनाते हैं। कुछ लोग ध्यान और साधना के माध्यम से तो कुछ लोग सेवा और समर्पण के द्वारा भगवान के करीब पहुंचते हैं। इसलिए भक्ति का मार्ग व्यक्तिगत होता है और श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हमें अपनी भक्ति को अपनी प्रकृति और आवश्यकता के अनुसार अपनाना चाहिए। भगवान की भक्ति से आत्मा की शुद्धि होती है। श्री कृष्ण ने हमें यह बताया कि भक्ति के माध्यम से हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। जब हम भगवान के प्रति अपने मन को पूरी तरह से समर्पित करते हैं तो हमारे भीतर के सभी विकार जैसे क्रोध, घृणा और अहंकार दूर हो जाते हैं। भक्ति के द्वारा आत्मा की शुद्धि होती है जिससे हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझ पाते हैं। भक्ति न केवल हमारे जीवन को बाहरी रूप से सुधारती है बल्कि ये हमारे अंदर की गहराई में जाकर हमारी आत्मा को पवित्र करती है। भक्ति के माध्यम से व्यक्तित्व में सुधार आता है। भगवान के प्रति सच्ची भक्ति के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आते हैं। जब हम अपनी आस्था को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं तो हमारी सोच, हमारी नियत और हमारा आचरण सुधरता है। भक्ति से हमारे भीतर संतुलन, संयम और विनम्रता आती है। हम जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और दूसरों के प्रति सहानुभूति और दया विकसित करते हैं। भक्ति का असर केवल हमारी आत्मा पर नहीं बल्कि हमारे पूरे व्यक्तित्व पर पड़ता है और हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। जो लोग भगवान की भक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं उनका जीवन श्रेष्ठ हो जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जब हम भगवान की भक्ति को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य मान लेते हैं तो हमारा जीवन अपने आप श्रेष्ठ बन जाता है। भक्ति से जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है और हमें जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण मिलता है। जब हम भगवान के साथ हर कार्य को जोड़ते हैं तो हमारे हर कदम में सफलता और सुख मिलते हैं। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जीवन के हर क्षण को भगवान के साथ जोड़कर जीता है और यही जीवन उसे उच्च और पूर्ण बना देता है। ये शिक्षाएं हमें ये समझने में मदद करती हैं कि भक्ति न केवल आत्मा की शुद्धि और व्यक्तित्व में सुधार लाती है बल्कि ये हमारे जीवन को एक महान उद्देश्य और दिशा भी देती है। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से हम जान सकते हैं कि भक्ति का असली सार केवल पूजा या ध्यान तक सीमित नहीं है बल्कि ये हमारे हर कार्य, विचार और आचरण में भगवान की उपस्थिति महसूस करने का तरीका है। श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति का रास्ता किसी भी मार्ग से कठिन नहीं होता, केवल समर्पण की आवश्यकता होती है। भगवान ने हमें ये शिक्षा दी
कि भक्ति का मार्ग अपने आप में सरल है, क्योंकि ये किसी बाहरी प्रयास या कठिनता पर निर्भर नहीं करता। भक्ति का मूल तत्व है समर्पण। हमारा हृदय, हमारी इच्छा और हमारे कर्म भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित होने चाहिए। जब हम भगवान के प्रति पूरी निष्ठा और श्रद्धा से समर्पित होते हैं तो भक्ति का मार्ग अपने आप सरल और सुगम हो जाता है। ये मार्ग किसी भी बाहरी कष्ट से परे है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने हृदय को शुद्ध कर देता है और भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा रखता है, उसके लिए ये मार्ग स्वाभाविक रूप से आसान हो जाता है। भक्ति से मनुष्य अपनी आत्मा के सत्य को जान सकता है। श्री कृष्ण ने भक्ति को आत्मा के सत्य को जानने का एक प्रमुख साधन बताया। जब हम भगवान में विश्वास और भक्ति रखते हैं तो हमारी आत्मा का सच्चा रूप धीरे धीरे सामने आने लगता है। भक्ति के मार्ग पर चलते हुए हम अपने असली स्वभाव को पहचान पाते हैं और जान पाते हैं कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि एक शाश्वत आत्मा है। भगवान में विश्वास और भक्ति हमें इस सत्य की गहरी समझ और आत्मज्ञान प्रदान करती है, जिससे हम आत्मा के परम उद्देश्य को समझ सकते हैं। जो व्यक्ति भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण रखते हैं, उनके लिए जीवन में किसी भी बाधा को पार करना आसान हो जाता है। जब व्यक्ति अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है तो वो हर प्रकार की बाधा या कठिनाई को सहजता से पार कर सकता है। भगवान के साथ संबंध प्रगाढ़ होने पर हर मुश्किल आसान लगने लगती है, क्योंकि भगवान की शक्ति से व्यक्ति को मार्गदर्शन और समर्थन मिलता है। भक्ति में समर्पण का अर्थ केवल आस्थावान होना नहीं है, बल्कि ये एक विश्वास है कि भगवान हर क्षण हमारे साथ है। और जो व्यक्ति इस विश्वास के साथ जीता है, वो जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना पूरी ताकत और शांति से कर सकता है। भक्ति का मार्ग शुद्ध हृदय और मन से यात्रा करने का मार्ग है। श्री कृष्ण ने हमें ये भी बताया कि भक्ति का असली मार्ग हमारे हृदय और मन की शुद्धता से जुड़ा हुआ है। जब हम पूरी ईमानदारी से और निस्वार्थ भाव से भगवान के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं तो हमारे मन और हृदय में शुद्धता और अच्छाई आ जाती है। ये मार्ग आत्मा की सच्ची शुद्धता की ओर ले जाता है, क्योंकि भगवान के साथ वास्तविक संबंध बनाने के लिए हमारा हृदय और मन शुद्ध होना चाहिए। इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति न केवल भौतिक बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त करता है। भक्ति की शक्ति से व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। भक्ति केवल बाहरी पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है, ये व्यक्ति को अंदर से सशक्त भी बनाती है। जब हम भगवान के प्रति भक्ति रखते हैं तो हमारी आत्मा में छिपी हुई शक्ति और सामर्थ्य का एहसास होता है। भक्ति हमें ये समझने की क्षमता देती है कि हम भीतर से कितने शक्तिशाली हैं और हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि भगवान के प्रति भक्ति से हमारे भीतर की असीम शक्ति जागृत होती है, जिससे हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं और उसे प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। भक्ति का मार्ग न केवल सरल है बल्कि ये आत्मज्ञान, शांति और शक्ति का स्रोत भी है। श्री कृष्ण ने हमें ये सिखाया कि भक्ति से जीवन में हर बाधा को पार किया जा सकता है और हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। जो व्यक्ति किसी भी कार्य को भगवान के लिए करते हैं, उनका जीवन सचेत और उद्देश्यपूर्ण होता है। श्री कृष्ण ने हमें ये सिखाया कि जब हम अपने सभी कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं तो हमारा जीवन अपने आप एक उच्च उद्देश्य की ओर बढ़ता है। जो व्यक्ति भगवान के लिए कार्य करते हैं, वे न केवल अपने कार्य में पूरी लगन और सत्यनिष्ठा रखते हैं बल्कि उनका जीवन उद्देश्यपूर्ण होता है। ऐसे लोग हर कार्य को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ते हैं, जिससे उनका जीवन स्वाभाविक रूप से सचेत और प्रेरित रहता है। भक्ति का ये मार्ग हमें ये समझने में मदद करता है कि जीवन में हर कार्य का एक दिव्य उद्देश्य है और जब हम उसे भगवान के लिए करते हैं तो हमें एक विशेष संतोष और आंतरिक शांति मिलती है। श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति का अभ्यास जीवन को सरल और सहज बना देता है। भगवान ने भक्ति को जीवन को सरल बनाने का एक प्रभावी मार्ग बताया है। जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे दिल
और मन में शांति का संचार होता है।

और जीवन के सभी कठिनाइयां धीरे धीरे आसान हो जाती है। भक्ति हमें किसी भी तरह की चिंता, तनाव और उलझनों से दूर रखती है। जब हम भगवान में विश्वास रखते हैं और उनके प्रति आस्थावान होते हैं, तो हमें ये महसूस होता है कि हर परिस्थिति में भगवान हमारे साथ है। इस विश्वास के कारण हमारा जीवन सरल और सहज बनता है, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान हमें मार्गदर्शन देंगे। भक्ति में विश्वास रखने से व्यक्ति के जीवन में आंतरिक शांति और संतुलन आता है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमारे भीतर की आंतरिक शांति और संतुलन मजबूत होता है। भक्ति का अभ्यास हमें मानसिक स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है। जीवन की चुनौतियों और उतार चढ़ावों में हम शांत रहते हैं और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। श्री कृष्ण ने हमें बताया कि भक्ति से मन और आत्मा दोनों में संतुलन बना रहता है। किसी भी परिस्थिति में भक्ति हमें आत्मिक शांति और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है, जिससे हम जीवन को आसानी से स्वीकार कर सकते हैं। भगवान की भक्ति में समर्पण से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति के माध्यम से हम अपने असली स्वरूप। कभी सोचा है क्यों जीवन में जब समस्याएं बढ़ जाती हैं, हम एक उलझन में फंस जाते हैं? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वो रास्ता हमें कहीं नहीं ले जाएगा। अगर आप भी इस स्थिति से गुजर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये उस समय की बात है जब महाभारत के मैदान में अर्जुन ने अपनी कर्तव्य की राह पर चलने में संकोच किया। उसकी आत्मा युद्ध में शामिल होने के कष्ट से घबराई हुई थी और वो ये समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना चाहिए। अर्जुन जो महान योद्धा था, उस दिन किसी कमजोर इंसान की तरह भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन चाहता है। वो खुद को नकारात्मक विचारों से घिरा हुआ महसूस कर रहा था। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसके लिए सही रास्ता कौन सा है। युद्ध के मैदान में उसकी आंतरिक दुविधा और मानसिक अवसाद का कोई हल नहीं दिखाई दे रहा था। यही वो समय था जब श्री कृष्ण ने उसे भगवद गीता के 12वें अध्याय के रूप में उस अमूल्य ज्ञान का उपदेश दिया, जिसे आज हम अपनी जीवन की दिशा को बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अध्याय 12 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह स्पष्ट किया कि भक्ति जीवन का सबसे सशक्त और सरल मार्ग है। इस भक्ति के मार्ग में न केवल भगवान के प्रति प्रेम, बल्कि खुद से, अपनी आत्मा से भी सच्ची निष्ठा और समर्पण की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भक्ति की शक्ति से ही हम अपने भीतर छिपे डर, संकोच और मानसिक उलझनों को पार कर सकते हैं। भक्ति का रास्ता कभी भी सरल नहीं होता, लेकिन जब हम इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाते हैं, तब ये हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। इस अध्याय में भगवान ने ये भी बताया कि भक्ति के माध्यम से हम न केवल अपने संसार से जुड़ाव महसूस करते हैं, बल्कि हमारी आत्मा की सच्चाई को भी समझ पाते हैं। अर्जुन की तरह हम भी अक्सर जीवन के जटिल सवालों से घिर जाते हैं। कभी कभी ये लगता है कि जीवन में कई रास्ते हैं, लेकिन सही दिशा कौन सी है, ये समझ पाना मुश्किल हो जाता है। ये संघर्ष तब और बढ़ जाता है जब हम मानसिक और भावनात्मक रूप से थक चुके होते हैं। लेकिन अध्याय 12 का ये उपदेश हमें ये समझाता है कि जब हमें सही मार्गदर्शन मिल जाए, तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं और जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। इस अध्याय में विशेष रूप से ये बात कही गई है कि भगवान के प्रति समर्पण में जो शक्ति है, वो हमारे जीवन के हर पहलू को रूपांतरित कर सकती है। अगर हम खुद को और अपनी भावनाओं को शुद्ध करना चाहते हैं, अगर हम अपनी इच्छाओं और द्वंद्वों से मुक्त होकर शांति की तलाश में हैं, तो हमें भक्ति के मार्ग को अपनाना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि हर कोई भक्ति के रास्ते पर चल सकता है, लेकिन ये उस व्यक्ति की निष्ठा और उसकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है कि वो इसे कितनी गहराई से समझता है और किस प्रकार से अपने जीवन में लागू करता है। आप सोच सकते हैं कि भक्ति का मार्ग सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक शुरुआत है। भक्ति का असली अर्थ तब समझ आता है जब हम इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू करते हैं। ये एक आंतरिक प्रक्रिया है
जिसमें हम भगवान से जुड़ते हैं और अपने भीतर की गहरी शक्तियों को जागृत करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था कि जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर निष्ठावान रहते हैं उनके लिए दुनिया के सभी संघर्ष आसान हो जाते हैं। आज हम अध्याय 12 की गहरी समझ को लेकर आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। हम ये जानेंगे कि भक्ति के मार्ग पर चलने से न केवल हमारी मानसिक स्थिति सुधरती है बल्कि हम जीवन में सच्ची सफलता भी प्राप्त करते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस प्रकार से सही दिशा दिखाई और कैसे हम उनकी उपदेशों का पालन करके अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में शांति, समृद्धि और सफलता चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अध्याय 12 में भगवान श्री कृष्ण ने जो बातें अर्जुन से कही है वो आज भी हमारे जीवन में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी तब थी। हर एक व्यक्ति जो अपने जीवन में संघर्ष और भ्रम महसूस करता है उसे इन उपदेशों की आवश्यकता है। आइए अब हम इस अध्याय के हर बिंदु को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार श्री कृष्ण की भक्ति में छिपे ज्ञान से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस ज्ञान से आपका जीवन जरूर बदलने वाला है। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ये जिज्ञासा प्रकट की कि भक्ति के दो मार्गों में से कौन सा श्रेष्ठ है, निराकार ब्रह्मा की आराधना या साकार रूप की भक्ति, तो ये स्पष्ट था कि अर्जुन के मन में भक्ति का सही स्वरूप जानने की उत्सुकता थी। ये सवाल उन सभी लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो जीवन में सही आध्यात्मिक मार्ग की तलाश में है। श्री कृष्ण ने बड़ी ही सटीकता और गहराई से इस प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों मार्ग महत्वपूर्ण है, लेकिन साकार रूप की भक्ति को सरल और सहज बताया। उन्होंने समझाया कि जब एक भक्त भगवान के साकार रूप की पूजा करता है तो वो भावनात्मक रूप से भगवान के साथ गहराई से जुड़ता है। ये जुड़ाव न केवल मन को स्थिर करता है बल्कि व्यक्ति को आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करता है। साकार रूप में भक्ति करना मनुष्य के लिए आसान होता है, क्योंकि हमारा मन और हृदय दृश्य और अनुभवात्मक चीजों से जल्दी जुड़ता है। दूसरी ओर श्री कृष्ण ने यह भी स्वीकार किया कि जो लोग निराकार ब्रह्मा की पूजा करते हैं वे भी उच्च आध्यात्मिक स्थिति में होते हैं, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ये मार्ग कठिन है। निराकार ब्रह्मा में श्रद्धा रखने वाले को अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित करना होता है और हर अनुभव से परे जाकर केवल आत्मा और ब्रह्मा की एकता को समझना होता है। ये मार्ग बहुत गहन और अनुशासन की मांग करता है जो हर किसी के लिए संभव नहीं है। इस संवाद के माध्यम से श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि भक्ति का मार्ग केवल आस्था का विषय नहीं है बल्कि ये हर व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक स्थिति के अनुसार होता है। जो लोग भगवान को साकार रूप में पूजते हैं उनके लिए भक्ति जीवन के हर पहलू में एक आनंदमय अनुभव बन जाती है। उनके जीवन में स्थिरता, श्रद्धा और प्रेम का समावेश होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि निराकार ब्रह्मा की पूजा गलत है। ये केवल ये दर्शाता है कि ये मार्ग चुनौतीपूर्ण है और इसे अपनाने के लिए गहरे ज्ञान और ध्यान की आवश्यकता होती है। इससे हमें अपने जीवन में ये समझना चाहिए कि भगवान तक पहुंचने के रास्ते अनेक हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है अपने मार्ग पर सच्चे और समर्पित रहना। अगर हम साकार रूप में भगवान की पूजा करते हैं तो हमें अपनी भक्ति में प्रेम और श्रद्धा का समावेश करना चाहिए, और अगर हम निराकार ब्रह्मा में विश्वास रखते हैं तो हमें अपने मन को नियंत्रित करते हुए ध्यान और साधना के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का ये उत्तर हमें ये भी सिखाता है कि भक्ति केवल किसी विशेष पद्धति का नाम नहीं है, ये भगवान के प्रति हमारा समर्पण है। चाहे वो साकार रूप हो या निराकार, सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन को भगवान के चरणों में अर्पित करें। जीवन की चुनौतियों के बीच भी अगर हमारी भक्ति अडिग रहती है तो यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति के माध्यम से आत्मा की उन्नति को जीवन का सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग बताया। जब हम ईश्वर में श्रद्धा और विश्वास रखते हैं
तब हमारा जीवन केवल बाहरी साधनों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि आंतरिक रूप से संपूर्ण और शुद्ध हो जाता है। ये भक्ति हमें न केवल जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है, बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी स्थिरता प्रदान करती है। श्री कृष्ण ने समझाया कि जो व्यक्ति अपने मन और हृदय को परमात्मा के साथ जोड़ लेता है, वो कभी भी दुखी नहीं होता। ये इसलिए क्योंकि वह जानता है कि हर परिस्थिति, चाहे वो सुख हो या दुख, भगवान की इच्छा और योजना का हिस्सा है। इस विश्वास से वो व्यक्ति जीवन की हर स्थिति को सहजता और समर्पण के साथ स्वीकार करता है। ऐसा व्यक्ति बाहरी कठिनाइयों से प्रभावित हुए बिना अपने अंदर गहरी शांति का अनुभव करता है। एक आस्थावान भक्त जब किसी कष्ट या पीड़ा से गुजरता है, तो उसे भगवान की इच्छा मानकर सहर्ष स्वीकार करता है। वो समझता है कि ये उसकी आत्मा को और शुद्ध करने का एक माध्यम है। इस प्रकार भक्ति हमें न केवल ईश्वर के करीब लाती है, बल्कि हमारे दृष्टिकोण को भी परिवर्तित करती है। जहां सामान्य व्यक्ति कष्ट में टूट जाता है, वही भक्ति करने वाला व्यक्ति उन क्षणों में और भी मजबूत बनता है, क्योंकि वो जानता है कि भगवान उसकी हर स्थिति में साथ है। भक्ति केवल भावनात्मक या आध्यात्मिक जुड़ाव नहीं है, ये आत्मज्ञान का भी मार्ग है। जब हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, तब हमारा मन सांसारिक इच्छाओं और बंधनों से मुक्त होता है। ये मुक्ति हमें आत्मा के सत्य स्वरूप को जानने और अनुभव करने का अवसर देती है। भक्ति की ये स्थिति आत्मज्ञान का आधार बनती है, जहां व्यक्ति अपने और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं देखता। श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं हमें ये बताती है कि भगवान की भक्ति न केवल आत्मा की उन्नति करती है, बल्कि जीवन को एक नया दृष्टिकोण भी देती है। भक्ति हमें ये सिखाती है कि हर कष्ट और अनुभव हमारे भीतर छिपी दिव्यता को उजागर करने का साधन है। इसलिए अपने जीवन में भगवान की भक्ति को अपनाएं। ये न केवल आपको जीवन की अनिश्चितताओं से निपटने की ताकत देगा, बल्कि आपको एक ऐसा आंतरिक संतुलन और शांति प्रदान करेगा, जिसे कोई भी बाहरी परिस्थिति डिगा नहीं सकती। भक्ति के माध्यम से ही हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं और आत्मज्ञान के शिखर तक पहुंच सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो शिक्षा दी है, वो जीवन को पूरी तरह से समझने और उसे सही दिशा में चलाने का मार्गदर्शन करती है। जब कोई व्यक्ति भगवान के गुणों का निरंतर स्मरण करता है, तो उसका मन दुनिया की मोहमाया और अवसाद से मुक्त हो जाता है। वो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहता है, क्योंकि भगवान के नाम में उसे आंतरिक शांति और बल मिलता है। ऐसा व्यक्ति संसार की अस्थिरता से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसकी आस्था और विश्वास भगवान में स्थिर होता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि एक सच्चा भक्त अपने सभी कार्यों को भगवान के चरणों में समर्पित करता है। वो किसी भी कार्य को खुद के लिए नहीं करता, बल्कि भगवान की सेवा के रूप में करता है। जब हम अपनी हर क्रिया और कर्तव्य को भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं, तो हम संसार के कार्यों से अपना मोह तोड़ लेते हैं और जीवन में एक गहरी शांति का अनुभव करते हैं। ये समर्पण हमें ये सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य भगवान की सेवा है और हर कार्य को उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम के रूप में करना चाहिए। भक्ति का मुख्य उद्देश्य भगवान से मिलन है और इस मिलन की अवस्था परम शांति की होती है। जब भक्त भगवान के साथ आत्मीय संबंध में होता है, तब उसका मन किसी भी प्रकार के शांति की तलाश में नहीं होता, क्योंकि वो शांति उसके भीतर ही होती है। ये मिलन केवल भक्ति में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता और प्रेम में भी है। जब हम भगवान से मिलते हैं, तो हमें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उस अवस्था में परम शांति का अनुभव होता है। भगवान में शरण लेने से जीवन में सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। शरणागति का मतलब है कि हम अपनी संपूर्ण इच्छाओं, विकारों और अहंकार को भगवान के पास छोड़ देते हैं। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, तो वो हमारी सभी गलतियों, पापों और दोषों को दूर कर देते हैं। भगवान की कृपा से हम अपने आत्मज्ञान और शुद्धता की ओर बढ़ते हैं और जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो लोग दूसरों की सेवा करते हैं,
वे भगवान के सबसे प्रिय होते हैं।

समझना चाहिए कि भक्ति केवल पूजा और ध्यान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे हर कार्य, हर सेवा और हर पल में समर्पण और प्रेम का प्रतीक बन जाती है। जब हम भगवान के गुणों का ध्यान करते हैं, जब हम अपने कार्यों को समर्पित करते हैं और जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, तो हम वास्तव में भक्ति के उच्चतम स्वरूप को जीते हैं। इस भक्ति से हम अपने जीवन में शांति, संतुलन और उद्देश्य का अनुभव करते हैं और भगवान के साथ मिलन की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के हर पहलू में हमें एक महान शिक्षा दी है, जो हमारे जीवन को सही दिशा में चलने का मार्गदर्शन करती है। जीवन में हर कार्य को भगवान के लिए करना चाहिए, न कि किसी निजी लाभ के लिए। जब हम अपना हर कार्य, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, भगवान के लिए करते हैं, तो हमारा जीवन परम उद्देश्य की ओर बढ़ता है। ऐसे कार्यों में अहंकार या स्वार्थ नहीं होता और हमें इस संसार में कोई भी परिणाम की चिंता नहीं रहती। हम केवल अपने कर्तव्यों को भगवान की इच्छा के रूप में स्वीकार करते हैं और उनके लिए समर्पित रहते हैं। इससे न केवल हमारा जीवन सरल होता है, बल्कि हमारे कार्यों में भी गहरी आस्था और संतोष का भाव आता है। जो लोग क्रोध, घृणा और अहंकार से मुक्त होते हैं, वे भगवान के प्रिय भक्त होते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि भक्ति का वास्तविक स्वरूप केवल पूजा या ध्यान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे आचरण और भावनाओं में भी व्यक्त होती है। जब हम क्रोध, घृणा और अहंकार से मुक्त होते हैं, तो हम एक शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति बनते हैं, जो भगवान के करीब होता है। ऐसे भक्त अपने मन में किसी प्रकार की नफरत या द्वेष नहीं रखते और वे अपने जीवन में शांति और सौहार्द का पालन करते हैं। भगवत भक्ति का मार्ग सरल और सीधे दिल से किया गया कार्य है। श्री कृष्ण ने हमें बताया कि भक्ति का मार्ग कोई कठिन या जटिल नहीं है, ये केवल हमारे दिल से भगवान के प्रति श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का मार्ग है। जब हम भगवान के साथ अपने संबंध को सरलता और ईमानदारी से जोड़ते हैं, तो हमें किसी विशेष तरीके या विधि की आवश्यकता नहीं होती। ये एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है, जो हमें भीतर से शांति और संतोष प्रदान करती है। सच्चे भक्त के मन में कभी द्वेष और ईर्ष्या नहीं होती। एक सच्चा भक्त अपने जीवन को भगवान की सेवा और प्रेम के रूप में जीता है। उसके मन में न तो किसी से प्रतिस्पर्धा होती है और न ही किसी से नफरत। वो हर व्यक्ति में भगवान का दर्शन करता है और इसलिए किसी के प्रति भी द्वेष या ईर्ष्या नहीं रखता। ये भावना ही उसे शुद्ध और सच्चा बनाती है और भगवान के प्रति उसकी भक्ति को और भी प्रगाढ़ करती है। एक सच्चा भक्त हमेशा संतुलित और संयमित रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये सिखाया कि भक्ति केवल प्रेम का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये आत्मनियंत्रण और संतुलन का भी प्रतीक है। जब हम भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, तो हमारे भीतर एक प्राकृतिक संयम और संतुलन उत्पन्न होता है। हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और जीवन के सभी पहलुओं में संतुलित रहते हैं। ये संतुलन न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे आत्मिक विकास के लिए भी आवश्यक है। सारांश में श्री कृष्ण ने हमें ये सिखाया है कि सच्ची भक्ति हमारे आचरण, हमारी भावनाओं और हमारे कार्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जब हम भगवान के लिए अपने कार्य करते हैं, जब हम क्रोध, घृणा और अहंकार से मुक्त रहते हैं, जब हम सरलता और ईमानदारी से भक्ति करते हैं और जब हम संतुलित और संयमित रहते हैं, तो हम भगवान के प्रिय बन जाते हैं। इस तरह से हम न केवल अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं, बल्कि भगवान के साथ अपने संबंध को भी प्रगाढ़ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें जीवन के वास्तविक सार को समझाया है और उनके उपदेशों से हमें एक नया दृष्टिकोण मिलता है कि कैसे हम अपने जीवन को संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ से मुक्त रहता है, वो भगवान का सबसे प्रिय भक्त होता है। जब हम अपने जीवन में स्वार्थ और लोभ को त्यागते हैं, तो हम भगवान के साथ एक सच्चे और शुद्ध संबंध स्थापित करते हैं। स्वार्थ और लोभ से मुक्त व्यक्ति अपनी इच्छाओं को संयमित करता है और अपने कार्यों में केवल सत्य और नैतिक

पिता का पालन करता है। इस प्रकार वो अपने जीवन में भगवान की कृपा और आशीर्वाद को आकर्षित करता है। श्री कृष्ण ने बताया कि जो लोग अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और ईश्वर से शरण लेते हैं, उनका उद्धार होता है। हम सभी से कभी ना कभी पाप होते हैं, लेकिन जब हम अपने पापों का एहसास करते हैं और सच्चे मन से भगवान से माफी मांगते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति ईश्वर से शरण लेते हैं, उनकी सभी गलतियां और पाप क्षमा हो जाते हैं और वे मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। यह सिखाता है कि पश्चाताप और शरण लेने से न केवल हमारी आत्मा शुद्ध होती है, बल्कि हमें भगवान की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। भक्ति से मनुष्य के भीतर सच्ची शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। जब हम भगवान के प्रति भक्ति और श्रद्धा के साथ जीवन जीते हैं तो हमारे मन में शांति का वास होता है। भक्ति के मार्ग पर चलने से हम अपने भीतर संतोष की भावना महसूस करते हैं, क्योंकि अब हमारे जीवन का उद्देश्य केवल भगवान की सेवा और भक्ति बन जाता है। इस शांति और संतोष के माध्यम से हम जीवन की परेशानियों का सामना सहजता से कर पाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति भगवान के प्रति निष्ठावान होते हैं, उनका जीवन सुखमय होता है। जब हम भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा और विश्वास रखते हैं तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ढाल सकते हैं। निष्ठा का अर्थ केवल भगवान के प्रति श्रद्धा रखना नहीं है, बल्कि ये अपने हर कार्य और विचार में भगवान की उपस्थिति को महसूस करना है। ये निष्ठा हमें जीवन के हर संघर्ष में मजबूती देती है और हमें सुख की अनुभूति कराती है। जो व्यक्ति प्रेम और शांति से भगवान की पूजा करते हैं, वे जीवन में हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। भगवान की पूजा केवल आचार व्यवहार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक सच्चे प्रेम और शांति के साथ की जाने वाली प्रक्रिया है। जब हम भगवान के प्रति प्रेम और शांति का अनुभव करते हैं तो हमारे भीतर एक अनोखी शक्ति उत्पन्न होती है। इस शक्ति के साथ हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का प्रेम और शांति हमें हर कठिनाई में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। सारांश में भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि भक्ति का मार्ग स्वार्थ और लोभ से मुक्ति, पश्चाताप, निष्ठा, प्रेम और शांति से जुड़ा हुआ है। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल भगवान के प्रिय बनते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को संतुलित और सुखमय भी बना सकते हैं। भगवान में आस्था रखने वाला व्यक्ति आत्मनिर्भर और साहसी होता है। जब हम भगवान में पूरी आस्था रखते हैं तो हमें जीवन के प्रत्येक पहलू में शक्ति और साहस मिलता है। ये आस्था हमें जीवन की मुश्किलों का सामना करने के लिए मानसिक दृढ़ता देती है। भगवान पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति किसी भी संकट के समय खुद को अकेला नहीं महसूस करता, क्योंकि वो जानता है कि भगवान हमेशा उसके साथ है, जिससे वो आत्मनिर्भर बनता है और किसी भी चुनौती से घबराता नहीं है। जो व्यक्ति भक्ति में गहरे विश्वास रखते हैं, उनका जीवन सच्चे उद्देश्य की ओर बढ़ता है। भक्ति केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये जीवन के उद्देश्य को समझने और उस पर ध्यान केंद्रित करने का माध्यम है। जब हम अपनी भक्ति को सच्चे विश्वास और निष्ठा के साथ निभाते हैं तो ये हमारे जीवन को सही दिशा देती है। भगवान में आस्था रखने से हमें अपने जीवन के उद्देश्य का पता चलता है और हम अपनी यात्रा में सच्चे मार्ग पर चलते हैं, जिससे हम अपनी आत्मा की उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि भक्ति का कोई निश्चित रूप नहीं होता, ये एक व्यक्तिगत और अंतरात्मा का अनुभव होता है। भक्ति एक व्यक्तिगत अनुभव है जो व्यक्ति के अंतरात्मा से जुड़ा होता है। ये किसी बाहरी रूप या कर्म से नहीं, बल्कि सच्ची भावना और श्रद्धा से उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि भक्ति का कोई भी रूप हो सकता है, चाहे वो मंत्र जाप हो, पूजा हो या भगवान के साथ मानसिक संवाद। ये सब उस व्यक्ति के आस्थावान हृदय पर निर्भर करता है। हर व्यक्ति का भक्ति का अनुभव अलग अलग होता है, लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही होता है, भगवान के साथ जुड़ाव और आत्मज्ञान प्राप्त करना। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हर कठिनाई का सामना सहजता से कर सकता है।
भक्ति हमें मानसिक शांति और धैर्य प्रदान करती है, जो हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार करती है। जब हम भगवान के प्रति अपने विश्वास को सच्चे मन से बढ़ाते हैं, तो हमारी आत्मा में इतनी ताकत और धैर्य आता है कि हम किसी भी मुश्किल का सामना बिना भय के कर सकते हैं। भक्ति हमें ये सिखाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर हमारा मन भगवान में रमा हो तो हम किसी भी परेशानी से नहीं घबराते। जो व्यक्ति संतुलन बनाए रखते हैं, वे भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना एक महत्वपूर्ण गुण है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों में संतुलन बनाए रखते हैं, तो हम मानसिक शांति और संतोष की स्थिति में रहते हैं। श्री कृष्ण ने यह बताया कि जो व्यक्ति जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखते हैं, वे भगवान के प्रिय होते हैं। संतुलन से हमारा मन शांत रहता है और हम अपने कार्यों में ईमानदारी और निष्कलंकता से जुड़े रहते हैं। इस संतुलन के माध्यम से हम भगवान के सबसे करीबी और प्रिय भक्त बन जाते हैं। निष्कर्ष में, भगवान में आस्था रखने वाला व्यक्ति साहसी, आत्मनिर्भर और उद्देश्यपूर्ण होता है। भक्ति के मार्ग पर चलकर हम जीवन की कठिनाइयों का सामना सहजता से कर सकते हैं और इस यात्रा में भगवान के साथ हमारे रिश्ते की गहराई बढ़ती है। भगवान में विश्वास रखना और जीवन में संतुलन बनाए रखना हमें न केवल आध्यात्मिक उन्नति देता है, बल्कि हमें मानसिक शांति और संतोष भी प्राप्त होता है। भक्ति का मार्ग अहंकार और स्वार्थ से मुक्त होकर परमात्मा से जुड़ने का मार्ग है। भक्ति का वास्तविक अर्थ सिर्फ पूजा और अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये अपने अहंकार और स्वार्थ को छोड़कर भगवान से जुड़ने की एक गहरी साधना है। जब हम अपने आत्मगौरव और स्वार्थ से मुक्त होते हैं, तो हम अपने दिल और मस्तिष्क को भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा और प्रेम से भर देते हैं। इस मार्ग पर चलने से हम समझ पाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य केवल अपने स्वार्थ को पूरा करना नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन है। इस प्रकार भक्ति हमें आंतरिक शांति और परमात्मा के साथ एक अडिग संबंध स्थापित करने का मार्ग दिखाती है। जो लोग भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, उनका मन कभी भी व्यर्थ विचारों से भरता नहीं है। जब हम भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं, तो हमारा मन स्थिर और शांत हो जाता है। भक्ति के माध्यम से हमारा मानसिक संसार भगवान के ध्यान में रमा होता है, जिससे नकारात्मक विचार, चिंता और भ्रम की स्थिति दूर हो जाती है। ऐसे लोग जो भगवान में गहरी श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, उनके मन में किसी प्रकार के व्यर्थ विचारों का प्रवेश नहीं हो पाता, क्योंकि उनका हर विचार और कार्य भगवान के प्रति समर्पित होता है। यही वो मानसिक स्थिति है जो हमें संतुलित, शांति और सकारात्मक दिशा में अग्रसर करती है। भक्ति से परम शांति प्राप्त होती है। भक्ति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये हमें मानसिक और आंतरिक शांति प्रदान करती है। जब हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करते हैं, तो हमारा मन और आत्मा शांति से भर जाते हैं। भक्ति का मार्ग हमें सिखाता है कि हम बाहरी दुनिया की आपाधापी से ऊपर उठकर अंदर की शांति की ओर ध्यान केंद्रित करें। जब हम अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं, तो हर कठिनाई और तनाव का सामना करने में हमें सहजता होती है, क्योंकि हमारी आत्मा शांति से भरी रहती है। श्री कृष्ण ने बताया कि जो व्यक्ति सत्य और दया से जीवन जीते हैं, वे भगवान के साथ एक होते हैं। श्री कृष्ण ने हमें बताया कि भक्ति का मार्ग सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के हर पहलू में सत्य और दया की भावनाओं को समाहित करता है। जो व्यक्ति सत्य बोलते हैं और दया से जीवन जीते हैं, वे अपने जीवन में भगवान की उपस्थिति को महसूस करते हैं। उनके हर कार्य में भगवान का दर्शन होता है। जब हम सत्य और दया को अपनाते हैं, तो हम भगवान के साथ एकजुट होते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं सत्य और दया के प्रतीक है। इसलिए भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में सत्य और दया के साथ चलना है। भक्ति का मार्ग हमें न केवल भगवान के साथ जुड़ने का मार्ग दिखाता है, बल्कि ये हमें अपने जीवन को अहंकार और स्वार्थ से मुक्त कर शांति और संतुलन की दिशा में अग्रसर करता है।
सत्य, दया और समर्पण से जीवन जीने वाले लोग भगवान के साथ एक होते हैं और उनके जीवन में परम शांति का वास होता है। आत्मनिर्णय और आत्मसमर्पण भक्ति के सबसे महत्वपूर्ण गुण होते हैं। जब हम आत्मनिर्णय और आत्मसमर्पण की भावना से भक्ति करते हैं तो हम अपनी पूरी इच्छा, अपने संकोच और भय को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। आत्मनिर्णय का मतलब है अपने कार्यों को सही तरीके से करना, जबकि आत्मसमर्पण का मतलब है अपने अहंकार और सभी व्यक्तिगत इच्छाओं को त्याग कर भगवान की इच्छा के अनुसार जीना। यही भक्ति का वास्तविक रूप है। जब हम अपने आप को भगवान के हाथों में सौंप देते हैं तो हमारी यात्रा सरल, शुद्ध और अर्थपूर्ण बन जाती है। भक्ति से व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार होता है। भक्ति के माध्यम से एक व्यक्ति अपने अंदर से न केवल मानसिक शांति पाता है बल्कि एक अदृश्य शक्ति और ऊर्जा का अनुभव करता है। जब हम भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास और प्रेम रखते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास और बल का संचार होता है। भक्ति हमें यह समझने का अवसर देती है कि हम किसी भी कठिनाई या चुनौती से जूझने में सक्षम है क्योंकि भगवान हमेशा हमारे साथ है। इस विश्वास के साथ हम अपने लक्ष्य की ओर बिना डर और संकोच के बढ़ सकते हैं। जो भक्त परमात्मा के प्रति निरंतर प्रेम रखते हैं उनका जीवन प्रेमपूर्ण और शांतिपूर्ण होता है। भक्ति का सबसे बड़ा गुण प्रेम है। जब कोई व्यक्ति भगवान के प्रति निरंतर प्रेम करता है तो उसका जीवन शांतिपूर्ण और संतुष्ट होता है। भगवान के प्रति प्रेम ही उसे जीवन के हर क्षेत्र में प्यार, दया और सहानुभूति की भावना से भर देता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन एक ऐसी धारा की तरह होता है जो अपने चारों ओर शांति और खुशी फैलाता है। भक्ति में प्रेम को प्राथमिकता देने से व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है और उसका संबंध भगवान से प्रगाढ़ हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भक्ति का मार्ग सच्चे आत्मज्ञान के द्वारा खुलता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा कि भक्ति का वास्तविक मार्ग तब खुलता है जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। आत्मज्ञान से अभिप्राय है आत्मा की प्रकृति और भगवान के साथ हमारे संबंध को समझना। जब हम सत्य और ज्ञान के साथ भगवान को जानने की कोशिश करते हैं तो भक्ति के मार्ग पर चलने में कोई कठिनाई नहीं होती। आत्मज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि भगवान के साथ हमारा संबंध आत्मा से है और हम उसकी अनंत शक्ति का हिस्सा है। यह ज्ञान हमें भक्ति की गहरी और सच्ची समझ प्रदान करता है। भक्ति के मार्ग में आत्मनिर्णय, आत्मसमर्पण और निरंतर प्रेम की आवश्यकता होती है क्योंकि ये हमें भगवान के करीब लाती है और जीवन को शांति और ऊर्जा से भर देती है। जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति निष्ठावान होते हैं वे दुनिया के सभी दुखों से उबर सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि जब व्यक्ति अपने जीवन में भगवान के प्रति पूर्ण निष्ठा और विश्वास रखता है तो उसे कोई भी बाहरी दुख या कष्ट प्रभावी नहीं हो सकते। ईश्वर में विश्वास रखने से हम अपने दुखों को भी भगवान की इच्छा मानकर सहन करते हैं। इस प्रकार भक्ति हमें मानसिक रूप से सशक्त बनाती है और हमें किसी भी संकट से निपटने की शक्ति देती है। ऐसे लोग भले ही शारीरिक रूप से संघर्ष करें लेकिन मानसिक रूप से वे हमेशा शांत और स्थिर रहते हैं क्योंकि उनका आस्था और विश्वास भगवान पर दृढ़ होता है। श्री कृष्ण ने बताया कि जो लोग भगवान के प्रति एकाग्रचित होते हैं वे अपनी जीवन यात्रा में कभी भी हारते नहीं हैं। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जब हर कार्य में ईश्वर को अपनी ध्येय और लक्ष्य मानकर चलता है तो उसे किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मिलती। भगवान के प्रति एकाग्रता का मतलब है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों में ईश्वर को सर्वोच्च स्थान देते हैं। जब हम भगवान को अपने जीवन का उद्देश्य मानकर जीते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें पराजित नहीं कर सकती। एकाग्रचित व्यक्ति अपने हर संघर्ष को ईश्वर की कृपा से पार करता है और अपने जीवन के हर कदम में विजय प्राप्त करता है। भक्ति का उद्देश्य आत्मा का सच्चा रूप जानना है। श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति का असली उद्देश्य आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझना है। जब हम ईश्वर में समर्पित हो जाते हैं
और उसे पूरी श्रद्धा से अपना मार्गदर्शक मानते हैं, तब हम आत्मा की वास्तविकता को अनुभव कर पाते हैं। भक्ति से हम अपनी वास्तविक पहचान को जान पाते हैं। हम न शरीर हैं, न मन, बल्कि हम एक दिव्य आत्मा है जो अनंत और शाश्वत है। ये ज्ञान हमें जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर अग्रसर करता है, जहां हम स्वयं को ईश्वर के अंश के रूप में पहचानते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि जो भक्त हर एक कार्य में भगवान का ध्यान रखते हैं, वे शांति और संतोष से भरपूर होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें अपने सभी कार्यों में भगवान का स्मरण करना चाहिए, चाहे वो छोटे से काम हो या बड़ा कार्य। यदि हम उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हम मानसिक शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर कार्य भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है। उनका जीवन भरे रहता है शांति और संतोष से, क्योंकि वे हर कार्य को भगवान की कृपा मानते हैं और किसी भी कार्य को अपने स्वार्थ से नहीं जोड़ते। भक्ति से मानसिक संकुचन और आत्म संकोच समाप्त होते हैं। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अपनी सीमाओं और संकोच को पार करता है। भगवान की भक्ति से व्यक्ति के मन में आत्मविश्वास पैदा होता है, जो उसके मानसिक संकुचन को समाप्त करता है। जब हम भगवान के प्रति निष्ठा रखते हैं और उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक मानते हैं, तो हमारी आत्मा में शक्ति और स्वतंत्रता का अनुभव होता है। भक्ति हमें यह सिखाती है कि हम किसी भी संकोच, डर या आत्मसंदेह से मुक्त होकर एक सशक्त और आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में अपने जीवन को जी सकते हैं। इन बातों से हमें यह समझ में आता है कि भक्ति केवल पूजा और आराधना तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर पहलू में भगवान के प्रति निष्ठा, प्रेम और एकाग्रता की स्थिति है। जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि भगवान के करीब भी पहुंचते हैं। भक्ति का मार्ग व्यक्ति को हर प्रकार की चिंता और भय से मुक्त करता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि जब व्यक्ति अपने मन और हृदय को भगवान में समर्पित कर देता है तो उसकी सारी चिंताएं और भय दूर हो जाते हैं। भगवान पर विश्वास रखने से हम जान पाते हैं कि हम किसी भी समस्या से अकेले नहीं जूझ रहे हैं, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे साथ है। चिंता और भय अस्थाई है, लेकिन जब हम भगवान की कृपा में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं तो हम हर कठिनाई को सहजता से पार कर सकते हैं। भक्ति एक आंतरिक शक्ति है जो हमें मानसिक स्थिरता और साहस प्रदान करती है। जो व्यक्ति भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं, वे जीवन में हर चुनौती को पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि श्रद्धा का मतलब केवल आदर नहीं, बल्कि ये एक गहरी आस्था और विश्वास है। जब हम भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को पूरे दिल से समर्पित करते हैं तो वो हमें हर संघर्ष और चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। भक्त का विश्वास अडिग होता है और यही विश्वास उसे जीवन में आने वाली हर कठिनाई और परीक्षा से निपटने के लिए तैयार करता है। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति किसी भी संघर्ष में अपने भगवान के साथ होने का विश्वास रखता है और यही विश्वास उसे सच्ची शक्ति और धैर्य प्रदान करता है। भक्ति में विश्वास रखने से व्यक्ति कभी भी अकेला नहीं होता, वो हमेशा भगवान के साथ रहता है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि भक्ति का मार्ग केवल बाहरी आराधना नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक जुड़ाव है। जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं और उनका ध्यान करते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। भगवान हमारे साथ हर पल रहते हैं। वे हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारे कर्मों में हमारे साथ है। भक्ति का सबसे बड़ा लाभ यही है कि वो हमें शांति और सहारा प्रदान करती है, क्योंकि हमें ये आभास होता है कि हम कभी भी अकेले नहीं होते। भगवान का साथ हमेशा हमारे साथ रहता है और ये हमें हर क्षण में आत्मसंवेदनशील और धैर्यवान बनाए रखता है। जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में भगवान को याद करते हैं, उनका जीवन सच्ची सफलता की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जो लोग हर समय भगवान को स्मरण करते हैं, चाहे वे किसी भी स्थिति में हो,
उनका जीवन सच्ची

सफलता की ओर अग्रसर होता है। भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा करना नहीं है, बल्कि भगवान के प्रति निरंतर श्रद्धा और ध्यान रखना है। जब हम किसी भी परिस्थिति में भगवान का ध्यान करते हैं तो हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। ये निरंतर ध्यान हमें सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है और हमारे जीवन को एक सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन करता है। भगवान के साथ निरंतर संपर्क बनाने से व्यक्ति का जीवन पूर्ण रूप से बदल जाता है। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जब भगवान से निरंतर संपर्क में रहता है तो उसका जीवन स्वाभाविक रूप से बदल जाता है। भगवान के साथ लगातार जुड़ाव रखने से हम आत्मा की गहरी समझ प्राप्त करते हैं और हमारे विचार, कार्य और उद्देश्य साफ होते जाते हैं। श्री कृष्ण ने यह कहा कि जब व्यक्ति भगवान के साथ स्थायी संपर्क में रहता है तो उसकी जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल जाती है। उसका जीवन शांति, संतोष और प्रेम से भर जाता है। निरंतर भक्ति के द्वारा व्यक्ति अपने भीतर एक गहरी आंतरिक शांति और संतुलन पाता है जो उसे हर परिस्थिति में स्थिर और संतुष्ट बनाए रखता है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं वे कभी भी मानसिक व्यग्रता का सामना नहीं करते। श्री कृष्ण ने हमें बताया कि भक्ति में लीन रहने वाला व्यक्ति मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करता है। जब हम अपने मन और हृदय को भगवान में समर्पित कर देते हैं तो हर प्रकार की मानसिक व्यग्रता, चिंता और तनाव दूर हो जाते हैं। भक्ति के द्वारा मन शांत होता है और व्यक्ति एक सशक्त और सकारात्मक मानसिकता के साथ जीवन को देखता है। भगवान के प्रति अधिक श्रद्धा रखने से हमारी आंतरिक शांति बनी रहती है जिससे हम किसी भी परिस्थिति में मानसिक शांति को बनाए रख सकते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि हर भक्त के लिए भक्ति का मार्ग अलग होता है क्योंकि हर व्यक्ति का हृदय अलग होता है। भगवान के प्रति भक्ति का मार्ग हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है क्योंकि हर व्यक्ति का स्वभाव, उसकी आस्था और उसका जीवन अनुभव भिन्न होते हैं। श्री कृष्ण ने यह समझाया कि भक्ति का कोई एक तरीका नहीं है, ये हमारे हृदय और मानसिकता पर निर्भर करता है। हम अपनी भक्ति को अपनी परिस्थितियों और क्षमता के अनुसार अपनाते हैं। कुछ लोग ध्यान और साधना के माध्यम से तो कुछ लोग सेवा और समर्पण के द्वारा भगवान के करीब पहुंचते हैं। इसलिए भक्ति का मार्ग व्यक्तिगत होता है और श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हमें अपनी भक्ति को अपनी प्रकृति और आवश्यकता के अनुसार अपनाना चाहिए। भगवान की भक्ति से आत्मा की शुद्धि होती है। श्री कृष्ण ने हमें यह बताया कि भक्ति के माध्यम से हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। जब हम भगवान के प्रति अपने मन को पूरी तरह से समर्पित करते हैं तो हमारे भीतर के सभी विकार जैसे क्रोध, घृणा और अहंकार दूर हो जाते हैं। भक्ति के द्वारा आत्मा की शुद्धि होती है जिससे हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझ पाते हैं। भक्ति न केवल हमारे जीवन को बाहरी रूप से सुधारती है बल्कि ये हमारे अंदर की गहराई में जाकर हमारी आत्मा को पवित्र करती है। भक्ति के माध्यम से व्यक्तित्व में सुधार आता है। भगवान के प्रति सच्ची भक्ति के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आते हैं। जब हम अपनी आस्था को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं तो हमारी सोच, हमारी नियत और हमारा आचरण सुधरता है। भक्ति से हमारे भीतर संतुलन, संयम और विनम्रता आती है। हम जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और दूसरों के प्रति सहानुभूति और दया विकसित करते हैं। भक्ति का असर केवल हमारी आत्मा पर नहीं बल्कि हमारे पूरे व्यक्तित्व पर पड़ता है और हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। जो लोग भगवान की भक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं उनका जीवन श्रेष्ठ हो जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जब हम भगवान की भक्ति को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य मान लेते हैं तो हमारा जीवन अपने आप श्रेष्ठ बन जाता है। भक्ति से जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है और हमें जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण मिलता है। जब हम भगवान के साथ हर कार्य को जोड़ते हैं तो हमारे हर कदम में सफलता और सुख मिलते हैं। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जीवन के हर क्षण को भगवान के साथ जोड़कर जीता है और यही जीवन उसे उच्च और पूर्ण बना देता है।
ये शिक्षाएं हमें ये समझने में मदद करती हैं कि भक्ति न केवल आत्मा की शुद्धि और व्यक्तित्व में सुधार लाती है, बल्कि ये हमारे जीवन को एक महान उद्देश्य और दिशा भी देती है। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से हम जान सकते हैं कि भक्ति का असली सार केवल पूजा या ध्यान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे हर कार्य, विचार और आचरण में भगवान की उपस्थिति महसूस करने का तरीका है। श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति का रास्ता किसी भी मार्ग से कठिन नहीं होता, केवल समर्पण की आवश्यकता होती है। भगवान ने हमें ये शिक्षा दी कि भक्ति का मार्ग अपने आप में सरल है, क्योंकि ये किसी बाहरी प्रयास या कठिनता पर निर्भर नहीं करता। भक्ति का मूल तत्व है समर्पण। हमारा हृदय, हमारी इच्छा और हमारे कर्म भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित होने चाहिए। जब हम भगवान के प्रति पूरी निष्ठा और श्रद्धा से समर्पित होते हैं, तो भक्ति का मार्ग अपने आप सरल और सुगम हो जाता है। ये मार्ग किसी भी बाहरी कष्ट से परे है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने हृदय को शुद्ध कर देता है और भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा रखता है, उसके लिए ये मार्ग स्वाभाविक रूप से आसान हो जाता है। भक्ति से मनुष्य अपनी आत्मा के सत्य को जान सकता है। श्री कृष्ण ने भक्ति को आत्मा के सत्य को जानने का एक प्रमुख साधन बताया। जब हम भगवान में विश्वास और भक्ति रखते हैं, तो हमारी आत्मा का सच्चा रूप धीरे धीरे सामने आने लगता है। भक्ति के मार्ग पर चलते हुए हम अपने असली स्वभाव को पहचान पाते हैं और जान पाते हैं कि हम केवल शरीर नहीं, बल्कि एक शाश्वत आत्मा है। भगवान में विश्वास और भक्ति हमें इस सत्य की गहरी समझ और आत्मज्ञान प्रदान करती है, जिससे हम आत्मा के परम उद्देश्य को समझ सकते हैं। जो व्यक्ति भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण रखते हैं, उनके लिए जीवन में किसी भी बाधा को पार करना आसान हो जाता है। जब व्यक्ति अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, तो वो हर प्रकार की बाधा या कठिनाई को सहजता से पार कर सकता है। भगवान के साथ संबंध प्रगाढ़ होने पर हर मुश्किल आसान लगने लगती है, क्योंकि भगवान की शक्ति से व्यक्ति को मार्गदर्शन और समर्थन मिलता है। भक्ति में समर्पण का अर्थ केवल आस्थावान होना नहीं है, बल्कि ये एक विश्वास है कि भगवान हर क्षण हमारे साथ है। और जो व्यक्ति इस विश्वास के साथ जीता है, वो जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना पूरी ताकत और शांति से कर सकता है। भक्ति का मार्ग शुद्ध हृदय और मन से यात्रा करने का मार्ग है। श्री कृष्ण ने हमें ये भी बताया कि भक्ति का असली मार्ग हमारे हृदय और मन की शुद्धता से जुड़ा हुआ है। जब हम पूरी ईमानदारी से और निस्वार्थ भाव से भगवान के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं, तो हमारे मन और हृदय में शुद्धता और अच्छाई आ जाती है। ये मार्ग आत्मा की सच्ची शुद्धता की ओर ले जाता है, क्योंकि भगवान के साथ वास्तविक संबंध बनाने के लिए हमारा हृदय और मन शुद्ध होना चाहिए। इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति न केवल भौतिक बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त करता है। भक्ति की शक्ति से व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। भक्ति केवल बाहरी पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है, ये व्यक्ति को अंदर से सशक्त भी बनाती है। जब हम भगवान के प्रति भक्ति रखते हैं, तो हमारी आत्मा में छिपी हुई शक्ति और सामर्थ्य का एहसास होता है। भक्ति हमें ये समझने की क्षमता देती है कि हम भीतर से कितने शक्तिशाली हैं और हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि भगवान के प्रति भक्ति से हमारे भीतर की असीम शक्ति जागृत होती है, जिससे हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं और उसे प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। भक्ति का मार्ग न केवल सरल है, बल्कि ये आत्मज्ञान, शांति और शक्ति का स्रोत भी है। श्री कृष्ण ने हमें ये सिखाया कि भक्ति से जीवन में हर बाधा को पार किया जा सकता है और हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। जो व्यक्ति किसी भी कार्य को भगवान के लिए करते हैं, उनका जीवन सचेत और उद्देश्यपूर्ण होता है। श्री कृष्ण ने हमें ये सिखाया कि जब हम अपने सभी कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं, तो हमारा जीवन अपने आप एक उच्च उद्देश्य की ओर बढ़ता है। जो व्यक्ति भगवान के लिए कार्य करते हैं, वे न केवल अपने कार्य में पूरी लगन और सत्यनिष्ठा रखते हैं, बल्कि उनका जीवन उद्देश्यपूर्ण होता है। ऐसे लोग
हर कार्य को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ते हैं, जिससे उनका जीवन स्वाभाविक रूप से सचेत और प्रेरित रहता है। भक्ति का ये मार्ग हमें ये समझने में मदद करता है कि जीवन में हर कार्य का एक दिव्य उद्देश्य है, और जब हम उसे भगवान के लिए करते हैं तो हमें एक विशेष संतोष और आंतरिक शांति मिलती है। श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति का अभ्यास जीवन को सरल और सहज बना देता है। भगवान ने भक्ति को जीवन को सरल बनाने का एक प्रभावी मार्ग बताया है। जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे दिल और मन में शांति का संचार होता है, और जीवन के सभी कठिनाइयां धीरे धीरे आसान हो जाती है। भक्ति हमें किसी भी तरह की चिंता, तनाव और उलझनों से दूर रखती है। जब हम भगवान में विश्वास रखते हैं और उनके प्रति आस्थावान होते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि हर परिस्थिति में भगवान हमारे साथ है। इस विश्वास के कारण हमारा जीवन सरल और सहज बनता है, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान हमें मार्गदर्शन देंगे। भक्ति में विश्वास रखने से व्यक्ति के जीवन में आंतरिक शांति और संतुलन आता है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे भीतर की आंतरिक शांति और संतुलन मजबूत होता है। भक्ति का अभ्यास हमें मानसिक स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है। जीवन की चुनौतियों और उतार चढ़ावों में हम शांत रहते हैं और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। श्री कृष्ण ने हमें बताया कि भक्ति से मन और आत्मा दोनों में संतुलन बना रहता है। किसी भी परिस्थिति में भक्ति हमें आत्मिक शांति और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है, जिससे हम जीवन को आसानी से स्वीकार कर सकते हैं। भगवान की भक्ति में समर्पण से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति के माध्यम से हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हैं। जब हम भगवान में समर्पित होते हैं तो हम धीरे धीरे अपनी आत्मा के सत्य को जानने लगते हैं। भक्ति का समर्पण हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, क्योंकि ये हमें आत्म के वास्तविक रूप और उद्देश्य से जोड़ता है। भक्ति के माध्यम से हम भगवान के दिव्य गुणों को समझते हैं, और इस समझ से हमें अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त होता है। समर्पण के साथ भक्ति करने से आत्मज्ञान का मार्ग खुलता है और हम अपनी जीवन यात्रा को सही दिशा में ले जाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति दया और प्रेम रखते हैं वे भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें ये भी सिखाया कि भगवान के साथ वास्तविक संबंध तभी बनता है जब हम दूसरों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखते हैं। भक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अपने हृदय में प्रेम और करुणा को स्थान देते हैं। जब हम भगवान की भक्ति में खुद को समर्पित करते हैं तो हमारे भीतर दूसरों के लिए दया और प्रेम का भाव स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। ये भाव हमें भगवान के निकट ले जाता है, क्योंकि भगवान सच्चे प्रेम और करुणा को अत्यधिक महत्व देते हैं। जब हम अपने आसपास के लोगों से प्रेम करते हैं और उनकी मदद करते हैं तो हम भगवान के साथ एक गहरे संबंध में जुड़ सकते हैं। भक्ति से अहंकार और स्वार्थ का अंत होता है। श्री कृष्ण ने हमें ये सिखाया कि भक्ति का अभ्यास करने से व्यक्ति के भीतर के अहंकार और स्वार्थ का अंत हो जाता है। जब हम भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति भाव रखते हैं तो हमारा मन स्वार्थ से मुक्त होकर केवल भगवान के सेवा में समर्पित हो जाता है। भक्ति हमें ये समझने की क्षमता देती है कि हम सभी एक डिवाइन शक्ति के अंश हैं, और इस एहसास से हमारे अहंकार का विनाश होता है। स्वार्थ और अहंकार को छोड़कर हम आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझते हैं, जो हमें जीवन में संतुलन और शांति प्रदान करता है। जो व्यक्ति भगवान के नाम का जाप करते हैं उनका जीवन समृद्ध और पुण्यपूर्ण हो जाता है। श्री कृष्ण ने बताया कि भगवान के नाम का जाप करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि ये आत्मा के पवित्रता को भी बढ़ाता है। जब हम नियमित रूप से भगवान के नाम का जाप करते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है और जीवन में आशीर्वाद और पुण्य की वृद्धि होती है। भगवान के नाम का उच्चारण करने से हमारे मन और हृदय में भगवान का वास होता है और हम हर कार्य में उनकी उपस्थिति महसूस करते हैं। ये जीवन को सकारात्मक और समृद्ध बनाता है। भक्ति से आत्मा की पवित्रता बढ़ती है। श्री कृष्ण ने कहा कि भक्ति का मार्ग आत्मा को शुद्ध
और पवित्र करने का एक प्रभावी तरीका है। जब हम भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ भक्ति करते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हम अपने भीतर की सच्ची दिव्यता को महसूस करते हैं। भक्ति के माध्यम से हम अपने कृत्यों को सही दिशा में मार्गदर्शित करते हैं और आत्मा की पवित्रता में वृद्धि होती है। इससे हम अपने जीवन को अधिक समझदारी और प्रेम से जीने लगते हैं। जो लोग दूसरों की सेवा करते हैं वे भगवान के सबसे प्रिय भक्त होते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि दूसरों की सेवा करना भगवान के प्रति सच्ची भक्ति का रूप है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तो हम भगवान के साथ अपने संबंध को और भी प्रगाढ़ करते हैं। भगवान खुद को सेवा करने वालों में निवास करते हैं और जिनके दिल में दूसरों के लिए दया और करुणा होती है वे भगवान के सबसे प्रिय भक्त होते हैं। इस प्रकार की सेवा हमें न केवल दूसरों की मदद करने की प्रेरणा देती है बल्कि ये हमें आत्मिक संतोष और शांति भी प्रदान करती है। श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति का मार्ग आत्मा की गहराइयों से जुड़ने का तरीका है। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि भक्ति केवल बाहरी आचार व्यवहार तक सीमित नहीं है बल्कि ये हमारे भीतर की आत्मा की गहराइयों से जुड़ने का एक तरीका है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम अपने भीतर की दिव्यता को जागृत करते हैं और आत्मा की गहराइयों से भगवान से जुड़ने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। भक्ति का मार्ग हमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप की पहचान करवाता है और हम उस परम सत्ता से एकात्म अनुभव करते हैं। इस जुड़ाव से हम जीवन को सच्चे अर्थ में समझ पाते हैं और भगवान के साथ अपनी दिव्य संबंध को महसूस करते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में हर पल को भगवान के ध्यान में रखते हैं वे शांति और आनंद में रहते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि जब हम हर पल भगवान के ध्यान में रहते हैं तो हमारे भीतर शांति और आनंद का वास होता है। ये ध्यान हमें मानसिक स्थिरता और आत्मिक शांति प्रदान करता है। जब हमारा मन और हृदय भगवान में पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो बाहरी परिस्थितियां हमारी आंतरिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकती। हम जीवन की हर चुनौती को सहजता से स्वीकार कर पाते हैं क्योंकि हमारे भीतर स्थायी शांति और आनंद का अनुभव होता है। भक्ति का मार्ग शुद्ध हृदय से यात्रा करने का मार्ग है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि भक्ति का मार्ग केवल बाहरी क्रियाओं का पालन नहीं है बल्कि ये शुद्ध हृदय और निस्वार्थ भाव से यात्रा करने का मार्ग है। जब हमारा हृदय निर्मल होता है तो हम भगवान के प्रति समर्पण से भक्ति करते हैं। इस मार्ग पर चलने से हम अपने भीतर की शुद्धता को महसूस करते हैं और जीवन को सच्चे अर्थों में जीने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। भक्ति का ये मार्ग आत्मिक शुद्धता की ओर बढ़ने की दिशा है जो हमें परम शांति और संतोष की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और इच्छाओं से मुक्त रहते हैं वे भगवान के प्रिय होते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जो लोग अपनी इच्छाओं और वासना से मुक्त रहते हैं वे भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं और सांसारिक सुखों के प्रति आसक्त नहीं होते तो हम सच्ची भक्ति की ओर बढ़ते हैं। इच्छाओं से मुक्ति का अर्थ है कि हम जीवन में संतुलित रहते हैं और किसी भी बाहरी सुख साधन के बिना भी भगवान में अपने सच्चे अस्तित्व को महसूस करते हैं। ऐसे लोग भगवान के करीब होते हैं क्योंकि उनका मन पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित होता है। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानता है। श्री कृष्ण ने कहा कि भक्ति का मार्ग हमें हमारी आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानने का अवसर प्रदान करता है। जब हम भगवान की भक्ति में पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हैं। भक्ति के इस मार्ग पर चलते हुए हम अपने आत्मा के असली स्वरूप को समझते हैं जो न केवल शुद्ध और अमर है बल्कि पूर्ण रूप से परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। इस आत्मज्ञान के द्वारा हम जीवन को समझने और आत्मा के सच्चे उद्देश्य को पहचानने में सक्षम होते हैं। इन उपदेशों से यह स्पष्ट होता है कि भक्ति एक गहरी आंतरिक यात्रा है जो हमें आत्मज्ञान, शांति और भगवान के साथ एकता की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि भक्ति का वास्तविक अर्थ केवल बाहरी पूजा और क्रियाओं में नहीं
बल्कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति निरंतर प्रेम और समर्पण में।

भक्ति से जीवन में स्थिरता और संतुलन आता है। श्री कृष्ण ने बताया कि जब हम भगवान की भक्ति में लीन होते हैं तो हमारा जीवन संतुलित और स्थिर हो जाता है। भक्ति हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करती है, जिससे हम जीवन के उतार चढ़ाव को आसानी से संभाल पाते हैं। इस स्थिरता के कारण हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते और हमारी आंतरिक स्थिति हमेशा शांतिपूर्ण रहती है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी पूजा और भक्ति में सच्चे होते हैं, उनके लिए जीवन में सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। भक्ति की सच्चाई और निष्ठा से जुड़ा व्यक्ति भगवान के प्रति अपने समर्पण में शुद्ध होता है और इसी कारण जीवन की सारी कठिनाइयां उससे दूर हो जाती है। श्री कृष्ण ने हमें यह समझाया कि जब हम अपनी पूजा और भक्ति में निष्ठा और सत्यता बनाए रखते हैं तो भगवान हमारी सभी समस्याओं को अपने अनुग्रह से हल कर देते हैं। भक्ति के इस मार्ग पर चलने से हमें जीवन की असली सुख शांति का अनुभव होता है। जो लोग अपने विचारों और भावनाओं को शुद्ध करते हैं, वे भगवान के साथ एक हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने यह बताया कि भक्ति का मार्ग केवल बाहरी पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर की शुद्धता से जुड़ा हुआ है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को शुद्ध करते हैं तो हम अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करते हैं और भगवान के साथ एकाकार हो जाते हैं। यही असली भक्ति है। जब हमारा हृदय और मन पूर्ण रूप से भगवान में समर्पित होता है, तब हम भगवान के साथ सच्चे रूप में एक हो जाते हैं। भक्ति का अभ्यास मानसिक शांति और आत्मसंयम की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति का अभ्यास हमारे मानसिक संकुचन को समाप्त करता है और आत्मसंयम को बढ़ाता है। जब हम अपनी दिनचर्या में भक्ति को शामिल करते हैं तो ये हमें अपने भीतर की उथल पुथल को शांत करने का अवसर देता है। इस अभ्यास के माध्यम से हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं, जो मानसिक शांति और आत्मसंयम की प्राप्ति का मार्ग खोलता है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति को मुख्य उद्देश्य मानते हैं, उनका जीवन पवित्र और सुखी होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो लोग भगवान के प्रति अपने समर्पण को जीवन का मुख्य उद्देश्य मानते हैं, उनका जीवन पवित्र होता है। ऐसे लोग हर कार्य में भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं और उनके जीवन में शांति और संतोष का वास होता है। भक्ति का ये मार्ग उन्हें सच्चे सुख और आनंद का अनुभव कराता है, क्योंकि वे अपने जीवन का उद्देश्य समझते हुए हर कार्य को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। भगवान के प्रति समर्पण से जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता समाप्त होती है। श्री कृष्ण ने बताया कि जब हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करते हैं तो हमारी सभी चिंताएं और डर समाप्त हो जाते हैं। भगवान पर विश्वास रखने से हम सच्ची शांति प्राप्त करते हैं और मानसिक रूप से मुक्त हो जाते हैं। जीवन के किसी भी संकट का सामना हम साहस और विश्वास से करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान हमेशा हमारे साथ है और वे हमें हर परेशानी से उबारने के लिए तत्पर है। श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति का अभ्यास व्यक्ति को आत्मा के असली उद्देश्य तक पहुंचाता है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि भक्ति का मार्ग न केवल भगवान के साथ जुड़ने का रास्ता है, बल्कि ये आत्मा के सच्चे उद्देश्य को पहचानने का भी साधन है। जब हम भगवान की भक्ति में अपने हृदय और मन को लगाते हैं तो हम आत्मा के असली स्वरूप को जान पाते हैं और समझते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। इस मार्ग पर चलने से व्यक्ति को न केवल आत्मज्ञान मिलता है, बल्कि जीवन के उद्देश्य का स्पष्ट बोध भी होता है। भक्ति का मार्ग परम शांति और सुख की प्राप्ति का मार्ग है। भगवान की भक्ति से व्यक्ति को एक ऐसी शांति मिलती है जो बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहती है। भक्ति का ये मार्ग शांति की स्थायी स्थिति तक पहुंचाता है, जहां व्यक्ति न केवल मानसिक शांति बल्कि आंतरिक सुख की भी अनुभूति करता है। श्री कृष्ण ने हमें यह बताया कि जब हम अपनी पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ भक्ति करते हैं तो हमारा जीवन परम शांति और सुख से भर जाता है, जो किसी भौतिक सुख से अधिक मूल्यवान होता है। जो व्यक्ति अपने कार्यों को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, उनका जीवन और उद्देश्य स्थिर होता है। श्री कृष्ण ने यह कहा कि जो लोग
अपने सभी कार्यों को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। उनके जीवन का उद्देश्य और दिशा स्पष्ट और स्थिर होती है। इस समर्पण से उनका जीवन एक उच्चतर लक्ष्य की ओर बढ़ता है और वे हर कार्य में भगवान की इच्छा को प्राथमिकता देते हैं। भक्ति का ये तरीका न केवल स्थिरता प्रदान करता है बल्कि जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण दिशा भी देता है। भक्ति में विश्वास रखने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार की मानसिक कठिनाई का सामना नहीं करता। भगवान की भक्ति में पूर्ण विश्वास रखने वाला व्यक्ति मानसिक तनाव, चिंता और भय से मुक्त रहता है। श्री कृष्ण ने बताया कि जब हम भगवान पर पूर्ण विश्वास करते हैं और उनके साथ जुड़े रहते हैं तो कोई भी मानसिक कठिनाई हमारे रास्ते में नहीं आती। भक्ति हमें मानसिक स्थिरता और साहस देती है जिससे हम जीवन की समस्याओं का सामना शांति और धैर्य से करते हैं। भगवान की भक्ति से जीवन का हर पहलू जागृत और सकारात्मक बन जाता है। भक्ति का अभ्यास करने से केवल हमारा आत्मिक विकास ही नहीं होता बल्कि जीवन के हर पहलू में सकारात्मक परिवर्तन आता है। जब हम भगवान के प्रति अपने प्रेम और श्रद्धा को गहराई से अनुभव करते हैं तो ये हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों में भी सकारात्मकता का संचार करता है। इस भक्ति से न केवल आत्मा की शुद्धि होती है बल्कि जीवन का हर क्षेत्र, चाहे वो परिवार, काम या रिश्ते हो, सकारात्मक और सुखमय बन जाता है। श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति से जीवन के हर कार्य में उद्देश्य और सफलता प्राप्त होती है। भगवान की भक्ति से व्यक्ति का जीवन एक उद्देश्यपूर्ण दिशा में आगे बढ़ता है। जब हम हर कार्य को भगवान के लिए करते हैं तो वो कार्य केवल शारीरिक या मानसिक नहीं रहता बल्कि ये एक दिव्य उद्देश्य से जुड़ जाता है। भक्ति का यही मार्ग हमें जीवन में सफलता और समृद्धि की प्राप्ति का रास्ता दिखाता है क्योंकि हर कार्य में भगवान की उपस्थिति और आशीर्वाद होता है। भक्ति का अभ्यास व्यक्ति को शुद्ध और उज्जवल बनाता है। श्री कृष्ण ने बताया कि जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो ये न केवल हमारे हृदय को शुद्ध करता है बल्कि हमारी आत्मा को भी उज्जवल बनाता है। भक्ति का अभ्यास व्यक्ति के विचारों, कर्मों और शब्दों को शुद्ध करता है जिससे उसका जीवन और व्यक्तित्व उज्जवल और दिव्य बन जाता है। ये शुद्धता हमें भगवान के निकट ले जाती है जिससे हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचान पाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के प्रति सच्ची भक्ति रखते हैं वे न केवल आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं बल्कि हर प्रकार की सफलता प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि सच्चे भक्त केवल आत्मज्ञान की प्राप्ति तक सीमित नहीं रहते बल्कि उनके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता आती है। भक्ति से आत्मा का सत्य ज्ञान प्राप्त होता है और साथ ही जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को हल करने की क्षमता भी मिलती है। भगवान की भक्ति से हम अपनी क्षमताओं का सही उपयोग कर पाते हैं और हर कार्य में सफलता की ओर बढ़ते हैं। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति शांति और संतोष प्राप्त करता है। भक्ति का मार्ग न केवल बाहरी सफलता प्रदान करता है बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी लाता है। जब हम भगवान के साथ अपने संबंध को गहरा करते हैं और हर कार्य में उन्हें समर्पित करते हैं तो जीवन में मानसिक शांति और संतोष की स्थिति स्थापित होती है। इस शांति में हम न केवल अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं बल्कि सच्चे संतोष की अनुभूति भी करते हैं। अंत में श्री कृष्ण ने कहा कि सच्चे भक्त को कोई भी बाधा नहीं रोक सकती क्योंकि उनका जीवन भगवान के साथ होता है। भगवान ने यह भी कहा कि सच्चे भक्त का जीवन भगवान की असीम शक्ति से जुड़ा होता है और इस कारण वो किसी भी प्रकार की बाधा या चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं। जब हम भगवान के साथ पूरी निष्ठा से जुड़े होते हैं तो जीवन की हर कठिनाई को पार करना आसान हो जाता है क्योंकि भगवान की कृपा हमें सदैव मार्गदर्शन और बल प्रदान करती है। इन उपदेशों के माध्यम से श्री कृष्ण ने हमें ये समझाया कि भक्ति का मार्ग केवल आत्मज्ञान तक सीमित नहीं है बल्कि ये हमें सफलता, शांति, संतोष और किसी भी बाधा से मुक्त जीवन की ओर ले जाता है। भगवान के साथ गहरी भक्ति और समर्पण से हम जीवन के सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अंततः भगवान के साथ मिलन की अवस्था में पहुंच सकते हैं। दोस्तों,
आज हमने श्रीमद् भगवद् गीता का 12वां अध्याय गहराई से समझा। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति के मार्ग के महत्व को समझाया और ये बताया कि भक्ति में ही जीवन का सही उद्देश्य और सच्ची शांति है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर कर्म, हर विचार और हर क्रिया में भगवान से जुड़ने का एक तरीका है। भगवान से एक गहरा संबंध स्थापित करने से हम अपने भीतर के डर और उलझनों को समाप्त कर सकते हैं और जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। अगर हम भक्ति के मार्ग पर चलें तो हमारा मन शांत रहता है, हमारी सोच सकारात्मक होती है और हम हर स्थिति का सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद् गीता के इस अध्याय से ये संदेश मिलता है कि कोई भी व्यक्ति भक्ति के रास्ते पर चल सकता है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। बस उसकी निष्ठा और समर्पण सच्चा होना चाहिए और जब हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं तो जीवन में हर मुश्किल आसान हो जाती है। अब इस अध्याय को समझने के बाद ये हमारा उद्देश्य बनता है कि हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में लागू करें, अपनी भावनाओं को शुद्ध करें, अपने कर्मों को सच्चे उद्देश्य से करें और भगवान से सच्ची भक्ति और समर्पण के साथ जुड़े। इससे न केवल हमारे जीवन में शांति आएगी बल्कि हम अपने भीतर छिपी अपार शक्ति को भी महसूस कर सकेंगे। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को राह दिखाई थी, ठीक वैसे ही हम भी अपनी भक्ति और कर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन के हर संघर्ष को पार कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए इस अद्भुत मार्ग पर चलकर हम न केवल आत्म शांति पा सकते हैं बल्कि हम जीवन को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। दोस्तों, ये था श्रीमद् भगवद् गीता का अध्याय 12, जिसे हमने गहराई से समझने की कोशिश की है। अब हम जल्द ही मिलेंगे अगले अध्याय 13 में, जहां हम और भी गहरी बातें सीखेंगे और समझेंगे कि जीवन के हर पहलू को सही दिशा में कैसे लगाया जा सकता है। आपको अगर इस अध्याय का संदेश पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। इससे हमें और अधिक प्रेरणा मिलेगी और हम आपको और भी शानदार ज्ञान देते रहेंगे। ध्यान रखिए, श्री कृष्ण के उपदेश केवल शब्द नहीं बल्कि हमारे जीवन को रूपांतरित करने वाली शक्तिशाली वाणियां हैं। तो चलिए इस भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और हर दिन एक बेहतर इंसान बनने की ओर कदम बढ़ाते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले अध्याय में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कहानी से कुछ सीखा हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब दोस्तों, एक और खास बात, अगर आप ऐसे ही जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक बातें और श्री कृष्ण की अमृत वाणी रोज सुनना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप श्री कृष्ण के अनमोल विचार को जरूर ज्वाइन करें। इस ग्रुप में हम हर दिन श्री कृष्ण के अनमोल विचार, गहरी शिक्षाएं और छोटी छोटी कहानियां शेयर करते हैं जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देंगी। ये ग्रुप पूरी तरह से फ्री है और आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी ज्वाइन करें और जीवन में नई रोशनी लाएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहें, प्रेरित रहें और सही फैसले लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।

वाह, क्या खूब गीत पेश किया। आइए अगला गीत सुनते हैं 1978 की एक सुपरहिट फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से, जिसमें अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, रेखा और राखी थीं। इस फिल्म का बेहद खूबसूरत संगीत दिया कल्याण जी और आनंद जी ने और गीत लिखे अनजान ने। आइए इसी फिल्म का ये शानदार गीत सुनते हैं संगीता जी और कविता जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अगला गीत सुनते हैं 1978 की एक और सुपरहिट फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से, जिसमें शशि कपूर और जीनत अमान थीं। इस फिल्म का बेहद मशहूर संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और गीत लिखे पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने। आइए इसी फिल्म का एक गीत सुनते हैं इंदिरा जी की मधुर आवाज में।

0: वाह, बेहतरीन प्रस्तुति। दोस्तों, ख्वाहिश तो यही है कि आपके साथ जुड़े रहें, पर समय हमें रोक रहा है। वक्त है आपसे विदा लेने का। आशा करता हूं कि आज की पेशकश आपको पसंद आई होगी। जाते जाते आओ झूमे गाएं ग्रुप की ओर से मैं मुकेश चोपड़ा आप सभी का और जयपुर रेडियो का धन्यवाद करता हूं।
1: दीदी देखो ना, मेरी स्किन कितनी रफ और ड्राई हो रही है, और ये पिंपल्स। लेकिन आपका फेस इतना ब्राइट और ग्लोइंग कैसे है?
2: देख छोटी, तुझे कितना समझाया था कि ये केमिकल्स वाले प्रोडक्ट मत यूज किया कर। देख मेरे पास है जादू JMD का एलोवेरा जेल, जो कि 100% आयुर्वेदिक है और स्किन की सारी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है।
1: अरे वाह, अब तो ये जादू मेरे पास भी है।
3: JMD, the wonder of Ayurveda।
4: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले, हल्ले हल्ले दिदिन तिनक दिन, दिदिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त, और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

0: to be sad now. You can do all of this on a click away through Jaipur Radio. Send messages and dedicate your favorite songs to your loved ones on your favorite program. Your voice, your identity. So what are you waiting for? Download Jaipur Radio app through Play Store and tune into your favorite songs. Celebrate your special occasion only on your own radio, Jaipur Radio.
1: संगीत से जुड़े हुए सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आरजे सपना देव गुप्ता और आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो का जगमगाता प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगू। आज हम भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक झिलमिलाता सितारा लेकर आए हैं, जो कि न सिर्फ अपने गीतों से बल्कि अपने काम से भी लोगों की जिंदगियों में खुशियां भर देते हैं। जी हाँ, अपने श्रोताओं की मुलाकात करवा रहे हैं जयपुर के जाने माने सर्जन डॉक्टर मनीष कल्ला से। स्टूडियो में स्वागत है आपका मनीष।
2: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर रेडियो के डिजिटल स्टूडियो के अंदर आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये हमारी खुशनसीबी है मनीष। तो सबसे पहले हमें आप जयपुर के बारे में बताइए। आज के समय में ये शहर बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग और डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए बहुत जाना जाता है, और इसके साथ ही कुछ अपने बारे में भी बताइए।
2: सबसे पहले मैं आप लोगों का एक बार और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। जहाँ तक रहा सवाल जयपुर शहर का, जयपुर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पिंक सिटी
1: जी,
2: एंड इस गुलाबी नगरी की सबसे ज्यादा सबसे बड़ी खासियत यहाँ का खाना, यहाँ की रजवाड़ी पोशाकें और यहाँ के राजमहल, और इसी की वजह से पूरी दुनिया से लोग बाग यहाँ पर ना सिर्फ रहने के लिए बल्कि डेस्टिनेशन वेडिंग्स, रिसोर्ट्स इन सब के लिए आते हैं। मेरी ये खुशनसीबी है कि मैंने SLS मेडिकल कॉलेज, जो जयपुर राजस्थान, जो राजस्थान का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, वहां से मैंने अपनी डिग्री प्राप्त करी।
1: क्या बात,
2: मैं यही का पला बड़ा हूँ। और जहां तक रहा कि मेरी मदर भी डॉक्टर थी, और आज की तारीख में अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं सिर्फ इसीलिए हूँ क्योंकि मेरी मदर डॉक्टर थी।
1: अरे वाह, ये आपने बहुत ही खूबसूरत बात बताई हमें। और इसी के साथ मनीष, हम आपका पहला गीत लेते हैं, क्या सुनवा रहे हैं हमें?
2: मेरी मदर का फेवरेट सिंगर थे मोहम्मद रफी साहब, उनका एक बहुत ही खूबसूरत गीत है, आज की रात मेरे दिल की सलामी दे।
1: अरे
2: वाह, चूंकि मैं आया हूँ तो आप लोग मेरे दिल की सलामी
1: जी जी जी जी। तो दीदी, आपका गीत हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं।

0: बहुत ही खूबसूरत सलामी आपके दिल ने दी हमारे श्रोताओं के लिए मनीष, मजा आ गया। तो पेशे से आप सर्जन हैं, बहुत ही बिजी लाइफ होगी आपकी। हम ये जानना चाहते हैं कि संगीत में आपकी रुचि कैसे बनी और इस शौक का आप अपनी बाकी जिम्मेदारियों से तालमेल कैसे बिठाते हैं।
1: मेरी संगीत की रुचि जो है वो मेरी नानी जी की वजह से बनी। मुझे मेरी नानी जी और नाना जी ने पाला पोसा, तो क्योंकि उन्होंने पाला पोसा तो मेरी नानी जी जो थी क्लासिकल म्यूजिक टीचर भी थी और सिंगर भी थी, तो वहां से धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे उनकी कॉपी करते करते उनसे थोड़े बहुत गुर सीखते सीखते मैंने गाना शुरू किया। तो 5 साल की उम्र में जब स्कूल के अंदर मेरा पहला स्टेज प्रोग्राम हुआ उस वक्त मेरी नानी जी थी वहां पे, तो यहाँ से मेरा संगीत का सफर शुरू हुआ।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो आज आप हमारे पास स्टूडियो में आए हुए हैं तो हम इस बात का फायदा उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं के लिए आप अपनी मीठी सी आवाज में कुछ यहीं पर दो लाइनें गुनगुना दीजिए अपने किसी भी पसंदीदा गीत का।
1: जी, ये अभिजीत जी का गाया हुआ बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, एक का दिल एक थी धड़कन मूवी से।
0: जी जी।
1: रेशम जैसी है राहें खोले हैं बाहें ये वादियां। और अभी बरसात के मौसम में इससे बेहतर गाना और कोई होगा।
0: वाह मनीष वाह, आपकी सुर और ताल की समझ की दाद देनी पड़ेगी, आपने बेहद खूबसूरती से समा बांध दिया। तो हम अपने श्रोताओं को जल्दी ये गाना सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि अपने शौक का आप अपनी बाकी जिम्मेदारियों के साथ तालमेल कैसे बिठाते हैं।
1: संगीत एक ऐसी दवा है जो सारे सारे मर्जों का इलाज है।
0: जी,
1: तो जहाँ कभी भी मैं थक कर आता हूँ और परेशान सा होता हूँ तो यही एक जगह है जो मुझे पनाह देती है। आता हूँ, सुनता हूँ, गुनगुनाता हूँ, गाता हूँ, अपने पुराने दिनों को याद करता हूँ। और इसी तरीके से मेरी जो टॉक्सिसिटी है, बिकॉज इट इज वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड ओवर हियर दैट अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी।
0: जी जी।
1: व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर और लेस मेंटल हेल्थ, म्यूजिक एक सबसे अच्छी थेरेपी है जो सारी की टॉक्सिसिटीज को निकाल कर आपको एकदम से तरोताजा महसूस कर पाती है।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से जो एप्स बनी है उससे बहुत मदद मिल रही है। मैं अपने श्रोताओं को यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगी कि इस म्यूल ऐप पर डॉक्टर मनीष कल्ला एक जाने माने सिंगर हैं और इनकी एक बड़ी स्ट्रांग फैन फॉलोइंग है वहाँ पर। तो इसी के साथ हम आपका गीत सुनवाते हैं।

0: बहुत खूब मनीष, आजकल सोशल मीडिया पर आता रहता है अक्सर कि कुछ डॉक्टर्स अपने मरीजों के इलाज के वक्त नाचते भी हैं, गाते भी हैं। कोविड के वक्त से शायद ये चलन शुरू हुआ, तो क्या आप भी अपने पेशेंट्स के लिए कुछ ऐसा करते हैं?
1: ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल मुझसे किया, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर और जब मैं जूनियर सर्जन हुआ करता था, तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर हम लोगों का ये तब से ही रिवाज था। गाने चलते रहते थे वहां पर पुराने, मोहम्मद रफी साहब के, किशोर कुमार साहब के, और हम लोग गुनगुनाते रहते थे, हम लोग गाते रहते थे। उससे हम लोगों को कॉन्सेंट्रेट करने में मदद मिलती थी, और उसके साथ साथ जो कि सर्जरी का प्रेशर हम लोगों के ऊपर आ रहा है वो निकल जाता था दिमाग से। तो हम लोगों की तो ये परिपालना ये काफी लंबे समय से है, और आज की तारीख के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि संगीत जो है वो आपकी आत्मा को, आत्मा की शुद्धिकरण के लिए बहुत जरूरी है। तो उसी की वजह से आज की तारीख के अंदर म्यूजिक थेरेपीज हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं, जो कि पेशेंट को, और इस तरीके की चीजें आई हैं सामने जहां पर इवन कैंसर के मरीज तक म्यूजिक थेरेपी से उन लोगों का पेन काफी कम हुआ है। तो म्यूजिक बहुत ही अच्छा है मेंटल हेल्थ और पेन के लिए, इवन बच्चों के लिए भी। अगर आप जो है कुछ गुनगुनाते हैं तो उनको तुरंत से नींद आ जाती है, तुरंत से शांत हो जाते हैं। इज अ मेडिसिनल प्रेस्क्रिप्शन नाउ डेज।
0: क्या बात है, ये तो वाकई एक बहुत ही दिलचस्प बात आपने बताई है, और लोगों को ये पता भी होना चाहिए कि संगीत का क्या इम्पोर्टेंस है हम सबकी लाइफ में। तो इन सभी दिलचस्प बातों से एक छोटा सा विराम लेते हैं और आपकी पसंद का एक और गीत सुनते हैं।

0: मनीष कहते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे कोई खड़ा रहता है जो कि उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता है, उसे मॉरल सपोर्ट देता है। तो आप अपनी कामयाबी का श्रेय अपनी मेहनत के अलावा और किसे देना चाहेंगे?
1: मैं सबसे पहले तो परमपिता परमेश्वर को इस चीज का धन्यवाद देना चाहूंगा। महादेव का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, कोशिश करता हूँ महादेव की कई भी चीजों के ऊपर आचरण करने का। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर पृथ्वी की कम बात करूँ तो मेरे नाना नानी का सबसे बड़ा योगदान है, जिन्होंने मेरे को पाला पोसा बड़ा किया। मेरे अंदर जो भी वैल्यूज डाली गई उनके थ्रू डाली गई। एंड उसके बाद मैं मेरी माँ का, क्योंकि मेरी माँ अगर डॉक्टर नहीं होती तो मैं नहीं होता, ये बात मैं पहले भी बता चुके
0: हैं।
1: और इन सारी चीजों के साथ साथ जिस एक और इंसान का जिसका मैं बहुत ज्यादा तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, वो है मेरी अर्धांगिनी ऋचा।
0: वाह, क्या बात है।
1: मेरे सपोर्ट में अगर वो नहीं खड़ी होती तो जितनी जगहों पर मैं बाहर गया, आज की तारीख में भी मैं अफ्रीका में हूँ, मैं अफ्रीका में सिर्फ इसीलिए हूँ कि कहीं ना कहीं उसने मुझे ये संबल दिया हुआ है, ये कॉन्फिडेंस दिया हुआ है कि नहीं आप वहाँ पर काम कीजिए, मैं यहाँ पर परिवार संभालती हूँ।
0: जी,
1: तो ये सारी चीजें, एंड शी इज ऑल्सो वर्किंग वुमेन, इट इज नॉट दैट शी इज नॉट अ वर्किंग वुमेन, तो ये सारी की सारी चीजें कई सारी जगहों पर उसने भी सेक्रीफाइस किया है, कई सारी जगहों पर मैंने भी सेक्रीफाइस किया, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली इफ शी हैड नॉट सपोर्टेड मी आई वुड नॉट हैव बीन इन
0: जी। बहुत ही आप धरती के साथ जुड़े हुए इंसान हैं, क्योंकि आजकल की दुनिया में मनीष जी बात यह है कि बहुत लोग कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ही होते हैं जो वाकई श्रेय अपने परिवार वालों को देते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आपकी ये बात सुनकर। तो हम और हमारे श्रोता चाहेंगे कि इन सब के लिए जिनको भी आपने श्रेय दिया है, आपकी अर्धांगिनी, आपकी मम्मा और आपके नानी नानू, उनके लिए आप एक गीत हमें प्यारा सा सुनवा दीजिए।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीष कल्ला। आपसे ये गुफ्तगू बहुत ही मजेदार रही। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे श्रोताओं के लिए दो शब्द कह जाइए।
1: सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ पर आपके और आपके श्रोताओं के समक्ष खड़ा हूँ।
0: थैंक यू।
1: और श्रोताओं के लिए सिर्फ इतनी सी बात है कि संगीत गुनगुनाते रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
0: बहुत खूब। तो दोस्तों, ये थी हमारी मुलाकात डॉक्टर मनीष कल्ला के साथ, जो कि जयपुर के जाने माने सर्जन हैं और फिलहाल साउथ अफ्रीका में किसी काम से वहां पर रह रहे हैं। तो ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारे स्टूडियो में उन्होंने आने के लिए अपनी मसरूफ जिंदगी से कुछ टाइम निकाला। मैं हूं आरजे सपना देव गुप्ता और जल्द ही आपसे दोबारा मिलूंगी एक नए सितारे के साथ। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के साथ यूं ही हंसते मुस्कुराते और गुनगुनाते रहे। रब राखा।

0: महफिले गजल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: नमस्ते, आदाब। सुनने वालों को लक्ष्मी का प्यार भरा सलाम। आओ झूमे गाये के जानिब, मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आज के इस महफिल में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। दोस्तों, जगजीत जी ने बेशुमार गजलों को अपनी रूह परवर आवाज से सजाकर हमेशा के लिए हयाते जावेदा बख्शती है। ताहम कुछ अनमोल जवाहरात हैं जिनमें खूबसूरत शायरी, बेपना मौसीकी और अजीम पेशकश मौजूद हैं। उन्हीं नायाब मोतियों में से एक मोती यानी एक एल्बम को रेयर जेम्स का एजाज हासिल है। आज के महफिल के फनकार उसी एल्बम से कुछ चुनिंदा गजलों को आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहले मैं दावत देना चाहूंगी जनाब मनीष सूद जी को। वे हमारे लिए पेश करेंगे जब भी आती है तेरी याद, जिसके शायर हैं कृष्णा अदीब साहब। मनीष सूद जी।

वाह मनीष जी, आफरीन आफरीन, क्या खूब पेशकश थी। ये थे मनीष सूद जी अपने खूबसूरत अंदाज और गुदाज भरी आवाज में इस गजल को इन्होंने पेश किया। दोस्तों, हमने अभी अभी सुना था कि जब हमें और आपको किसी की याद आती है तो हमारी कैफियत क्या होती, लेकिन क्या आलम होगा जब वह शख्सियत आपसे रूबरू हो। ना मजा है दुश्मनी में, ना है लुत्फ दोस्ती में, कोई गैर गैर होता, कोई यार यार होता। तो चलो हम चित्रा सिंह जी की पुरसोस आवाज में पेश करदा दाग दहलवी की एक हसीन गजल को समाप्त करते हैं। जयपुर रेडियो के लिए इसे पेश करने आ रही हैं शोमा सी रॉय। अजब अपना हाल होता जो विसाल यार होता,

वाह, बहुत खूब शोमा जी, बेहतरीन पेशकश। दोस्तों, जब दो दिल एक दूसरे की चाहत में जज्बातों की आंधी से गुजरते हैं, वह जज्बा है इश्क। लेकिन जिगर मुरादाबादी साहब कहते हैं, जिंदगी न देख जलवाए आफताब बन, शौक को रहनुमा बना जर्रे में रोशनी न देख, क्योंकि इश्क फना का नाम है। इस खूबसूरत गजल को अपनी सुरीली आवाज में पेश करने आ रही हैं अनुराधा जी।

वाह अनुराधा जी, बहुत खूब। ये जयपुर रेडियो पर आपकी पहली पेशकश थी जिसे आपने अपनी खूबसूरत आवाज में गाया। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है, आपका ये सफर यूं ही चलता रहे। दोस्तों, जनाबे जिगर मुरादाबादी ने ना सिर्फ उर्दू गजल को एक पहचान वो परवाज बख्शी बल्कि शहनशाह तगज़ल का खिताब भी हासिल किया। इनकी एक मशहूर गजल जो इंसानी जज्बात व एहसासात को खूबसूरत अंदाज में बयां करती है, सुनते हैं इसे डॉक्टर अंकित अवस्थी की आवाज में। मुझे दे रहे हैं तसल्लियां, जनाब अंकित अवस्थी जी।

0: वाह अंकित जी, सदा फ्री।
1: दोस्तों, गजल एक ऐसा फन है जिसमें महबूब से बातें होती हैं। इश्क और मोहब्बत के जज्बात को लफ्जों में पिरोकर गुनगुनाया जाता है, साथ ही साथ गजल के जरिए शिद्दते गम का भी इजहार किया जाता है। इसमें टूटे हुए दिलों के लिए मरहम और मुदावा का भी सामान होता है। अब हम दावत देते हैं आशुतोष भट्ट जी को, ये पेश करेंगे कृष्ण अदीब जी की ये नज्म शहरों शहरों आज है तन्हा। जनाब आशुतोष भट्ट जी।

वाह आशुतोष जी, बहुत खूब, क्या कहने, आपने तो कमाल ही कर दिया। दोस्तों, 19वीं सदी में मुगलिया सल्तनत का जाहो जलाल अब जवाल का शिकार हो चुका था। तभी दिल्ली उर्दू के अजीम शायरों का मरकज बन गया था, जिनके शहंशाह मिर्जा असदुल्ला खां गालिब थे। गालिब साहब न सिर्फ इश्को मोहब्बत और सोजो शराब की बातें करते थे, बल्कि जिंदगी की नशेबो फराज के बारे में भी अपने ख्यालों और जज्बों का इजहार करते थे। बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि उन्होंने तकरीबन आधी जिंदगी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने अपना मुकदमा पेश किया और सालों पेंशन की बहाली के लिए कानूनी चाराजोई करते रहे। और ये ऐसी शख्सियत थी जिसकी शायरी इस्तियारों से पुर थी। वह अपनी एक गजल में मजा से भरा एक कानूनी इस्तियारा यूं पेश करते हैं। फिर खुला है दरे अदालत नाज, गर्म बाजार ए फौजदारी है। तो चलिए सुनते हैं संजीव नागर जी की आवाज में इस बेहद खूबसूरत गजल, जनाब संजीव नागर जी।

0: वाह संजीव जी, क्या कमाल का फन आपने पेश किया है। दोस्तों, आज की ये हसी शाम जिससे हम सब सामाएं लुत्फंदोज हो रहे थे, अब मंजिल की आखिरी पड़ाव पर है। मैं लक्ष्मी बालचंद्रन अपने तमाम सुनने वालों और जयपुर रेडियो का शुक्रिया इस शेर से अदा करना चाहती हूँ। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, तुम ही चल दिए दास्तां कहते कहते। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
1: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है। प्रस्तुत है

0: प्रोग्राम बातें दिल की, और बातें दिल की लेके आई हैं सुषमा, और सुषमा के साथ है जाने माने नाट्य निर्देशक, लेखक और रंगकर्मी अशोक राही। इस प्रोग्राम के टेक्निकल निर्देशक हैं ओपी शर्मा।
1: नमस्कार, मैं हूँ सुषमा। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कहते हैं जीवन बनता है पलों से, और कोई भी पल तब खूबसूरत हो जाता है जब उसमें कुछ खास बात हो जाए। ऐसी ही खास बातों से तो सजा है हमारा जीवन। तो हमारी बातचीत में हम तलाशेंगे अपने खास मेहमान के खास पल इन बातें दिल की। चले चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है, जो थककर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। हफीज बनारसी की ये पंक्तियां हमारे आज के मेहमान की जीवन यात्रा या यूं कहे कर्म यात्रा पर सटीक बैठती हैं, जो पिछले 45 वर्षों से रंगकर्म से जुड़े हुए हैं और अपनी कला के रंगों से नित नई तस्वीर बनाकर सभी को आकर्षित करने का फन रखते हैं। राजस्थान के जाने माने नाट्य लेखक, निर्देशक, व्यंगकार श्री अशोक राही, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, राजस्थान साहित्य अकादमी अवार्ड, सवाई माधो सिंह कला अवार्ड, बेस्ट थिएटर प्रमोटर अवार्ड हरियाणा, ऐसे बहुत से अलंकरण के अलावा दर्शकों के दिलों के प्यार को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाते हुए हर नए पल में कुछ नया रचने की कला के महारथी हैं। नमस्कार अशोक राही जी।
2: नमस्कार। नमस्कार सुषमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी।
1: आपके दिल की बातें जानने का मौका आज हमारे पास आया है, तो लेके चलिए हमें अपने बचपन के शहर, घर आंगन में, और उस पल में जब आपके मन में ये विचार आया कि पहली बार कि कलम और रंगमंच आपके जीवन साथी बनेंगे।
2: असल में जैसा कि अक्सर होता है, कई बार हमारे जो बचपन में जो हमारी स्मृतियां होती हैं, बचपन में जो हम जिस माहौल में रहते हैं, उस माहौल का आदमी के ऊपर बहुत भारी प्रभाव पड़ता है। ये तो दुनिया के सारे मनोवैज्ञानिक कहते हैं, और मुझे लगता है कि मेरे साथ भी यही हुआ। बचपन में मैं अपनी बुआ जी के साथ रामलीला और इस तरह हमारे शहर में, मैं आपको बताऊं कि मैं एक छोटा सा शहर है अलवर, उसका रहने वाला हूं, तो उस शहर में ये रामलीला होती थी, भर्तृहरि महाराजा भर्तृहरि नाटक होता था, तो बहुत चार पांच छह साल का था तब वो देखने जाते थे, तो उसका कुछ प्रभाव रहा होगा। और उसके बाद में ये संयोग की बात है कि मेरे पिता सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, हमारे सिनेमा हॉल थे राजस्थान में दो तीन, और मैं बचपन में मेरा जो खेलने का समय था वो ज्यादातर सिनेमा हॉल में बीतता था, कि स्कूल से आए अपना बस्ता घर पे पटका और जाके सिनेमा में बैठ गए, और ऐसा भी नहीं कि कोई पूरा सिनेमा देख रहे हैं, पर कभी 10 मिनट देखा, कभी 15 मिनट देखा, कभी ना देखा, तो इस तरह वो उस जमाने की जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ये 1965, 66, 67, 68, 68, उस जमाने की जो फिल्में थी वो बहुत प्रभावशाली फिल्में हुआ करती थी। राज कपूर साहब थे, राज कपूर की संगम उन दिनों मैंने जितनी भी मेरे समझ में आई देखी, देवन साहब की गाइड देखी, दिलीप कुमार साहब की जो गंगा जमुना फिल्म है वो देखी, मनोज कुमार की उन दिनों बड़ा नाम था, उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध फिल्म थी शहीद, और उसके बाद में उपकार फिल्म आई उनकी, तो ये सारी फिल्में देखते देखते उनका संगीत, वो सारा माहौल हो सकता है कि वो मेरे दिमाग में रहा हो। और फिर कॉलेज के जमाने में जब मैं पढ़ता था, मैंने पहली बार मैं नाटक से जुड़ा जी। सुषमा
1: जी, तो नाट्य लेखन की यात्रा यूं कहें कि तब से आरंभ हुई जब आप कॉलेज में पढ़ते थे।
2: जी जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि नाट्य लेखन की यात्रा तब से शुरू नहीं हुई, नाटक के प्रति जो अनुराग है, कला के प्रति जो बात है दिल में कि ये कुछ है, कुछ करना चाहिए। वैसे मूलतः मैंने विज्ञान पढ़ी है, आपने भी विज्ञान पढ़ी है मुझे पता है, तो लेकिन विज्ञान के साथ साथ ये कला के इस क्षेत्र में फिर कुछ जीवन चला जाएगा ये उस समय नहीं सोचा था। मैं ऐसा कोई सोचता भी नहीं है मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा, अपन लोग कहते हैं कि बच्चे बचपन से ही सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, एक धारा होती है जो उस तरफ उसको ले जाती है, और वो अवचेतन की धारा होती है जी। सुषमा,
1: बहता चला जाता है उस धारा में, तो

0: ऐसा ही जो असर आप पर फिल्मों में डाला या नाटकों ने डाला वो आगे जाकर आपके जीवन से जुड़ गया, लेकिन उस समय शायद आपका भी यही मानस रहा होगा जैसे उस वक्त सोचते थे सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए कि पढ़ ले और उसके बाद एक नौकरी मिल जाए, तो ऐसा आपके साथ भी हुआ?
1: बिल्कुल बिल्कुल, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ, लेकिन मैंने ये किया कि अपना अपना जो जो ये नाटक का और अभिनय का और विशेषकर उस समय साहित्य का, साहित्य से जुड़ने का जो सिलसिला है वो शुरू से ही बचपन से ही रहा। उस जमाने में बहुत साहित्य भी ऊंचे दर्जे का साहित्य पढ़ा, हालांकि ऐसा नहीं है, उस समय इब्ने सफी और ओम प्रकाश शर्मा और इनके उपन्यास भी, वेद प्रकाश कांबोज, इनके जासूसी उपन्यास भी बहुत पढ़े जाते थे, हम 10वीं 11वीं में थे, वो भी पढ़े, लेकिन
0: साहित्य ने आप पर असर डाला।
1: जी जी जी, और साहित्य भी, लिटरेचर भी पढ़ा। जी हाँ जी सुषमा,
0: तो नाट्य लेखन की यात्रा हमें बताएं कब से आरंभ हुई?
1: असल में नाट्य लेखन, जब नाट्य लेखन तो मेरा बहुत बाद में शुरू हुआ, शुरुआत में मैं आपको बताता हूँ, शुरुआत में हमारा शहर, मैं अपने शहर के की नाट्य उसके बारे में बताता हूँ, अलवर शहर की जो बात कर रहा हूँ,
0: हाँ।
1: वहां पर एक नाटक होता है, उस नाटक का नाम है महाराजा भर्तृहरि
0: जी,
1: और वो कमाल का पारसी रंगमंच का, पारसी शैली का एकमात्र नाटक है जिसको अलवर शहर आज भी जिंदा रखे हुए है। वर्ष उस नाटक के दशहरे से लेकर दीपावली तक लगभग 15-20 प्रदर्शन होते हैं और हर प्रदर्शन में कम से कम 8-10 हजार लोग उस नाटक को देखते हैं, टिकट से देखते हैं, टिकट खरीदते हैं, और अब तो मेरे ख्याल से उसका टिकट 500 रुपए इस तरह का है, हमारे जमाने में बहुत कम 1 रुपए 2 रुपए का हुआ करता था, और वो नाटक एक पारसी रंगमंच की परंपरा को लेकर चल रहा है। तो ऐसे नाटक उस शहर में हमने, उस जमाने में मेरे दोस्त हुआ करते थे, दुर्भाग्य से अब वो नहीं रहे हमारे साथ, ईश मधु तलवार नाम के एक दोस्त थे, बलवंत तक्षक नाम के एक दोस्त थे, देव कुमार मुखर्जी नाम के एक दोस्त थे, तो हम लोगों ने सोचा कि अपने शहर में एक आधुनिक रंगमंच की धारा शुरू की जाए, तो उसके दौरान हमने वहां पर सबसे पहले नाटक शुरू किए, और पहला नाटक हमने शुरू किया एक अनिल बर्वे नाम के बहुत बड़े मराठी के एक लेखक थे, और उस जमाने में 1980 में उनका एक बड़ा प्रसिद्ध नाटक था, थैंक यू मिस्टर ग्लाड, बाद में उस नाटक के ऊपर फिल्में भी बनी, कालिया और दूसरी फिल्में, वो कमाल का नाटक था, उस नाटक को हमने अपने शहर में मन एक और उस नाटक को, वो नाटक इतना सफल रहा, मेरे ख्याल से 1-2 हजार लोगों ने उस नाटक को देखा और बहुत बहुत पसंद किया
0: जी।
1: तो वो एक बुनियाद था नए रंगमंच की मेरे लिए भी, और मैंने उसको नाटक को निर्देशित भी किया था, हालांकि उस समय मैं बहुत युवा था, मन में बहुत डर भी था, लेकिन अच्छी बात यह रही कि वो नाटक सफल रहा क्योंकि हमने उसको तैयारी करने में बहुत मेहनत की थी।
0: तो मेहनत आपकी रंग लाई
1: जी,
0: और
1: जी।
0: ये जो मेहनत का दौर था ये शुरू हो गया आपकी जिंदगी में और जिंदगी का हिस्सा बन गया, और यही मेहनत आज आपको इस सक्सेसफुल यूं कहें कि एक मंच पर उसने खड़ा कर दिया है।
1: सुषमा जी, मैं एक मेहनत के ऊपर ही एक बड़ी जोरदार बात जो मेरे जीवन का अनुभव है ना, वो अपने नए मित्रों को, सुनने वाले मित्रों को जो हमारा रेडियो सुन रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि एक बहुत छोटी सी बात है लेकिन कमाल की बात है, वो ये है कि मेहनत गुमनामी में कीजिए, मेहनत गुमनामी में कीजिए, सफलता आपका शोर मचाएगी।
0: क्या बात है, बिल्कुल।
1: अगर आप परिश्रम से जुड़े हुए हैं किसी भी कला से, कोई सी भी कला हो, मैं अपने नए साथियों को यही कहता हूं कि आप उसको मन से, दिल से प्रेम कीजिए उस कला को, और आप ये देखिए पूरा पूरा एक इतिहास है कला, कला क्षेत्र में इतिहास है, राजनीति में, साहित्य में, कि जो लोग मन से जुड़े वो सफल हुए।
0: तो नाट्य लेखन की यात्रा की बात हमने की जिसकी शुरुआत अलवर शहर से हुई और फिर उसकी धूम जयपुर में मची और अब तो पूरे राजस्थान में इसकी धूम है, राइट? कौन सा वो वर्ष था जब आपका पदार्पण हुआ जयपुर में?
1: मैं जयपुर में आया था 1987 में, काफी बरस हो गए, अब तो कोई पूछता भी है कि कहाँ के रहने वाले हो तो मुंह से निकलता है जयपुर का रहने वाला हूँ, क्योंकि जहाँ फिर बस जाता है आदमी का वही घर हो जाता है। हम वैसे तो हम राजस्थान के देश के, अब मैं तो सच्ची बात बताता हूँ, मैं तो ये मानता हूँ कि मैं तो पूरी जो यूनिवर्स है उसका मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ, क्योंकि कलाकार के लिए तो अब यही है, ये सारी देश दुनिया सब अपनी है, यही हमारी संस्कृति में भी यही कहा गया है कि अखिल विश्व हमारा घर है।
0: एक हास्य व्यंगकार के रूप में आपने प्रसिद्धि हासिल की है, खास तौर पे कहूँ कि ये आपका जॉनर रहा है जिस पर आप लिखते भी हैं और बहुत से नाटक आप मंचित करते हैं। इसके अलावा आपने पीपल्स मीडिया एंड थिएटर की शुरुआत की और उसके आप प्रेसिडेंट रहे हैं, ये ड्रामा ग्रुप ने शुरुआत की है इसकी। राजस्थान पत्रिका में लगातार 20 साल तक व्यंगात्मक बातों से परिपूर्ण कॉलम लिखना और सबको हर दिन एक सोच दे देना कि हाँ इस पर सोचना बहुत जरूरी है एक आम जन को, बात करामात के नाम से बहुत प्रसिद्ध रहा, इतनी चीजों के लिए ये इंस्पिरेशन कहाँ से आता है?
1: देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि लेखन हो या साहित्य हो, जो सारा उपजता है, और एक एक बड़ी दिलचस्प मैं आपको बात बताता हूँ, वो सृजन प्रक्रिया के बारे में है। मैं हासी गंगी की भी बात करूंगा लेकिन पहले सृजन प्रक्रिया की बात करूं। आप किसी भी लेखक से ये पूछिएगा कि आप लिखते कैसे हैं, मेरे ख्याल से इसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा, आप वो उत्तर दे ही नहीं पाएगा। और मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कोई मुझसे पूछता है कि आपने इतना इतने बरस तक 20 बरस तक हजारों लिखे हैं, प्रतिदिन लिखता था, कैसे लिखता था? मैं अब अपने लिखे हुओं को मैं स्वयं खुद पढ़ता हूं तो मुझको लगता है कि भगवान क्या ये मैंने लिखा है। मैं यकीनन बात बता रहा हूं इसमें। अच्छा एक इसको, इस बात को ही मैं दूसरी तरह से भी जोड़ के बताता हूँ कि देखिए हमारे यहाँ ये कहा गया है और ये धर्मशास्त्र में भी कहा गया है कि हमारे यहाँ जैसे वेद हैं, वो कहा गया है कि ये वेद ईश्वरीय रचना है। इसी तरह कुरान के बारे में भी यही कहा गया है कि वो ईश्वरीय रचना है, ईश्वर ने रचा है उनको, ये ऊपर से आई है नीचे। वेदों के बारे में भी यही कहा गया है और यही बात बाइबल के बारे में भी कही गई, ये वो ईश्वर के द्वारा रची गई रचना है जो आई है। मैं बिल्कुल इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, मैं उसको उस तरह नहीं ले रहा जो एक धार्मिक परंपरावादी लोग रहते हैं लोग लेते हैं। मेरा निश्चित रूप से मानना है कि ये मनुष्यों के द्वारा रची गई है, लेकिन मैं एक बात आपको बता देता हूं कि उस मनुष्य को भी बिल्कुल पता नहीं होता जब वो अपना रचना लिखता है कि वो उसने कैसे लिख दी। एक बहुत बड़ी बात है, और आप चाहे इसमें गालिब को पढ़ लीजिए, कबीर को पढ़ लीजिए, वो सब तुलसी को पढ़ लीजिए, वो अपनी रचना प्रक्रिया में ये बात जरूर कहते हैं कि हमें खुद को नहीं पता कि ये हमने कैसे लिख दी। हालांकि लोग उसको कहते हैं कि ये इन्होंने विनम्रता वश कही है, लेकिन वो बात विनम्रता वश नहीं कही है, वो बात बिल्कुल सच है
0: जी।
1: इसको अंधविश्वास के रूप में न ले हम ये मेरा कहने का मतलब है कि आदमी के जीवन के अनुभवों का उसके जो निचोड़ होता है, जो वो सारी जिंदगी चीजों को देखता है, जो उसके मस्तिष्क में जाके पक जाती हैं और वो उस निकलती हैं
0: शब्दों के माध्यम से, फिर वो
1: शब्दों के माध्यम
0: पर निकलती हैं। बिल्कुल
1: वो निकलती
0: और कुछ ऐसा भी होता है कि हर दिन हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है या हम कुछ ऐसा लोगों में देखते हैं, तो आपकी जो एक किसी को देखने की या किसी प्रक्रिया को समझने की शक्ति आपके अंदर होती है तभी आप उसे कर पाते हैं, वैसा कर पाते हैं
1: निश्चित रूप से। चलिए मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ सुषमा, आप वाणी से जुड़ी हुई हैं, बोलने के माध्यम से जुड़ी हुई हैं, आप क्या अनेकों बार ऐसा नहीं होता है कि आप माइक्रोफोन के सामने हैं और उस समय आप बोल रही हैं और आपको अपने आप शब्द आपके सामने आते जा रहे हैं, अपने आप वाक्यों की बुनावट होती जा रही है, कैसे होता है?

0: मेरे घर में कोई खुशी है, चाहे मेरे बेटे का ब्याह है, चाहे ये है कि मेरी नानी का स्वर्गवास हो गया और मुझको, लेकिन मुझको लिखना है
1: जी,
0: क्योंकि अखबार आप इस बात का इंतजार नहीं करेगा, तो आपको तो लिखना ही है। अब उस सारी प्रक्रिया के अंदर प्रतिदिन लगो, मुझको इस बात का गर्व है कि 20 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन मैंने वो ना लिखा हो।
1: जी,
0: तो ऐसा थोड़ी हुआ कि मेरी जिंदगी में ये सारे जो होते रहते हैं ये नहीं हुए, लेकिन लेकिन एक नियमितता कि लिखना है तो वो लिखा। और अब बहुत सारे युवा मित्र पूछते हैं कि आपके आइडिया कहां से आते हैं।
1: जी
0: देखिए, ये भी मैं आपको बता दूं, अगर मैं अपने दोस्तों से और विशेषकर आपके माध्यम से, अपने एफएम के माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने दिमाग को, अपनी इंद्रियों को खुला रखेंगे, आंख को और कानों को खुला रखेंगे, तो आपको आइडिये कहीं से भी मिल जाएंगे। आप सड़क पे जा रहे हैं, आप बस में बैठे हुए हैं, आप कॉफी हाउस में कॉफी पी रहे हैं, दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं, आपके घर में कोई कोई बुजुर्ग महिला आई है, वो अपने अनुभव बता रही है, आइडिया वहां से मिल जाएंगे आपको। आप प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं और वो ही सर्वश्रेष्ठ होंगे, और आप उनको फिर उस, अब ये क्षमता तो आप में होनी चाहिए कि उनको आप
1: ग्राह्य शक्ति होनी चाहिए, बिल्कुल कुछ ऐसे किस्से कहानियां कभी जीवन में जरूर हो जाते हैं और लेखक तो उन्हें कलमबद्ध कर देता है, मतलब ऐसे वाक्य जो आपके नजरिए को ही बदल डालते हैं, क्या ऐसा कुछ हुआ आपकी जिंदगी में भी जो जिन्होंने आप पर असर डाला और बहुत बार आपकी जो एक सोच चल रही थी वो बदल गई, डायरेक्शन बदल गया?
0: यहाँ पे मुझको कबीर याद आ रहे हैं और कबीर ने एक बहुत दिलचस्प बात कही है, और वो कहा है कि कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुभास। इसका अर्थ ये है कि अगर आप किसी इत्र फरोश के साथ बैठे हुए ही हैं, बेशक वो आपको इत्र देगा नहीं, लेकिन उसके साथ बैठने से उसकी जो खुशबू है इत्र की, उसके इत्र की खुशबू, वो तो आपके इर्द गिर्द मन रहेगी, वो तो आपको उल्लासित करेगी, आनंदित करेगी।
1: बिल्कुल,
0: संगत का बड़ा महत्व है सुषमा जी, आप किस संगत में बैठते हैं। अगर आप विद्वान लोगों की संगत में, विद्वानों का देखिए, यहाँ विद्वानों का मतलब ये नहीं कि कोई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के साथ
1: बैठे,
0: नहीं नहीं नहीं, विद्वानों से मतलब एक जीवन के अनुभवों से पके हुए। जैसे बात करामात में मैं सबसे ज्यादा जो बातें लिखता था वो मेरी नानी की लिखता था, जो मेरी नानी ने बचपन में मुझको बातें करती थी, उसकी हरकतें कैसे बात करती थी। मैं सबसे ज्यादा बातें, एक मेरा दोस्त था राधे, वो नहीं रहा, वो बिल्कुल लेमैन था, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, और उस राधे के साथ जो मैं बीतता था, वो बैठता था, उसकी बातें मैं राधे की बातें लिखता था, तो वो लोगों को बड़ी पसंद आती थी, वो कहती वाह वाह यार आप तो कमाल करते हो। तो ये मेरा कहने का मतलब है। जी
1: जी बिल्कुल, रंगमंच आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, या यूं कहूं कि मतलब जो आपकी लाइफ सेंटर्ड रही है वो रंगमंच को लेकर रही है, राइट?
0: जी,
1: रंगमंच को आपने महत्व दिया है और इसी क्षेत्र में आप अब बहुत सारे बच्चों को भी आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं अपने वर्कशॉप्स के द्वारा। ये जो रंगमंच होता है, इसका हमारे जीवन में किस तरह महत्व होता है, किस तरह आप जीवन यात्रा को जोड़ते हैं एक रंगमंच से?
0: तो पुनः नई पीढ़ी को एक दिलचस्प छोटी सी कुछ कविता के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो उनको बहुत याद रखना चाहिए। एक छोटे से चार लाइनें हैं, किसी शायर ने लिखा है कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, तुम भी संभाले हो गिरती हुई दीवारों को अब वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है।
1: बहुत खूब,
0: ये बुजुर्गों की निशानी को संभालना, यहां बुजुर्गों की निशानी का मतलब

0: ये नहीं कि हम उनके घर को संभालें, हम वो जो रिवायत है, जो संस्कार है हमारी, जो हमारे पीढ़ियों से हमारी संस्कृति में है, इन संस्कारों को संभालना। और थिएटर में भी यही है। देखिए थिएटर हमारे यहाँ सबसे, सारे विश्व में सबसे पुरानी जो परंपराएं हैं वो हमारे देश में मिलती है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में, जो हजारों बरस पहले की है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनान के अंदर भी सैकड़ों साल पुराना रंग, हजारों बरस पुराना रंगमंच है, लेकिन हमारी परंपरा यूनान के जो रंगमंच है, यूनानी रंगमंच से भी पहले की है। और पश्चिम में तो स्टैनलिवस्की वगैरह, वो तो 18वीं 19वीं सदी के लोग हैं वो तो
1: जी,
0: बाकी जो कुछ है। तो इस परंपरा को जो हमारे भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में लिखा है, उस परंपरा के अनुसार अपना नाटक करना। और मेरा उद्देश्य यह है कि नई पीढ़ी को मैं यही सिखाता हूं। बहुत छोटी छोटी बातें उन्होंने, और उन्होंने तो नाट्यशास्त्र पढ़ने में तो आदमी की सारी जिंदगी गुजर जाए तो भी वो उसको नहीं समझ सकता। इतनी सारी बातें उन्होंने इतने बारीक ढंग से लिखी गई हैं, वो पता नहीं भरत मुनि एक थे या कई पीढ़ियों ने वो लिखा है, इस बात की दूसरी बात है। नई पीढ़ी को मैं ये समझाना चाहता हूं कि नाटक जो एक ऐसी कला है जिसमें सारी कलाएं समाहित हैं। देखिए नाटक में संवाद अदायगी बोलने की कला है, नृत्य है, अंग संचालन है, नाट्य तो है ही उसके अंदर, इसके अंदर संगीत है, नाट्य संगीत, मनोविज्ञान है, सामूहिकता है। किसते नाटक कोई एक आदमी नहीं कर सकता, नाटक के लिए बड़े एक ग्रुप की जरूरत पड़ती है
1: जी।
0: वो एक समूह की, और ये सारी की सारी चीजें जो मैनेजमेंट है, जिसको सिखाया जाता है, जिसको लाखों 10 लाख रुपए फीस होती है अच्छे कॉलेज में एमबीए की फीस, ये कि ये बातें वहां पे भी सिखाई जाती हैं। वो ठीक है, वो एक व्यवस्थित रूप से उनकी एक भाषा है, उनकी एक थ्योरी है, उनका एक सब कुछ है, लेकिन नाटक में भी वही चीजें सिखाई जाती हैं। नाटक में अनौपचारिक ढंग से सिखाई जाती हैं, नाटक में उसको कलात्मक ढंग से सिखाई जाती है। और यही कारण है कि पिछले दिनों सुषमा जी अलग अलग डिसिप्लिन के जो बच्चे मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं वो बच्चे, जो बच्चे MBBS कर चुके हैं वो बच्चे, ऐसे बच्चे जो PhD कर रहे हैं, ऐसे बच्चे जो आर्किटेक्चर में आर्किटेक्ट बन गए वो, और बहुत सारे ऐसे बच्चे कि जो अपना भविष्य ही इस कला माध्यम में तलाशते हैं कि हमको तो मुंबई जाना है और अभिनेता बनना है
1: जी।
0: तो ऐसे सैकड़ों बच्चे मेरे जीवन में, सैकड़ों तो हो सकता है कि 1000 के आसपास संख्या हो गई हो, क्योंकि हर बरस 50-60-100 बच्चे आ जाते हैं, तो हजारों बच्चे मेरी जिंदगी में आए। और वो देखिए मैं एक बात और बताता हूं सुषमा जी, कि कोई जरूरत नहीं है कि आप उस कला को अपनी जीविका का भी साधन बनाए, कोई सी भी कला हो, चाहे संगीत की कला है। मैं आपकी बात करता हूं, जितना मैं आपके बारे में जानता हूं, आपने भी शुरुआत संगीत से की थी ना
1: जी,
0: गायिका थी आप, प्रसिद्ध गायिका रही थी, आपने एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार भी जीता है
1: जी, जी, जी।
0: लेकिन वो सारी चीजें मनुष्य के काम आती हैं और उसके जीवन को एक अच्छा बनाने में, एक जिसको कहते हैं प्रफुल्लित करने के अंदर ये सारी कलाएं काम आती हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि आप नाटक से जुड़े, आप बोलने से जुड़िए, आप पेंटिंग से जुड़िए, आप नृत्य से जुड़िए, आधुनिक नृत्य कीजिए। कोई वो ऐसा नहीं है कि आप भरतनाट्यम या कथक या कथकली करेंगे, आप जो आधुनिक नृत्य है उसकी जो कोरियोग्राफी आजकल करते हैं उससे जुड़िए।
1: यानी आर्ट को अपनी लाइफ में एक वो इम्पोर्टेंट जगह देनी बहुत जरूरी है।
0: निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, जी जी जी हाँ।
1: और जिंदगी के जो चैलेंजेस होते हैं, मुझे लगता है एक आर्टिस्ट उन्हें बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लेता है। चैलेंजेस को कैसे हैंडल करना है, ये भी हमें रंगमंच बहुत अच्छे से बखूबी सिखा देता है। अब बात करते हैं कुछ मेमोरेबल प्रोजेक्ट्स की। आपके बहुत से प्रोजेक्ट्स रहे हैं, रेडियो में आपने बहुत कमाल का काम किया है, रंगमंच तो किया ही है, तो कुछ ऐसे पल जब आपको वाकई गर्व हुआ हो और अपनी टीम पर गर्व हुआ हो, अपने जो भी आपका कार्य रहा उस पर गर्व हुआ हो, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बातें जो सभी को बताना चाहेंगे।
0: जी जी, मैं दो तीन बातें बताता हूँ। एक तो सबसे बड़ा युवा पीढ़ी के लिए और नौजवानों के लिए, किसी के भी लिए भी, एक दो बातें मैं जो कहना चाहता हूँ वो एक है कि खुदा के हाथ में मत सौंप सारे कामों को, बदलते वक्त में कुछ अपना इख्तियार भी रख। कुछ काम अपने लिए भी छोड़ मेरे प्यारे दोस्त। भगवान के भरोसे मत रह, जो करेगा भाग्य करेगा, जो होगा ईश्वर चाहेगा वो होगा, वो तो होता ही है, चलो ठीक है मान लिया उसको भी, लेकिन जब आप खुद उसमें नहीं लगेंगे। उदाहरण के लिए मैं एक बात बताता हूं, मैंने एक नाटक किया जिस नाटक की अवधि थी 10 घंटे, रामचरित नाट्य।
1: बिल्कुल,
0: 10 घंटे, ये आमतौर से हम 1-1.5 घंटे का नाटक करते हैं, उस नाटक को हमको तैयार करने में लगभग 3 महीने लगते हैं, 90 दिन में एक नाटक तैयार होता है। बहुत बड़ी प्रक्रिया है नाटक की तैयार करने की, क्योंकि एक सामूहिक विधा है। 10 घंटे के नाटक को तैयार करने में, उसकी तैयार करने में मैंने कम से कम 8 महीने तो उसकी स्क्रिप्ट पे काम किया। दुनिया भर की किताबें पढ़ी, दुनिया भर की, मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी, रामचरित मानस पढ़ी, राधेश्याम जी की रामायण पढ़ी, मेहोजी गोदारा की रामायण पढ़ी, एक दक्षिण की एक बहुत बड़ी संत है उनकी उनकी रामायण पढ़ी, ऐसे कम से कम 10 रामायणों का पाठ किया, उनमें से प्रसंग निकाले, उनमें से निकाल के और फिर एक स्क्रिप्ट तैयार की।
1: जी,
0: परंपरागत रामायण जो चलती है उसकी स्क्रिप्ट मैं निकलवा के लाया अपने दोस्तों से और उनको मिला के एक नाटक, 10 घंटे का नाटक हुआ जिसमें नृत्य भी था, जिसमें संगीत भी था, और वो हमने जवाहर कला केंद्र में किया, जवाहर कला केंद्र के साथ मिलके, और लगातार 2 वर्षों से कर रहे हैं,
1: हजारों लोग
0: जी
1: जी
0: 5 घंटे जी।
1: आपका खेजड़ी की बेटी मुझे याद आ रहा है, जिसके मतलब पता नहीं अनंत शोज आपने किए हैं जगह जगह पर।
0: खेजड़ी की बेटी की भी यही प्रक्रिया रही। खेजड़ी की बेटी जब नाटक तैयार किया, इसका भी मैं दिलचस्प बताता हूँ कि मेरे मित्र थे श्री डीएन शैली साहब, वो नहीं रहे, मरहूम डीएन शैली साहब, उन्होंने मुझसे कहा कि यार एक ये घटना है कि राजस्थान में 363 लोगों ने पेड़ों के लिए बलिदान किया था। ये बात मैं बताता हूं आपको, 1990 के आसपास की बात है, 90-91 की, और ये नाटक तुमको लिखना है, क्योंकि मैं शैली साहब के लिए बच्चों के नाटक लिखता था, वो मुझसे लिखवाते थे और वो मंचित करते थे, उन्होंने कहा ये नाटक लिख। एक आईसी श्रीवास्तव साहब एक बहुत पुराने आईएएस अधिकारी हुआ करते थे, शिक्षा कर्मी बोर्ड के उन दिनों अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि भाई इसके ऊपर नाटक लिखवाओ। वो नाटक का मैंने पढ़ा तो उसके बारे में इधर उधर सुना, पता था कि 363 लोगों ने बलिदान किया है, तो मैंने एक छोटी सी सिनॉप्सिस बनाई और डीएन शैली साहब को दे दी, मैंने कहा यार ये घटना है। डीएन शैली साहब ने उसको पढ़ा, फिर व्यंग से मुस्कुरा के कहा कि यार ये तो कोई बात नहीं है, ये तो क्या क्या है, ये तो तुमने कुछ मेहनत ही नहीं की, इधर उधर से किया। ये बात मुझको बहुत चुभी मन में।
1: अच्छा,
0: मैंने कहा यार ये तो मतलब जो चालू, जिसको कहते हैं ना चालू माल, अशोक रही, ये तो बहुत तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। उसके बाद मैंने शोध करना शुरू किया। प्रोफेसर हीरा लाल जी माहेश्वरी राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, हिंदी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उन्होंने बिश्नोई संप्रदाय और जाम्बोजी के ऊपर पीएचडी की थी, उनके 2 वॉल्यूम थे, कम से कम 1,000 पृष्ठ
1: जी
0: किताबें थी, बड़ी बड़ी, वो किताबें मैं लाया। फिर मैंने ये सोचा, ये लगा कि उस समय जो मारवाड़ था, ये घटना जोधपुर के में खेजड़ली में हुई थी ना, तो मारवाड़ का इतिहास क्या रहा होगा, उस समय देश की राजनीति क्या कर रही होगी। तो विश्वेश्वर नाथ रेव नाम के एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं मारवाड़ के, उनकी पुस्तकें हैं वही 1000 पृष्ठ मारवाड़ का इतिहास, वो मेरे मित्र से लाया। और तो इसके अलावा मेरे मित्र श्री तुलसीराम जी माजू जो बिश्नोई हैं, हेतराम जी बिश्नोई, कर्नल बिश्नोई, ऐसे कई बिश्नोई मित्रों के घर गया, उनसे पूछा कि क्या आपकी वैल्यूज हैं, क्या आप पहनते हैं, क्या क्या ये घटना है, कौन लोग थे जो 363 लोग जो मर गए। तो उन्होंने मुझको एक सूची दी कि ये 363 लोग मरे थे
1: जी।
0: और उन सबको मिला के उनका गहन अध्ययन करके मैंने एक नाटक लिखा, और वो नाटक की अवधि मात्र 1 घंटा 20 मिनट
1: जी।
0: लेकिन उस 1 घंटे 20 मिनट को नाटक को तैयार करने में मुझे तो महीनों लगे और हजारों प्रश्न पढ़ने पड़े, तो वो नाटक तैयार हुआ।
1: लेकिन आप वो मेहनत रंग लाई,
0: इतनी रंग लाई कि पूरे देश में वो जब जहां जहां मैंने नाटक खेला, 20,000 लोगों के बीच में खेला तो उनको उन्होंने पसंद किया, इंडिया इंटरनेशनल में खेला 400 लोगों के बीच में जो देश के बिल्कुल सुपर इंटेलेक्चुअल लोग हैं उन्होंने वो पसंद किया, मंत्रियों के बीच में खेला राज्यपालों ने पसंद किया, सामान्य जन में खेला उन्होंने पसंद किया। उसका कारण ये था कि एक तो वो घटना, दूसरा उसकी ऑथेंटिसिटी इतनी जबरदस्त हो गई, और सुषमा जी आप यकीन नहीं करेंगे उसके बाद में बिश्नोई संप्रदाय के तो लोग ही मुझको आके बताने लगे कि ये घटना ऐसे हुई थी, जबकि वो पूरी तरह घटनाक्रम मैंने अपने हिसाब से नाटकीय तरीके से बनाया था, लेकिन वो इतना विश्वसनीय हो गया। ये कुल मिला के जो मैं कहना चाहता हूं ना, वो अध्ययन के साथ उसमें अपनी कल्पनाशीलता जब तक नहीं करेंगे, एक लेखक का यही सृजन है। अब कोई मुझसे पूछता है कि नाटक तुमने कैसे लिखा, तो मैं यही बताता हूं, बाकी वो ये है कि ये तो जाम्बो जी ने, गुरु जम्बेश्वर ने और अमृता देवी ने लिखवा लिया, वरना मैं कौन होता हूं। ये नाटक तो उन्होंने लिख दिया जो 300 बरस पहले ये बलिदान कर गए, एक्चुअली नाटक तो ये उन्होंने लिखा है।
1: बिल्कुल, लेकिन आपकी बातों से ये साफ जाहिर हो रहा है कि कितनी चीजों का समावेश होता है जब एक कृति को तैयार किया जाता है।
0: इसमें कोई दो राय नहीं है सुषमा जी।
1: एक नाटककार के रूप में आप आज जो अपना आसपास का दौर देखते हैं, लोगों को देखते हैं, क्योंकि यंगस्टर्स से आपका काफी आप रूबरू होते हैं, है ना, अपने आर्ट को उन तक पहुंचाते हैं, तो क्या सोचते हैं आप, क्या बदलना चाहते हैं आज के वक्त में अगर आप नजर डालें तो?
0: नहीं देखिए, ये भी एक बात है, कोई भी लेखक अगर ये सोच के करेगा कि मैं पूरे समाज को बदल दूंगा तो ये उसका रवैया ठीक नहीं, इसमें उसमें उसका अहंकार बोलता है
1: जी।
0: तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी थी उस समय कतई उनका मंतव्य नहीं था कि मैं कोई समाज को सुधारूंगा, वो उन्होंने एक भाव से लिखी थी। कबीर ने जो दोहे लिखे वो अपने मन के भाव से लिखे, मीरा के जो पद हैं, मीरा का जो प्रेम का है, उन्होंने, मीरा ने ये थोड़ी सोचा कि मैं इस तरह समाज में प्रेम का प्रसार करूंगी, ऐसा नहीं होता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। मैं जिस तरह से होता हूं, लेखक को ईमानदारी से अपने काल को देखते कि मेरे समय में क्या चल रहा है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, जब मैंने खेजड़ी की बेटी नाटक लिखा तो उस समय जो उसका राजनीतिक पोर्शन है वो लिखा, तो उस समय राजनीति में क्या था कि 2 साल में कम से कम 6-7 बादशाह वहां बदल गए थे दिल्ली में, मोहम्मद अजम और जाफर शियर और जरदार शाह, और 6-6 महीने एक एक साल रह के। और संयोग की बात है जब मेरा यह नाटक लिखा जा रहा था उस समय हमारे देश में भी ये हो रहा था, पहले चंद्रशेखर, वो राजीव गांधी थे, फिर चंद्रशेखर बने, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह बने, फिर इंदिरा कुमार गुजराम, यानी कि साल छह महीने में 5 प्रधानमंत्री हमारे देश में भी बदल गए।
1: अच्छा,
0: अब आप ये देखिए, ये कोइंसिडेंट है क्या है कि, लेकिन कैसे वो 300 बरस पहले की राजनीति और उस समय की राजनीति बिल्कुल यूं की यूं मिल रही थी। लोगों ने उस समय तो एकदम जोड़ा कि अरे ये तो हो रहा है, वहां पे बादशाह बदल रहे हैं, यहाँ प्रधानमंत्री बदल रहे हैं। आपको ध्यान होगा उस काल में हमारे देश में कितनी जल्दी प्रधानमंत्री बदले थे।
1: जी जी जी,
0: कुछ घटनाएं कुछ होती है। अच्छा, आज भी आप आज कोई नया लेखक है वो कोई लिखना चाहे, मैं कहता हूँ उस समय देखिए कैसा हमारे समाज के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, विशेषकर महिलाओं को लेके क्या प्रॉब्लम, कितने मतलब जिसको कहते हैं कि हम क्या, मेरे शब्द समझ में नहीं आ रहा है, कितने दिखावटीपन हमारे समाज में आ गया है। जिंदगी में सारे दौरों में आ गए, कितने क्या हम इतने सहज हैं जैसे हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी हुआ करते थे। आप देखिए, मुझे तो यकीन नहीं होता कि ब्याह शादी हमारे घरों में, अब मैं देश के सेठों की बात नहीं कर रहा, मैं तो हमारे घरों की बात कर रहा हूँ, हमारे घरों में जो आजकल शादियां होती हैं, अरे बाप रे कितना दिखावटीपन आ गया उसमें। जबकि हमारे जमाने में 50 बरस पहले जो शादियां होती थी, कैसे सहजता से शादियां होती थी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये लगती हैं, ठीक है पैसा आया है, कैसे खाने पीने की चीजें बदल रही हैं, कैसे संस्कार, आप देखिए समाचार पत्रों में जब हम खबरें पढ़ते हैं और विशेषकर बच्चियों को लेकर जो खबरें आती हैं, दिल नहीं टहल जाता है।
1: बिल्कुल,
0: आप एक लेखक का ये अपने आप दायित्व बनता है और अपने आप उसको वो लिखता है और लिख भी रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं लिखा जा रहा, लिख रहे हैं। ये जो सामाजिक ढोंग है, राजनीतिक ढोंग है, अभी मैंने नाटक किया जो मुंबई के लेखक अनुरोध शर्मा उनका लिखा हुआ वनफूल की पत्ती गुल, पूरी राजनीति का ऐसा वो है कि एक राजनेता कैसी कैसी हरकतें कर रहा है उसमें और उसकी आत्मा बदल गई, वो बड़ा एक दिलचस्प नाटक है, वो अभी पिछले दिनों ही शो किए थे उसके। कहना मैं ये चाहता हूं कि ये चीजें रचनाकार के की रचनाओं में अपने आप आते हैं, उनको हास्य से प्रकट कीजिए, आप व्यंग के साथ प्रकट कीजिए, लोग आनंद लेते हैं, लेकिन उस चीज को वो दिल पे लगती है उनके, ऐसा नहीं है वो सोचते हैं कि यार ये गलत है तो गलत है। जी सुषमा जी,
1: अशोक राही जी ने वैसे तो बहुत कुछ अभी तक अपनी जीवन यात्रा में पाया है, लेकिन ऐसा होता है कि बस जीते जीते हमारे जो सपने हैं वो बदलते रहते हैं, तो ऐसा कोई सपना जो अभी भी बाकी है आप देखते हैं और उसे यथार्थ का स्वरूप देना चाहते हैं?
0: मुझे गालिब याद दिला दिया, गालिब ये लिख के गए हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले,
1: हर ख्वाहिश पे दम निकले,
0: बहुत निकले मेरे अरमाफ लेकिन फिर भी कम निकले।
1: तो कुछ ना कुछ तो छूट जाता है,
0: निश्चित रूप से छूटता है। एक आदमी अपने अपने जीवन में क्या कर सकता है, एक कितना लिख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए एक और दिलचस्प बात बताता हूँ, वो हमारी परंपरा में, हमारे देश की परंपरा में ही, हमारे यहाँ पे कोई रचना, महान रचना गुरु शुरू करता था लिखना और गुरु अपने पूरे जीवन में लिखता रहता था और उसके बाद में उसका जीवन कम पड़ जाता था तो उसके शिष्य उसको लिखते थे,
1: पूरा करते थे। जी,
0: पूरा करते थे। और मजे की बात कि वो अपना नाम भी नहीं देते थे उसमें, शिष्य नाम गुरु का ही चलता था। महाभारत जैसी महान रचनाएं जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं, नाट्य शास्त्र जैसी रचनाएं, ये किसी एक आदमी का काम नहीं है।
1: जी,
0: ये बड़ी लंबी परंपरा है, ये परंपरागत तरीके से लिखी हुई चीजें हैं, ये तय है। लेकिन नाम वेद व्यास जी का ही है और बाकी लोग पूछते भी नहीं है और कहते भी नहीं है और शिष्य भी नहीं कहते थे। हमारे देखिए आज भी लोक के अंदर ये परंपरा चलती है, जैसे एक भगत नाम के एक मान लो लेखक हैं जो लोक गीत लिखते हैं, तो उनके जो शिष्य हैं ना वो भी भगत नाम से लिखेंगे और इस परंपरा को कहते हैं भोग लगाना
1: जी।
0: जैसे अपने आते हैं ना शब्द आते हैं कि बीच में गजल के अंत में शायर का नाम आता है, ऐसे वो अपने गुरु का नाम ही उस रचना के अंत में लिखते हैं
1: जी।
0: कबीर के नाम से ऐसी हजारों रचनाएं समाज में घूम रही हैं जिनमें कबीर कबीरा कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीर ने लिखी है लेकिन कहत कबीर सुनो, अगर मान लो उनका कोई अनुयायी है तो वो भी यही लिखेगा कहत कबीर सुनो भाई साधो। ये ऐसा डेडिकेशन, ऐसी ऐसा समर्पण, ऐसी परंपरा, ये हमारी हमारी परंपरा में मिलती है, हमारे देश की साहित्यिक परंपरा में जी।
1: बिल्कुल, हम आपकी जो डेडिकेशन है उसको भी सलाम करते हैं और चाहेंगे कि जो भी यंगस्टर्स हैं जो आप ही के पदचिन्हों पर चलना चाहते हैं, ऐसा सपना देखते हैं, क्या उनके लिए कहना चाहेंगे और क्या कुछ बातें हैं जो उनके साथ, क्योंकि आप शेयर करते ही रहते हैं अपनी वर्कशॉप्स के जरिए, उन नए नए बच्चों को बहुत सारा इंस्पिरेशन देते रहते हैं, तो आज क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, वो सुन लीजिए कि इस अंधेरे में तो ठोकर ही उजाला देंगी, इस अंधेरे में तो ठोकर ही उजाला देंगी, रात जंगल में कोई शम्मा जलाने से राह। आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। बुद्ध कह के गए थे, बुद्ध जब मरने लगे तो उनका जो शिष्य था, जो उनका भाई भी था चचेरा भाई आनंद, 40 बरस तक उनके साथ रात था, वो रोने लगा और कहने लगे कि तथागत आप जा रहे हैं हमारा क्या होगा। तो तथागत ने कहा कि अप दीपो भवे, अपने दीपक खुद बनो
1: जी,
0: नई पीढ़ी को अपना दीपक खुद बनना पड़ेगा। आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जो परंपरा है, अपने गुरु हैं, जो अच्छा लिखने वाले हैं, जो अपने बुजुर्ग हैं, उनसे नहीं सीख सकते, सीखिए उनसे, वो तो सबसे बड़े आपके साथी हैं, लेकिन अंत में आपको खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, खुद ही सीखना पड़ेगा। और मैं इस बात को उस तरह ना लिया जाए, खुद शिताई में ना लिया जाए, लेकिन मेरा तो नाटक में कोई गुरु ही नहीं रहा कि जिससे मैंने सीखा हो, लेकिन यूं देखते हैं तो हजारों दत्तात्रेय की तरह हर वो साथी, हर वो गलती मेरी गुरु थी, हर नया साथी मेरा गुरु होता है जो एक नई तरीके से एक्टिंग करता है, और वो बात ही बातों में एक ऐसी बात कह जाता है कि जो दिमाग के एकदम खोल देती है, प्रकाश लग जाता, करे ये बच्चा तो ऐसी बात कर रहा है। तो सीखने का जो जज्बा है ये सबसे बड़ी बात है सुषमा जी।
1: सीखने की प्रक्रिया अनंत चलनी चाहिए, जीवन पर्यंत चलनी चाहिए, यह शुक्राही जी का मानना है और उनके साथ भी यही चल रहा है, तो हम यही कहेंगे कि आपका जो ये हसीन सफर है वो यूं ही चलता रहे, बहुत सारे माइलस्टोन्स अभी आपने क्रिएट किए हैं लेकिन और भी करें जिनको देखकर हम इंस्पायर हो, नए बच्चे इंस्पायर हो और बहुत कुछ सीखें, बहुत कुछ समझें।
0: बस सबसे बड़ी बात है मित्र अच्छे होने चाहिए, समझदार होने चाहिए, आप सरीखे व्यास जी जैसे ऐसे मित्र हों तो फिर तो कहना ही क्या, आदमी अपने आप आगे बढ़ेगा।
1: तो अशोक राय जी, आपका हम दिल की बातें जो आपने हम सभी के बीच रखी हैं आज, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, थैंक यू सो मच।
0: मैं भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके माध्यम से मैंने भी बड़े खुले दिल से अपनी जो भी मेरी समझ है जीवन की वो आपके सामने रखी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी।
1: और हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हरिशंकर व्यास जी का और साथ ही ओपी शर्मा जी का, थैंक यू सो मच।
2: आप सुन रहे थे प्रोग्राम बातें दिल की, और दिल की बातें कर रही थी अशोक राही के साथ सुषमा, टेक्निकल निर्देशन रहा ओपी शर्मा का, और अब डॉक्टर गाधा के सुरीले गीतों की बात करते हैं।

संग था खेल तो भुज में लट लपट झपटता था ललिता चंदा सलिपियो बोर रंग घोर कर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी

गीत सुहाने आप सुन रहे थे डॉक्टर गाथा मोहंती की आवाज में। आपकी आवाज आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। आज का ये सुहाना सुरीला सफर यहीं तक। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।

तिनक दिन दिदिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

0: radio. Send messages and dedicate your favorite songs to your loved ones on your favorite program. Your voice, your identity. So what are you waiting for? Download Jaipur Radio app through Play Store and tune into your favorite songs. Celebrate your special occasion only on your own radio, Jaipur Radio.
1: आओ झूमे गाए। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज, आपकी पहचान।
2: संगीत जगत से जुड़े सभी संगीत प्रेमियों को मुकेश चोपड़ा का प्यार भरा नमस्कार। सभी का मूड्स ऑफ रफी प्रोग्राम में मैं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, रफी जी ने हर तरह के गाने गाए हैं, चलिए उनके कुछ प्यार भरे रोमांटिक गीत सुनते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं 1967 में रिलीज्ड फिल्म शागिद से, जिसमें जॉय मुखर्जी और सायरा बानू थी। इस फिल्म का सदाबहार म्यूजिक दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, जो आज तक तरोताजा है। इसी फिल्म का एक सदाबहार रोमांटिक गीत सुनते हैं जिनी और डॉक्टर शरद की आवाज में।

वाह क्या बेहतरीन गीत पेश किया। अगला गाना सुनते हैं 1968 में रिलीज्ड फिल्म हसीना मान जाएगी से, जिसमें शशि कपूर और बबीता जी थीं। प्रकाश मेहरा जी की ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म का सदाबहार म्यूजिक दिया कल्याण जी आनंद जी ने, जिसमें मोहम्मद रफी जी और लता जी के गाए हुए गाने बहुत फेमस हुए। ऐसा ही एक मधुर और बेहतरीन गीत सुनते हैं डॉली जी और संजय जोशी जी की आवाज़।

वाह, क्या बेहतरीन गीत पेश किया, बहुत खूब। आगे बढ़ते हैं 1963 में रिलीज्ड फिल्म हमराही से, जिसमें राजेंद्र कुमार और शोभा खोटे थे। इस फिल्म का संगीत दिया शंकर जयकिशन ने, जिसमें प्लेबैक किया मुबारक बेगम और मोहम्मद रफी जी जैसे सिंगर्स ने। आइए इसी फिल्म से एक डुएट सुनते हैं श्वेता जी और संतोष खेरे जी की।

0: बहुत खूब, चलिए अगला गाना सुनते हैं 1962 में बनी फिल्म दिल तेरा दीवाना से, जिसमें शमी कपूर और माला सिन्हा थी। इस फिल्म का संगीत दिया शंकर जयकिशन और प्लेबैक किया मोहम्मद रफी, लता जी और आशा जी जैसे कलाकारों ने। ऐसे ही फिल्म का एक मधुर गीत सुनते हैं प्राची और सुबोध जी की मधुर आवाज़।
1: पिछली की राके

क्या मधुर गीत पेश किया, बहुत खूब। अगला गाना सुनते हैं 1961 में बनी फिल्म जंगली से, जिसमें शम्मी कपूर और सायरा बानो थी। इस फिल्म का संगीत दिया शंकर जयकिशन ने और प्लेबैक किया मोहम्मद रफी और लता जी ने। चलिए इसी फिल्म का एक मधुर ड्यूएट सुनते हैं, सविता जी और अमित पाठक जी की मधुर आवाज में।

वाह, बेहतरीन प्रस्तुति। अगला गाना सुनते हैं 1958 में रिलीज्ड फिल्म काला पानी से, जिसमें देवानंद और मधुबाला जी थीं। इस फिल्म का सदाबहार संगीत दिया एसडी बर्मन जी ने और प्लेबैक किया मोहम्मद रफी जी और आशा भोंसले जी ने। आइए इसी फिल्म का एक मधुर गीत सुनते हैं सचिन और प्रणीति जी के मधुर स्वरों में।

0: वाह, बेहतरीन प्रस्तुति। दोस्तों, कहीं ना जाइएगा, रफी जी के मधुर गीतों का सिलसिला अभी जारी है।
1: रफी सोलफुल, बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट दिया गया है मुझे। सोलफुल यानी कि रूहानी गाने, वो गाने जो दिल को छू जाएं, चाहे वो दर्द भरे गीत हों, गजल हों, चाहे रोमांटिक हों, चाहे शरारती हों। रूहानी संगीत हमारी रूह की गहराइयों में पहुंचकर हमारी रूह कभी गमगी कर देता है, कभी प्योर लव का एहसास दिलाता है, कभी एक छोटा बच्चा बनकर गुदगुदाता है, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है। कुल मिलाकर रूहानी संगीत हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हम सब अपने जीवन में कभी न कभी खुद को उन गीतों से जुड़ा पाते हैं। मोहम्मद रफ़ी के ऐसे ही कुछ नगमे, गीत, गज़ल पेश करूंगा आपके सामने आज मैं मनु मृदुल, इंटरनेट रेडियो जयपुर के सौजन्य से, आओ झूमे गाएं समूह की ओर से। सबसे पहले सुनते हैं एक बेहद रुमानी गीत, सूर्य रेखा जी और सैंडी की आवाज़ में, फिल्म मोहब्बत इसको कहते हैं, जिसमें मोहम्मद रफ़ी का साथ दिया है सुमन कल्याणपुर ने।

वाह क्या बात है सूर्य रेखा दी और सैंडी। जैसा कि मैंने कहा, रूहानी संगीत सिर्फ रूमानी गीतों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बेचैन दिल की निराशा का भी एहसास दिलाते हुए दिल की गहराइयों में उतर जाता है। ऐसा ही एक गीत सुनिए श्रुति और मुकेश चोपड़ा की आवाज में, जिसे फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त में मोहम्मद रफी ने गाया था।

चलिए अब सुनते हैं दिल की अभिव्यक्ति को उजागर करने वाला मोहम्मद रफी का गाया एक गीत अनिल झुमका वाला की आवाज में, फिल्म तीन देवियों से।

अगला गाना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपको अवश्य ही ऐसा लगेगा जैसे जन्नत यहीं उतर के आ गया हो। नौशाद का संगीत और मोहम्मद रफ़ी की गायकी, साजों की आवाज़, सुर लय ताल, जैसे शहद की मिठास और दिल में उमड़ता हुआ प्रेम। इससे ज़्यादा क्या हो सकती है कोई प्रेम की अभिव्यक्ति। इस गीत को मोहम्मद रफ़ी ने गाया था फिल्म मेरे महबूब में, और आपके सामने ला रहे हैं संजय हार ने।

सिर्फ प्रेम की अनुभूति ही नहीं बल्कि विरह और विरह की उदासी और मोहब्बत की बेचैनी को भी रफी अपने गानों में ऐसे उतारते थे कि चाहे किसी का दिल टूटा हो या ना टूटा हो, हर कोई उस गम को उनके गाए गानों में आसानी से महसूस कर ही लेता है। मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनकर लगता है कि मोहम्मद रफ़ी ना सिर्फ महसूस करके गाते थे बल्कि जो सुनता है वह खुद उसमें खो जाता है। इसी को कहते हैं रूहानी आवाज़। सुनते हैं अगला गीत विमल सोनी की आवाज़ में, जिसे मोहम्मद रफ़ी ने फिल्म दिल एक मंदिर में गाया था।

कहते हैं सत्य कड़वा होता है, मगर यकीन मानिए मोहम्मद रफ़ी ने इस बात को झुठला दिया है। और यह हो पाया है मोहम्मद रफ़ी के सत्य को अभिव्यक्त करने के अंदाज से। यही नहीं, अगला गाना सुनकर आपको सत्य बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा, बल्कि उस सत्य के आध्यात्म को सुनकर सोच में पड़ जाएंगे। शाश्वत सत्य को मोहम्मद रफ़ी ने जिस गंभीरता से गाया है, उससे तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्होंने उसे रूह से महसूस करके गाया है। मगर मुझे विश्वास है कि इस गीत को सुनने के बाद आप भी आत्मविभोर हो उठेंगे। ये गीत फिल्म चित्रलेखा से है, जिसे लिखा है साहिल लुधियानवी ने और संगीत दिया है रोशन ने, जिसे आज लेकर आ रही हैं बहुत ही सुरीली और बेहद उम्दा गायिका जूही सिन्हा।

बरसात में भीगती हुई नायिका और शायर दूर से उसे निहारता हुआ। क्या ये भूलने की बात है? जिस तरह शायर ने उस माहौल का व्याख्यान किया है और जिस बखूबी से मोहम्मद रफ़ी ने उसे गाया है, लगता है जैसे सब कुछ आंखों के सामने एक चलचित्र की तरह घूम रहा हो। यह होता है रूहानी संगीत का असर। पेश करने जा रहे हैं आपके सामने संजय गुप्ता, जम्मू से।

0: इसी खूबसूरत गीत के साथ
1: बने रहिए हमारे साथ।
2: जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। जयपुर रेडियो।
3: उफ, ये सर दर्द, ओह मेरी कमर, और ये बंद नाक और जुखाम, कौन दिलाएगा इन सबसे राहत?
4: अरे इन सबसे राहत दिलाएगा JMD का बामवेदा, जिसके आयुर्वेदिक गुण सर दर्द, बदन दर्द और सर्दी को दूर भगाएं।
5: JMD, द वंडर ऑफ आयुर्वेदा।
6: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले, हल्ले हल्ले दिदिन तिनक दिन, दिदिन तिनक दिन, अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त, और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

0: favorite program, Your Voice, Your Identity. So what are you waiting for? Download Jaipur Radio app through Play Store and tune into your favorite songs. Celebrate your special occasion only on your own radio, Jaipur Radio.
1: आओ झूमे गाए आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो आपकी आवाज आपकी पहचान
2: संगीत जगत से जुड़े सभी संगीत प्रेमियों को मुकेश चोपड़ा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज की शाम कुछ खास है क्योंकि हम आज एक ऐसे गायक के बारे में बात कर रहे हैं जिनको हम सब सुरों के बादशाह के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ सही पहचाना, वो कोई और नहीं हम सबके चहेते मोहम्मद रफी जी हैं। रफी जी का जन्म 1924 में अमृतसर के कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था और उनको बचपन में सब फिंकू के नाम से पुकारा करते थे। उन्होंने कई भाषाओं में गाने गाए जैसे कि असमीस, कोंकणी, भोजपुरी, तेलुगु, मैथिली, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली जैसी भाषाएं। और तो और उन्होंने इंग्लिश, फारसी, अरेबिक, सिन्हला, डच, स्पैनिश जैसी भाषाओं में भी गाने गाए। उन्होंने हर तरह के गीत भी गाए जैसे कि भक्ति गीत, शास्त्रीय गीत, गजल, कव्वाली, देशभक्ति गीत, मस्ती भरे गीत और दर्द भरे गीत। तो फिर आज के गीतों के कारवां का आगाज करते हैं 1977 की फिल्म हम किसी से कम नहीं से, जिसमें ऋषि कपूर जी थे। इस फिल्म को बेमिसाल संगीत से सजाया आरडी बर्मन जी की धुनों ने और सुरों को लफ्जों से सजाया मजरू सुल्तानपुरी जी ने। इस फिल्म के सारे गाने खूब धूम मचा रहे थे, पर उस साल का फिल्म फेयर का बेस्ट सिंगर अवार्ड मिला मोहम्मद रफी जी को और साथ ही साथ उसी गाने के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। तो फिर आइए उसी गीत को सुनते हैं मेरी और विद्या प्रकाश जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1980 की फिल्म आप ऐसे तो न थे से है, जिसमें राज बब्बर और रंजीता कौर थीं। इस फिल्म का जादू भरा संगीत दिया उषा खन्ना जी ने और गीत लिखे निदा फाजली जी ने। क्यों ना इसी जादू भरे गीत को सुना जाए विद्या जी और बिंदु जी की मधुर आवाज में।

क्या खूब पेशकश की। आइए अगला गीत सुनते हैं 1973 की फिल्म एक नारी दो रूप से, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा और रश्मि धवन थी। इस फिल्म में मात्र 4 गाने थे और सारे के सारे गाने सुपरहिट हुए। इस फिल्म का मधुर संगीत दिया गणेश जी ने और बेमिसाल शब्दों से सजाया असद भोपाली जी ने। चलिए इसी फिल्म के एक बेमिसाल गीत को सुनते हैं MD त्यागी जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1963 की फिल्म उस्तादों के उस्ताद से है, जिसमें प्रदीप कुमार के साथ शशिकला थी। इस फिल्म के सारे गाने खूब हिट हुए। इस फिल्म का बेहद शानदार संगीत दिया रवि जी ने और गीतों को शब्दों से पिरोया असद भोपाली जी ने। आइए इसी शानदार गीत को सुनते हैं अनिल झुमका वाला जी की मधुर आवाज में।

कहिए, थी ना ये एक शानदार पेशकश। दोस्तों, चलिए एक खेल खेलते हैं, पर उसके लिए आप सबको पहले अपनी आंखें बंद करनी होंगी। जी हाँ, आंखें बंद। ये ना सोचिएगा कि मैं देख नहीं रहा, आंखें बिल्कुल बंद। अब अगर मैं आप सबको इस मौसम में कश्मीर की बर्फीली वादियों में ले चलूं तो कैसा रहेगा? चारों तरफ बर्फीली वादियां, बर्फीले पहाड़ और ये मस्त सर्द हवा। क्या कहा आपने? कोई फिल्म का नाम याद आया? सही कहा, कश्मीर की कली। ये एक ऐसी फिल्म थी जो कश्मीर की बर्फीली वादियों में शूट की गई थी। इस फिल्म के मस्ती भरे गीत लिखे SH बिहारी जी ने और उतना ही मस्ती भरा संगीत दिया OP नैयर जी ने। आइए इसी मस्ती भरे फिल्म के मस्ती भरे गीत को सुनते हैं जूही जी और सज्जाद जी की मधुर आवाज में।

कैसी लगी ये बर्फीले पहाड़ों की सैर? कश्मीर की कली एक ऐसी फिल्म थी जिसमें शम्मी कपूर के सभी गीतों को स्वर दिया मोहम्मद रफी जी ने और सारे के सारे गाने खूब सुपरहिट हुए। चलिए एक और मस्ती भरा गीत सुनते हैं गायत्री जी और डॉक्टर आदेश जी की मधुर आवाज में।

कहिए कैसी रही ये मस्ती भरी पेशकश। चलिए अगला गीत सुनते हैं 1973 की फिल्म धर्मा से, जिसमें प्राण, नवीन निश्चल और रेखा थीं। इस फिल्म का बेहद खूबसूरत संगीत दिया मास्टर सोनिक और ओम प्रकाश सोनिक जी ने, और इस फिल्म के गीत लिखे वर्मा मलिक जी ने। आइए इसी फिल्म का एक मस्ती भरा गीत सुनते हैं अंजलि दत्त के और संजीव जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अगला गीत जो आप सुनेंगे वो 1967 की सुपरहिट फिल्म तीसरी मंजिल से है, जिसमें शमी कपूर के साथ आशा पारेख थी। इस फिल्म के सभी गीतों में मोहम्मद रफी जी ने शमी कपूर जी को अपनी आवाज दी और सारे के सारे गाने सुपरहिट हुए। इस फिल्म के मस्ती भरे गीत लिखे मजरू सुल्तानपुरी जी ने और उन्हीं गीतों को संगीत से सजाया आरडी बर्मन जी ने। आइए इसी फिल्म का एक खूबसूरत गीत सुनते हैं संगीता जी और कविता जी की मधुर आवाज में।

कहिए, थी ना ये एक खूबसूरत प्रस्तुति। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1961 की फिल्म जंगली से है, जिसमें शम्मी कपूर जी के साथ सायरा बानू थी। इस फिल्म ने कई फिल्म फेयर अवार्ड जीते और हर एक गीत सुपरहिट हुआ। इस फिल्म के शानदार गीतों में हसरत जयपुरी जी की कलम का जादू देखते ही बनता है, और उन्हीं गीतों को मस्ती भरे सुरों में सजाया शंकर जयकिशन जी ने। आइए इसी फिल्म का एक मस्ती भरा गीत सुनते हैं डॉक्टर तरुणा जी और रामकृष्ण जी की मधुर आवाज में।

क्या शानदार गीत पेश किया। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1967 की फिल्म अदालत से है, जिसमें प्रदीप कुमार जी के साथ नरगिस थी। इस फिल्म के सारे गाने इतने मशहूर हुए कि आज तक गुनगुनाए जाते हैं, और इस फिल्म का संगीत दिया मदन मोहन जी ने, और इस फिल्म के गीत लिखे राजेंद्र कृष्णन जी ने। आइए इसी फिल्म का एक मद भरा गीत सुनते हैं श्रुति जी और संजय जी की मधुर आवाज में।

0: वाह, बेहतरीन प्रस्तुति। दोस्तों, ख्वाहिश तो यही है कि आपके साथ जुड़े रहें, पर समय हमें रोक रहा है। वक्त है आपसे विदा लेने का। आशा करता हूँ कि आज की पेशकश आपको पसंद आई होगी। जाते जाते आओ झूमे गाएं ग्रुप की ओर से मैं मुकेश चोपड़ा आप सभी का और जयपुर रेडियो का धन्यवाद करता हूँ।
1: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले दिदिन तिनक दिन दिदिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

0: need to be sad now. You can do all of this on a click away through Jaipur Radio. Send messages and dedicate your favorite songs to your loved ones on your favorite program. Your voice, your identity. So what are you waiting for? Download Jaipur Radio app through Play Store and tune into your favorite songs. Celebrate your special occasion only on your own radio, Jaipur Radio.
1: उफ, ये सर दर्द, ओह मेरी कमर, और ये बंद नाक और जुकाम, कौन दिलाएगा इन सबसे राहत?
2: अरे इन सबसे राहत दिलाएगा जेएमडी का बामवेदा, जिसके आयुर्वेदिक गुण सर दर्द, बदन दर्द और सर्दी को दूर भगाएं।
3: जेएमडी, द वंडर ऑफ आयुर्वेदा।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान, और मैं आपके साथ पहली बार गुरप्रीत लेकर आई हूं एक शाम, 100 साल एक आवाज। सुना है आज हवा भी गुनगुनाएगी, और रफी साहब की जन्म शताब्दी में हर धुन रफी साहब की याद दिलाएगी। तो चलिए रफ़ी साहब की यादों के इस गहरे समंदर में डूबते हैं और उनकी अमर आवाज़ को एक बार फिर से दिल से महसूस करने के लिए बुलाते हैं जयपुर रेडियो में पुणे से आज के कलाकार। एक आवाज़ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, आपके चहेते जिन्हें आप बार बार सुनना चाहते हैं, और वो हैं सुदर्शन फाटक। वेलकम सुदर्शन जी, आपका जयपुर रेडियो में स्वागत है।
5: नमस्कार दोस्तों, आज 24 दिसंबर और आज के दिन आपके सामने रफी जी के गाने पेश करना, ये मेरे लिए किसी अवार्ड रिवॉर्ड से कम नहीं है। सबसे पहले थैंक यू जयपुर रेडियो फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अगर मैं बोलना चाहूँ

0: आज के बारे में, आज के दिन के बारे में, रफी जी के बारे में, तो मैं इतना ही कहूंगा कि समंदर से गहरा और आसमान से ऊंचा अगर कुछ है तो वो रफी जी का सुर है। रफी जी को जब जब सुनते हैं हम दूर से, सिर्फ सुनते हैं, तब ऐसा लगता है कितनी मुलायम आवाज, कितने आसानी से गा रहे हैं। लेकिन वही जब हम कोशिश करने जाते गाने की, तब समझता है एक एक सुर कितना गहरा है। और आज मैंने जो कुछ भी कोशिश की है वो शायद उनके नाखून के बराबर भी ना हो, लेकिन ये मेरी तरफ से आज के दिन उनके 100वीं जन्मतिथि के अवसर पर मेरी तरफ से एक आदरांजलि है उनको।
1: थैंक यू सो मच सुदर्शन जी, सच अ ब्यूटिफुल थॉट। फ्रेंड्स, सुनते रहिए जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज़ आपकी पहचान, और मैं आपके साथ पहली बार गुरप्रीत। 100 साल पहले एक आवाज़ ने इस दुनिया में कदम रखा जो हर दिल के दर्द का मरहम बन चुका था, मोहम्मद रफ़ी। रफ़ी साहब का हर सुर एक दुआ बन के उठा और उनकी हर धुन मोहब्बत का पैगाम बन चुकी थी। तो चलिए सुनते हैं पहला नगमा हर दिल अजीज़ सुदर्शन की आवाज़ में।

बेहद खूबसूरत अंदाज सुदर्शन जी का। और किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, हुजूर चांद से पर्दा कीजिए कहीं चुरा ना ले चेहरे का नूर। फ्रेंड्स, जिस तरह आपकी महबूबा का नूर कोई चुरा नहीं सकता, उसी तरह रफ़ी जी के किरदार की खुशबू कभी फीकी नहीं हो सकती। तो आइए ले चलती हूँ उनकी लाइफ

के कुछ अनमोल किस्सों की तरफ और सुदर्शन फाटक के साथ उनके गीतों की तरफ। रफी जी के परिवार का म्यूजिक से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी उनका दुनिया का सबसे महान सिंगर में शुमार होना सिर्फ उनके जुनून और हार्डवर्क का सबूत है। जिस तरह सैगल साहब के शो में लाइट गुल हो जाने की वजह से मोहम्मद रफ़ी को गाने का मौका मिला और म्यूजिक डायरेक्टर श्याम सुंदर जी ने उन्हें बॉम्बे आने का न्योता दिया, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री बिकॉज ऑफ हिज हार्डवर्क। चलिए इतिहास के एक पन्ने में से निकला एक सुकून भरा अगला गीत सुनते हैं, दिल को छूने वाली सुदर्शन की आवाज़ में।

जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही तबीयत बहलती थी नन्हे रफी जी की, जब एक फकीर गाते हुए उनके गांव की गली से गुजरता था, जो रफी जी की इंस्पिरेशन थे। और रफ़ी साहब उस फकीर से इतने इंस्पायर्ड थे कि उस फकीर के आने से उनका हर दिन मानो रोशन हो जाता और बहार छा जाती थी। तो सुनते हैं ऐसा ही एक गीत सुदर्शन की नर्म आवाज़ में।

सो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है आपको ये सफर सुदर्शन और गुरप्रीत के संग? मुझे पूरा यकीन है कि दिलदार गायक के दिलदार श्रोताओं का दिल भी बड़ा होगा, जैसे रफी साहब का किरदार। क्या आपको पता है कि नए आने वाले कई म्यूजिक डायरेक्टर्स को मौका दिया था रफी जी ने, और सिर्फ एक रुपए की साइनिंग अमाउंट लेकर गीत गाए? कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग आजकल? तो जिनका किरदार एक राजा जैसा हो, उनके लिए ये गीत तो बनता ही है। फ्रॉम अनदर वंडरफुल ह्यूमन बीइंग सुदर्शन, जो वर्चुअल सिंगिंग प्लेटफॉर्म स्टार मेकर की फैमिली BML यानी बॉलीवुड म्यूजिक वर्ल्ड के कैप्टन यानी राजा हैं। तो चलिए सुनते हैं।

अब तक है जमाने पे जिस आवाज का जादू, उसके मेरे ऊपर उपकार बड़े थे। कहना है रफी के लिए बड़ा मुश्किल, इंसान बड़े थे या कलाकार बड़े थे। ऐसा कहना था हमारे म्यूजिक डायरेक्टर रविंद्र जैन जी का। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार राजेश खन्ना काका और संगीत जगत के मसीहा मोहम्मद रफी की ऐसी जुगलबंदी हुई कि आज भी हर आशिक अपनी महबूबा के लिए वो गीत गाकर उसकी आंखों में डूब जाना चाहता है। उस गीत का जादू आज भी बरकरार है। तो सुनते हैं सुदर्शन की जादुई आवाज में वो गीत।

सो फ्रेंड्स, अब तक हमने जो गीत सुने, हर गीत ने हमारे दिल में रफ़ी जी के रंग छोड़े हैं सुदर्शन की आवाज़ में। अब जो अगला गीत है वो एक लाइवली एंड प्लेफुल सॉन्ग है, नहीं शम्मी जी पर नहीं बल्कि बॉलीवुड के एक सौम्य और संजीदा एक्टर नवीन निश्चल पर फिल्माया गीत। तो दोस्तों, आनंद लेते हैं मस्ती और जोश से भरे अगले गीत का।

सुदर्शन फाटक की आवाज में ये गीत एक नए रंग में दिखाई दिया। तो चलिए बढ़ते हैं मस्ती से सरोबार एक और गीत की तरफ।

भर गए ना आप जोश में? ये जोश और उमंग ऐसे ही बरकरार रखी हमारे जोशीले गायक सुदर्शन फाटक ने। और मोहम्मद रफी जी की बात करें तो चाहे जॉनी वॉकर का मजाक मस्ती भरा अंदाज हो, दिलीप कुमार की गहरी और दर्द भरी गजल, अमिताभ बच्चन का पावरफुल परसोना हो या शम्मी कपूर का एनर्जेटिक और फ्लर्टेशियस स्टाइल, रफी साहब की आवाज हर हीरो के लिए एकदम फिट लगती थी। जब उनका गाना सुनते तो ऐसा महसूस होता जैसे वो खुद ही गा रहे हों। और इसी तरह हमारे आज के कलाकार सुदर्शन फाटक भी हर गीत उसी अंदाज से बखूबी निभा रहे हैं। जो आप सुन रहे हैं, तो सुनते हैं अगला गीत सुदर्शन की आवाज में।

जैसे रफ़ी जी के रोमांटिक नंबर्स उनके सिग्नेचर बन चुके थे, उसी रोमांटिक इमोशंस को सुना सुदर्शन की रोमांटिक आवाज़ में। सुनते हैं अगला क्लासिक सॉन्ग।

ऐसे तो रफ़ी साहब के कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन जब धर्मेंद्र जी के लिए जट यमला पगला दीवाना नाश नाश कर स्टूडियो में रिकॉर्ड किया रफ़ी जी ने, तो धर्मेंद्र ने उनको गले लगा कर कहा, वाह क्या अंदाज में गाया है। तो रफ़ी ने उनसे कहा कि मैंने तो अपना काम कर दिया है, अब पर्दे पर लाना तुम्हारा काम है। तो सुनते हैं धर्मेंद्र जी पर फिल्माया गया यमला पगला दीवाना से कहीं हटकर अगला गीत।

यूं तो मेरी हर बात समझ जाते हो तुम, फिर भी क्यों मुझे इतना सताते हो तुम? तुम बिन कोई और नहीं है मेरा, क्या इसी बात का फायदा उठाते हो तुम? सुदर्शन की आवाज ने इस गीत को पूरी तरह महसूस करवाया। और आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान, 100 साल एक आवाज, मोहम्मद रफी की आवाज। और मैं आपके साथ पहली बार गुरप्रीत लेकर आई हूं अगला गीत।

0: नाउमीद थे चारागार मेरी हालत को देखकर, पाया तबस्सुम तेरा दवा उनकी काम कर गई। रफी जी का बेहद खूबसूरत सॉन्ग आपने सुना सुदर्शन की आवाज में। किसी को उसके कद का गुमाना था, वो आसमान था, सर झुका कर बैठा था। रफी जी की सिंगिंग इतनी एफर्टलेस और सोलफुल थी कि लगता ही नहीं था कि कोई गाना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। सैड सॉन्ग में वो दर्द भर देते जो सीधा दिल को छू जाता, और कॉमेडी सॉन्ग में ऐसी मस्ती कि चेहरे पर हंसी आ जाए। तो चलिए सुनते हैं उनका एक और रंग सुदर्शन की आवाज में।
1: मारे, दम पे।

आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। और आज के कलाकार हैं सुदर्शन फाटक पुणे से, और मैं आपके साथ पहली बार गुरप्रीत। चेहरे पर इसी हंसी को बरकरार रखें, और आज की शाम अपने अंतिम पड़ाव पर है तो थोड़ा और करीब आ जाएं और सुनिए ये गीत।

दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। आज की शाम का आखिरी नगमा, ये गीत उन्हें हमारे दिलों में हमेशा के लिए अमर रखेगा। तो दोस्तों, इस गीत और अपने जज्बात के साथ रफ़ी साहब को एक सच्चे ट्रिब्यूट में महसूस कीजिए। सुदर्शन की आवाज़ और गुरप्रीत यानी मेरे साथ पहली बार, सुनते हैं उनका बहुत ही खूबसूरत गीत सुदर्शन की आवाज़ में।

0: नौशाद साहब के कुछ अल्फाज रफ़ी साहब के लिए। महफिलों के दामनों में, साहिलों के आसपास, यह सदा गूंजेगी सदियों तक दिल के आसपास। मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी।
1: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। एक और खूबसूरत प्रोग्राम आपके समक्ष पेश है और ये प्रोग्राम लेके आए हैं यूके से रवि कुमार। रफी साहब के गीतों को खूबसूरत तरीके से आपने पिरोया है, आपने अपने स्वर में गाया है और उन गीतों को हम तक पहुंचाया है, तो हम वेलकम करते हैं रवि कुमार साहब का जयपुर रेडियो वर्ल्ड पर, आपकी आवाज आपकी पहचान। और हम क्या दें मिसाल।

आवाज में जो एक्टिंग अदायगी थी रफी साहब के, वही अदायगी रवि कुमार साहब की है। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं ये खूबसूरत गीतों का गुलदस्ता जिसे लेके आए हैं रवि कुमार साहब यूके से हमारे साथ। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो फर्ट।

अमानत फिल्म के लिए इस गीत को रफ़ी साहब ने गाया था और आज हमारे साथ गा रहे हैं रवि कुमार साहब। इस गीत का संगीत दिया था रवि ने और गीत था साहिर लुधियानवी का। बेहद खूबसूरत गीत हम सुन रहे हैं रवि कुमार साहब की आवाज़ में। आपकी आवाज़ आपकी पहचान, जी हाँ, जयपुर रेडियो की पहचान बन चुकी है आपकी आवाज़। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं।

गीत की अपनी जुबान होती है, गीत की अपनी कहानी होती है, और रवि कुमार ये कहानी कह रहे हैं अपनी जुबानी। आपकी आवाज आपकी पहचान, अब क्या मिसाल दूं।

इंसान बन गई है किरण महता की, अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबा की। एक खूबसूरत गीत आरती फिल्म से लिया गया है और ऑन स्क्रीन प्रदीप कुमार और मीना कुमारी एक्ट्रेस पे फिल्माया गया था। इस गीत का संगीत दिया था रोशन ने और इस गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी साहब ने। बेहद खूबसूरत गीत है ये और इस गीत को हम रोमांटिक गीतों में अमर गीत कह सकते हैं। और हमारे आज के जो स्वर हैं रवि कुमार साहब, उन्होंने बेहतरीन तरीके से इस गीत को अपनी आवाज से सजाया और आप तक पहुंचाया। बहुत बधाई, आपकी आवाज आपकी पहचान।

साल नहीं देखा। इस फिल्म का ये गीत शमी कुमार साहब पर ऑन स्क्रीन फिल्माया गया था और अमिता थी साथ में एक्ट्रेस के रूप में था और गीत था साहिर लुधियानवी साहब का और आवाज हमारे इस प्रोग्राम में रही रवि कुमार साहब की। आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफी स्पेशल प्रोग्राम और उसको स्वर दे रहे हैं हमारे आज के स्वर रवि कुमार। आपकी आवाज आपकी पहचान।

फिल्म असली नकली का ये गीत देवानंद साहब और साधना एक्ट्रेस पर फिल्माया गया ऑन स्क्रीन। म्यूजिक शंकर जयकिशन साहब का था और गीत को लिखा था हसरत जयपुरी साहब ने और अपनी आवाज अपने स्वर में सजाया हमारे लिए यूके से रवि कुमार साहब ने। ये खूबसूरत गीतों का गुलदस्ता आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से, आपकी आवाज आपकी पहचान। और रफी साहब का एक बहुत मशहूर गीत है ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, आइए सुनते हैं रवि कुमार साहब से ये गीत, आपकी आवाज आपकी पहचान।

इस गीत को फिल्म महबूब की मेहंदी के लिए रफी साहब ने गाया था। म्यूजिक इस गीत का लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का रहा और गीत लिखा था आनंद बख्शी साहब ने। और आपके लिए आज के स्वर में रवि कुमार साहब ने ये गीत आप तक पहुंचाया। आपकी आवाज, आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड।

जब भी मौसम की बात चलेगी तो लोफर फिल्म का ये गीत कभी भी हमारे जहन से दूर नहीं हो सकता। इस गीत को ऑन स्क्रीन एक्टर धर्मेंद्र साहब और मुमताज पर फिल्माया गया था। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी साहब ने।

आपने सुना फिल्म प्यार ही प्यार का ये गीत। ऑन स्क्रीन धर्मेंद्र और वैजयंती माला पर फिल्माया गीत आनंद बख्शी साहब ने लिखा था और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और हमारे आज के स्वर रवि कुमार आप तक पहुंचा रहे थे ये गीत, आपकी आवाज आपकी पहचान। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड।

तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। जी हाँ, गीत को संगीत से सजाया था SD बर्मन साहब ने और इसको ऑन स्क्रीन देवानंद साहब और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया था। और आप तक इस गीत को पहुंचा रहे थे हमारे आज के स्वर, आज के कलाकार रवि कुमार साहब। आपकी आवाज़, आपकी पहचान।

आज के छोटे प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो वर्ल्ड से। अभी आपने सुना ये गीत जिसे आवाज दे रहे थे रवि कुमार आज के स्वर। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी साहब ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का था और धर्मवीर फिल्म से इस गीत को लिया गया। ऑन स्क्रीन जीनत अमान और धर्मेंद्र पे फिल्माया गया था ये गीत। आपकी आवाज आपकी पहचान आप सुन रहे हैं आज के स्वर प्रोग्राम में रवि कुमार साहब के वो गीत जो रफी साहब ने गाए हैं।

मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। ये खूबसूरत गीत आकाशदीप फिल्म से था। इसका संगीत दिया था चित्रगुप्त ने और गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने, और आज इसको स्वर दे रहे थे हमारे आज के स्वर रवि कुमार साहब। आपकी आवाज, आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। खूबसूरत गीतों का ये गुलदस्ता लेके आए हैं यूके से रवि कुमार साहब जयपुर।

0: हसरत जयपुरी साहब का गीत, शंकर जयकिशन का संगीत और ऑन स्क्रीन शमी कपूर साहब और आशा पारिक पर फिल्माया गया ये गीत फिल्म पगला कहीं का से था और इसे आज स्वर दे रहे थे इस मंच से हमारे आज के स्वर रवि कुमार साहब यूके से। दुआ है हमारी आवाज सुने आपकी दुनिया सारी। रवि कुमार साहब बहुत बधाई बहुत शुभकामनाएं, यूं ही गाते रहें और यूं ही हमारे लिसनर तक अपने गीत पहुंचाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का ये संगीतमय सफर यहीं तक, आपकी आवाज आपकी पहचान, बहुत आभार बहुत शुभकामनाएं। रवि कुमार साहब यूके से आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: हे हाय दोस्तों, मेरा नाम है, अब तक तो आप मेरी आवाज पहचान गए होंगे। इतना पुराना और लंबा रिश्ता जो बन गया है आप लोगों के साथ, कोई फेमस सेलिब्रिटी तो नहीं, फिर भी खजाने की कमी नहीं है मेरे पास। अनमोल खजाने लेके आई हूँ अपने आओ झूमे गाए म्यूजिक ग्रुप से, सिर्फ जयपुर रेडियो आपकी आवाज आपकी पहचान पे। मेरा नाम है रति भार्गव और पास में मेरे जो कोहिनूर हैं, नवरत्न हैं, उनके नाम कुछ यूं हैं: किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आरडी बर्मन, मोहम्मद रफी, आशा भोसले, गुलजार और हमारी बॉलीवुड जगत के जगमगाते सितारे जैसे माधुरी, श्रीदेवी, डिंपल कपाड़िया, शर्मिला टैगोर, जूही चावला, जयप्रदा, जया बच्चन, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, अनिल कपूर, शाहरुख खान, सनी देओल, संजय दत्त, आशा पारेख, शर्मिला, नीतू वगैरह वगैरह। हमारा आज का ये एपिसोड है बॉलीवुड की चांदनी और लोगों के दिलों पर राज करने वाली हवा हवाई पे। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए हैं, मैं बात कर रही हूँ श्रीदेवी की, जो सिनेमा जगत की पहली महिला सुपरस्टार रह चुकी हैं। श्रीदेवी को लेडी अमिताभ बच्चन और पहली सुपरस्टार का दर्जा दिया जाता है। 13 अगस्त 1963 को जन्मी श्रीदेवी का जन्म हुआ था शिवकाशी तमिलनाडु में। श्रीदेवी ने 4 साल की उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था और चाइल्ड एक्टर के तौर पर साल 1967 में तमिलनाडु कंदन करुणे में काम किया था। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले श्रीदेवी तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में काम कर चुकी थी। श्रीदेवी ने बॉलीवुड में 4 दशक से भी ज्यादा समय तक लोगों को अपनी एक्टिंग से मनोरंजन किया। तो चलिए दोस्तों, आपको श्रीदेवी से जुड़े कुछ अनकहे किस्से सुनाते हैं और उनके कुछ बेहतरीन गाने जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। तो सुनते हैं श्रीदेवी का ये जादू भरा परफॉर्मेंस बिमल और कविता की मधुर आवाज़।

चांदी के पर्दे पे जो चांदनी थी, जो बेजान सीन को अपने प्रेजेंस से जिंदा कर देती थी, और जिनकी आंखों में इन्फेक्शस सी चमक थी, एन एक्ट्रेस हु लिटरली ब्रॉट स्क्रीन टू लाइफ, वो लाइफलेस कैसे हो सकती हैं? श्रीदेवी, आपने हमें जादू दिखाया और जादू सिखाया। मेरी आंखों के सामने उभर रहे हैं वो इम्पेक्शियस एक्सप्रेशंस, वो चमकती आंखें, वो दमकते एक्सप्रेशंस, और हम तो उन्हें ऐसे ही याद रखेंगे। ट्रांसपेरेंट छतरी, ट्रांसपेरेंट रेनकोट, ट्रांसपेरेंट परफॉर्मेंसेस, श्रीदेवी सच में इस जादू के लिए शुक्रिया। फिल्म लम्हे को 30 साल हो चुके हैं। इस फिल्म में श्रीदेवी और अनिल कपूर की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना, तानिया और जगदीश की मधुर आवाज़।

क्या आप जानते हैं दोस्तों, श्रीदेवी का वास्तविक नाम श्री अम्मा अय्यर अय्यप्पन था। पर्दे पर उनके लिए श्रीदेवी नाम तय किया गया। बता दें कि श्रीदेवी उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने धर्मेंद्र और उनके बेटे सनी देओल दोनों के साथ काम किया। श्रीदेवी के करियर की बात करें तो उन्होंने चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर साउथ इंडस्ट्री से शुरुआत की थी। इसके बाद बॉलीवुड में उन्होंने 16 सावन से डेब्यू किया, जिसमें वह जितेंद्र के साथ नजर आई थी। जितेंद्र के साथ 16 फिल्मों में से 13 उनकी सुपरहिट फिल्में रहीं। सुनते हैं ये हमारा अगला गाना फिल्म हिम्मत वाला से, बोल इंडिवर के, म्यूजिक दिया बपीदा ने और गाया बेहद खूबसूरती से किशोर दा और लता मंगेशकर ने। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं आपके लिए किशोर और संगीता अपनी सुरीली आवाज से।

श्रीदेवी ने 90s में आई थिंक लड़कियों से बहुत सारा प्रेशर हटा दिया है ना। हमेशा स्लिम होना, हमेशा खूबसूरत दिखना, एलिगेंट होना, प्रॉपर होना, स्टाइल मारना कोई जरूरी नहीं, ये समझा दिया। बी योर नेचुरल मैड क्रेजी सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ। आई मीन जो मूछे लगा के आंखें भेंगी करके भी पूरे देश का दिल जीत सकती थी, वो कितनी हेल्दी रोल मॉडल थी, सोच के देखिए। पर्दे पर अपने चुलबुले अंदाज से सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाली थी हवा हवाई, हर उम्र के लोगों की पसंदीदा थी। अगर आप भी तनाव फील कर रहे हो, अपना मूड अच्छा करने के लिए बस ये गाना सुन लीजिए और आपका मूड झट से अच्छा हो जाएगा। इसे सुनाने आ रही हैं गायत्री और मनीषा आपके लिए।

सिग्नेचर श्रीदेवी इन ऑल हर ग्लोरी, एक ही इंसान एक साथ मैड, इनसेन, सेक्सी, एलिगेंट, ब्यूटीफुल एंड स्टेलर परफॉर्मर कैसे हो सकता था। एक तरफ ऐसे गानों की मैडनेस सच एज न जाने कहां से आई, या करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, या फिर ऑफकोर्स हवा हवाई न जाने कितने, तो दूसरी तरफ सेंसुअलिटी जो स्क्रीन पे आग लगा दे, मतलब जाबाज ले लो या मिस्टर इंडिया का दूसरा गाना ले लो एंड मेनी अदर्स, बीच में हम मेस्मराइज्ड। सुनते हैं दोस्तों वो गाना जाबाज मूवी का, हर किसी को नहीं मिलता, श्रीदेवी की स्टेलर परफॉर्मेंस जिसने आग लगा दी थी, मेरी यानी रति और गगन की आवाज में।

हिंदी फिल्मों में समाज को संपूर्ण बनाने की सारी विधा मौजूद है। नायक की खुददारी हो या नायिका का त्याग, या फिर आपसी प्रेम भाव का आचार विचार हो या समाज को एकजुट रखने का संदेश, यह सभी चीजें हिंदी फिल्मों में दिखाई जाती हैं। नायक और नायिकाओं के बीच प्रेम और आकर्षण की मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी और अनिल कपूर पर फिल्माया गीत कांटे नहीं कटते दिन ये रात इश्क और हुस्न की इंतहा को जग जाहिर करता है। किशोर कुमार और अलीशा चिनॉय की आवाज ने इस गीत को मधुरतम बनाया है। गीत आई लव यू के भाव से शुरू होता है और इसी भाव के साथ खत्म भी होता है। आइए सुनते हैं ये गीत प्रेरणा और रेस की आवाज में।

1989 में प्रदर्शित फिल्म चांदनी का ये गीत, इसमें श्रीदेवी और ऋषि कपूर ने पानी में आग लगा दी थी। हुस्न की अदा बारिश के मौसम में इस गीत में काफी सुहावनी बन पड़ी है। गीत संगीत और श्रीदेवी के बेजोड़ नृत्य के गीत को मधुर अंदाज दिया है आनंद बख्शी के लिखे इस गीत में। गीत काफी मनोहरी बना। इसे सुनते हैं मानवेंद्र और संगीता की सुमधुर आवाज में।

मैं आपके साथ रति भार्गव अपने आओ झूमे गाएं के कलाकारों के साथ आज के इस स्पेशल सेगमेंट में याद कर रहे हैं उन्हें जो कुछ ज्यादा ही जल्दी चली गईं। हम उन्हें तो मिस करेंगे ही और अभी उन्हें जितनी बेहतरीन फिल्में करनी थी उन्हें भी मिस करेंगे। 80 के दशक में एक और गीत देखने और सुनने को मिला जिसमें हुस्न और इश्क का बेजोड़ संगम था। हमारा अगला गाना हुस्न और इश्क की अदा पर चांदनी मूवी का ये गाना सुनते हैं प्रियंका और गिरीश की मधुर आवाज में।

श्रीदेवी को हिंदी सिनेमा में एक कमर्शियल हीरोइन के रूप में जाना जाता था। उन्होंने अपने करियर में नागिन से लेकर चाल पास, चांदनी, जुदाई, खुदा गवाह, नगीना, मिस्टर इंडिया जैसे कई शानदार फिल्मों में दमदार अभिनय किया। अभिनेत्री फिल्मी पर्दे से दूर हो गई थी, हालांकि 15 साल के लंबे समय के बाद 2013 में उन्होंने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में शानदार वापसी की। सुनते हैं हमारा अगला नगमा दो दोस्तों की दास्तान पे, और इसे सुनाने आ रहे हैं मुकेश और मंदार अपनी मधुर आवाज में।

रानी मेरा नाम, जूली और सोलवा सावन जैसी चुटपुट फिल्में करने के बाद हिंदी सिनेमा को अपने करियर का अगला मुकाम बनाने वाली श्रीदेवी 1983 में जितेंद्र के साथ फिल्म हिम्मत वाला की तो पूरी हिंदी पट्टी में हंगामा हो गया था। इतनी मादक और इतनी मोहक अभिनेत्री इससे पहले हिंदी सिनेमा में कोई दूसरी उनको नजर ही नहीं आई। इसके बाद श्रीदेवी ने हिट फिल्मों की लाइन लगा दी थी। आखिरी रास्ता, नगीना, जाबाज और कर्मा जैसी फिल्म करने के बाद वह 3 साल में ही नंबर 1 की कुर्सी पर आ बैठी थी। इसके बाद मिस्टर इंडिया, निगाहें से होते हुए करियर उनका अगला टर्निंग पॉइंट था चांदनी। श्रीदेवी को सफेद लिबास में ढली चांदनी देख उस समय हर लड़की उन्हें कॉपी करना चाहती थी। श्रीदेवी की ये फिल्म गवाही देती है इस बात की कि आज 30 साल के बाद भी चांदनी की चमक फीकी नहीं पड़ी है। और सुनते हैं उनका ये सुपरहिट गाना रूही और विश्वजीत की सुमधुर आवाज में।

लिए ये काम किया? तुमने मुझे बदनाम किया? बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया।

0: सपनों से सुंदर लग रही थी चांदनी बनकर इस गाने में, याद रहेंगी वो हमें हमेशा। रेस्ट इन पीस श्रीदेवी जी, थैंक्स फॉर द मैजिक। श्रीदेवी के जितने सॉन्ग्स करो कम है, इतने सॉन्ग्स हैं, इतनी बातें हैं, पर ट्रिब्यूट पूरा नहीं लग रहा। भरपूर तब होता है ट्रिब्यूट जब भरपूर जी कर जाए वो जिन्हें हम चाहते। ऐसे ही अचानक से बेवक्त बीच में से जब कोई चला जाए, व्हाट डू यू से, हाउ डू यू रिमेम्बर देम। जिस चेहरे में इतनी जान थी वो अब बेजान है, अभी तक यकीन नहीं होता है। इतनी जिंदा दिल परफॉर्मेंस जो दे गई वो अब खुद जिंदा नहीं है, पर रहेंगी ना हमेशा उसी चांदी के पर्दे पर जिसकी वो चांदनी थी, एंड ऑफ कोर्स हमारे दिलों में भी।
1: भक्ति प्रभा, भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
2: नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम भजनों की सरिता में। लक्ष्मी का सादर प्रणाम मित्रों। भक्ति गीत प्रार्थना की एक विशेष अंश है, भगवान के साथ एक मिलाप का समय है। प्रार्थना में हम अपने आप को एक ऐसी शक्ति के सामने आत्मसमर्पण करते हैं

वाह संजीव जी, बहुत खूब। मित्रों, भारतीय परंपरा के कई महान संत थे, जैसे रामानुजाचार्य, संत रविदास, कबीर आदि, जिन्होंने हमें धार्मिकता का सही मार्ग दर्शाया। इनमें से एक थे गुरु अर्जन, जिन्होंने सिखों के आदि ग्रंथ को संकलित किया, जिसमें पिछले कई गुरुओं के गुरुवाणी शामिल थे। गुरु ग्रंथ साहिब में आधे से अधिक शब्द गुरु अर्जन द्वारा रचित हैं। चलिए एक शब्द सुनते हैं ललिता कृष्णमूर्ति की मधुर वाणी में।

वाह ललिता जी, अति मधुर प्रस्तुति। मित्रों, भक्ति संगीत में ऐसी शक्ति है कि वह सभी को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। संगीत ऐसा सात्विक आनंद है जो जाति, धर्म, लिंग, आयु, वर्ग सभी से परे है। संगीत सबके लिए है। संगीत को न सीमाओं से बांधा जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है। ये आबाद धारा सबके लिए सर्वत्र सुलभ है। हमारा अगला गीत फिल्म जॉनी मेरा नाम के लिए इंदिवर जी ने लिखा था और इसे संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने। इसे मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गाया है और जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं विद्या शंकर जी।

तुलसी का प्रभु भी वही, नानक का रब भी वही। नाम भजन में ज्योति असीमित, देश है एक राम धुन जो मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गाया है प्रसिद्ध एल्बम राम श्याम गुणगान में। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं स्वागता पॉल और संजय हर।

0: लेकिन जब मैं गाती हूँ और आप सबके और भी करीब आ जाती हूँ ये गाने के जरिए, आज मैं आपके सामने थोड़े बहुत गाने की कोशिश किए हूँ। लता मंगेशकर जी मेरे बहुत प्रिय और मेरा आइडल थी, तो उनके श्रद्धांजलि में मैं कुछ गाना गाने की कोशिश की हूँ। आशा रखती हूँ आप सब लोगों को अच्छा लगेगा। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू जयपुर रेडियो टू गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू कम एंड सिंग फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड होप यू ऑल विल एंजॉय इट।
1: वेलकम है सुदीप्ता आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी आवाज आपकी पहचान। और बहुत खूबसूरत बात हमने सुनी, बात से बात बनती है। और खूबसूरत बात यह है कि मैथ्स की टीचर होने के बावजूद भी कहां अंकों का जोड़ बाकी का होना और कहां संगीत की सरगम का होना, दोनों का और छोर अलग अलग है, फिर भी आपने अपने दिल के दायरों से इनको मिलाया है। बहुत शुभकामनाएं। और बहुत अच्छी बात यह कि आप भारतीय कल्चर को, भारतीय संगीत को देश विदेश में भी फैला रही हैं, प्रचार कर रही हैं, उसकी सेवा के लिए आपको शुभकामनाएं। जाने क्या बात है आप में, क्या खूबी है कि आप इतना कुछ कर लेती हैं। हमारी शुभकामनाएं जयपुर रेडियो के इस मंच से आपको ढेरों शुभकामनाएं और वेलकम है आपके गीतों का। बात है एक बूंद सी, जी हाँ बात बूंद सी होती है और बात से बात निकलती है।

जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है। और हम बात को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सुरीली आवाज है आपकी और बेहद खूबसूरत गाती हैं आप। जयपुर रेडियो के इस मंच पर बहुत कम ऐसी आवाजें आई हैं जिसमें आपकी आवाज शामिल है। आपकी आवाज आपकी पहचान। अगली बात में क्या कहती हैं आप, सुनते हैं सुदीप्ता समानता को इंग्लैंड से। आपकी आवाज आपकी पहचान।

जिन श्रोताओं ने अभी अभी सुनना शुरू किया है उनको बता दें कि आज हमारे साथ हैं आज के कलाकार सेफील्ड इंग्लैंड से सुदीप्ता समानता, बहुत खूबसूरत आवाज के साथ। बात बूंद से शुरू की थी लेकिन आपकी आवाज तो सागर निकली। आपको सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे युगों से आपको जानते हैं। आपकी आवाज, आपकी पहचान, हमारी ये टैगलाइन आपने सार्थक कर दी। अगली बात में क्या कहती हैं आप, आइए सुनते हैं आपकी बात गीतों की जुबानी।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जयपुर रेडियो के आज के कलाकार। और हमारे आज की कलाकार हैं इंग्लैंड से सुदीप्ता सामंता। बहुत सुरीली आवाज के साथ आज की कलाकार सुदीप्ता को बहुत बधाई जयपुर रेडियो के इस मंच से।
1: थैंक यू

लता जी का ये खूबसूरत गीत और उसी अंदाज में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारी आज की कलाकार सुदीप्ता समांता ने इस गीत को गाया और आप तक पहुंचाया। हम तो ये कहेंगे, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी सुरीली महफिल कभी वैसी तो न थी। बहुत ही सुरीला गाती हैं सुदीप्ता और मैथ्स पढ़ाती हैं, ये अजब गजब बात है। क्या कहें, बात है तो मुलाकात है, मुलाकात है तो प्रीत है, प्यार है और गीतों की सजीवता है, सरलता है, सौम्यता है। आपकी आवाज, आपकी पहचान।

सुनना है जिंदगी अपनी। बेहद सुरीली आवाज, आपकी आवाज, आपकी पहचान। हमारे साथ सेफील्ड इंग्लैंड से सुदीप्ता समानता। आपकी आवाज, आपकी पहचान। बहुत सुरीली खूबसूरत आवाज, लाजवाब। बातों बातों में पता ही नहीं चला कि हम प्रोग्राम के किस मुकाम पर आ गए हैं, लेकिन गीतों को सुने बिना भी नहीं रह सकते। इतनी सुरीली आवाज इस मंच से आप सुन रहे हैं सुदीप्ता समानता को इंग्लैंड से। आपकी आवाज, आपकी पहचान, जयपुर रेडियो वर्ल्ड पर।

बहुत ही रेशमी आवाज, मखमली आवाज हम कहेंगे हमारी आज की कलाकार सुदीप्ता की। आपकी आवाज आपकी पहचान, आपकी आवाज सचमुच में बात कहें तो जादू है, और बातों बातों में हम भी कहां तक आ गए।

0: वाह, हम तो कहेंगे मखमली आवाज का जादू, बात का जादू, मुलाकात का जादू। मखमली आवाज का जादू, बात का जादू, मुलाकात का जादू। रेशमी आवाज का जादू, सच है कमाल है गीत संगीत का जादू। जी हाँ, आपने हमारे श्रोताओं पर अपनी आवाज का सम्मोहन कर ही दिया। बहुत शुभकामनाएं। और आप लर्निंग दे रही हैं म्यूजिक की, उसके लिए हमारी ओर से बधाई। और ये पुनीत कार्य आप बराबर करती रहेंगी और इस मंच पर आती रहेंगी। जयपुर रेडियो वर्ल्ड की ओर से आपकी आवाज को, आपके गायन को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। गाती रहें, गुनगुनाती रहें और गीतों की गलियों में फिर मिलते हैं आपकी आवाज के साथ। आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: नमस्कार मित्रों,
0: ऐसी शुभकामना।
1: कहते हैं प्रार्थना हमेशा शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। वे हमारे मन की उन धड़कनों को भी पहचान लेते हैं जिन्हें हम शब्दों में नहीं ढाल पाते।
0: शुक्रिया।
1: जब आत्मा सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान को पुकारती है तो वह पुकार आकाश पाताल पार करके भी उनके चरणों तक पहुंच जाती है। ईश्वर को बड़े बड़े शब्दों या शास्त्रों की लंबी व्याख्या की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें तो बस सच्चे प्रेम और आस्था की आवश्यकता होती है। जय श्री कृष्ण। मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रेरणा पुंज चैनल पर, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की अद्भुत श्रृंखला जिसका नाम है भगवद गीता की सीख। आज इस श्रृंखला के अगले पड़ाव पर हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है, और वह भी बेहद सरल भाषा और सहज शब्दों में। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में हमने विस्तार से जाना था कि कैसे अर्जुन के आग्रह करने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट विश्व रूप का दर्शन कराया। वह दृश्य इतना अद्भुत और अलौकिक था कि स्वयं अर्जुन भी स्तब्ध रह गए। अब तक के अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को जीवन के गहन रहस्यों, आत्मा के स्वरूप और धर्म के मार्ग का ज्ञान दिया था। उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक शक्ति, प्रत्येक विभूति का स्रोत केवल वही परमेश्वर है। जब अर्जुन ने भगवान का विराट विश्व रूप देखा तब उन्हें यह समझ में आया कि उनके साथ केवल एक सखा नहीं बल्कि साक्षात विश्व के पालन करता, संहारक और सृजन करता भगवान स्वयं खड़े हैं। उस क्षण तक अर्जुन ने श्री कृष्ण को केवल अपना मित्र, मार्गदर्शक और सारथी माना था, परंतु दिव्य रूप के दर्शन ने उनकी दृष्टि को बदल दिया। अब अर्जुन के हृदय में यह अनुभव स्थायी रूप से बैठ गया कि प्रभु उनके जीवन के प्रत्येक क्षण में साथ हैं। यही कारण है कि गीता के संवाद में अर्जुन के मन में बार बार श्रद्धा, विनम्रता और कृतज्ञता का भाव उमड़ता है। अर्जुन वास्तव में प्रेम और अनुराग का प्रतीक है। उनका संबंध भगवान से केवल युद्ध भूमि का संवाद भर नहीं था बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन था। जब आपके हृदय में प्रभु के प्रति अटूट प्रेम, गहन श्रद्धा और निष्काम भक्ति जागृत होती है तब आप भी अर्जुन जैसी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तब भगवान स्वयं आपको अपना अनन्य सखा मानते हैं और अपने गूढ़तम रहस्यों को प्रकट करते हैं। अब हम आते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय पर। यह अध्याय अत्यंत विशेष है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग की महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। यहां वे बताते हैं कि अनेक साधनाओं जैसे ज्ञान योग कर।
2: कभी सोचा है क्यों जीवन में जब समस्याएं बढ़ जाती हैं हम एक उलझन में फंस जाते हैं? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता हमें कहीं नहीं ले जाएगा। अगर आप भी इस स्थिति से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये उस समय की बात है जब महाभारत के मैदान में अर्जुन ने अपनी कर्तव्य की राह पर चलने में संकोच किया। भक्ति के मार्ग पर चलने से न केवल हमारी मानसिक स्थिति सुधरती है बल्कि हम जीवन में सच्ची सफलता भी प्राप्त करते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस प्रकार से सही दिशा दिखाई और कैसे हम उनकी उपदेशों का पालन करके अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में शांति, समृद्धि और सफलता चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अध्याय 12 में भगवान श्री कृष्ण ने जो बातें अर्जुन से कही है वो आज भी हमारे जीवन में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी तब थी। हर एक व्यक्ति जो अपने जीवन में संघर्ष और भ्रम महसूस करता है उसे इन उपदेशों की आवश्यकता है। आइए अब हम इस अध्याय के हर बिंदु को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार श्री कृष्ण की भक्ति में छिपे ज्ञान से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस ज्ञान से आपका जीवन जरूर बदलने वाला है। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ये जिज्ञासा प्रकट की कि भक्ति के दो मार्गों में से कौन सा श्रेष्ठ है, निराकार ब्रह्मा की आराधना या साकार रूप की भक्ति, तो ये स्पष्ट था कि अर्जुन के मन में भक्ति का सही स्वरूप जानने की उत्सुकता थी। ये सवाल उन सभी लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो जीवन में सही आध्यात्मिक मार्ग की तलाश में है। श्री कृष्ण ने बड़ी ही सटीकता और गहराई से इस प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों मार्ग महत्वपूर्ण है, लेकिन साकार रूप की भक्ति को सरल और सहज बताया। उन्होंने समझाया कि जब एक भक्त भगवान के साकार रूप की पूजा करता है तो वो भावनात्मक रूप से भगवान के साथ गहराई से जुड़ता है। ये जुड़ाव न केवल मन को स्थिर करता है बल्कि व्यक्ति को आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करता है। साकार रूप में भक्ति करना मनुष्य के लिए आसान होता है, क्योंकि हमारा मन और हृदय दृश्य और अनुभवात्मक चीजों से जल्दी जुड़ता है। दूसरी ओर श्री कृष्ण ने यह भी स्वीकार किया कि जो लोग निराकार ब्रह्मा की पूजा करते हैं वे भी उच्च आध्यात्मिक स्थिति में होते हैं, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ये मार्ग कठिन है। निराकार ब्रह्मा में श्रद्धा रखने वाले को अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित करना होता है और हर अनुभव से परे जाकर केवल आत्मा और ब्रह्मा की एकता को समझना होता है। ये मार्ग बहुत गहन और अनुशासन की मांग करता है जो हर किसी के लिए संभव नहीं है। इस संवाद के माध्यम से श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि भक्ति का मार्ग केवल आस्था का विषय नहीं है बल्कि ये हर व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक स्थिति के अनुसार होता है। जो लोग भगवान को साकार रूप में पूजते हैं उनके लिए भक्ति जीवन के हर पहलू में एक आनंदमय अनुभव बन जाती है। उनके जीवन में स्थिरता, श्रद्धा और प्रेम का समावेश होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि निराकार ब्रह्मा की पूजा गलत है। ये केवल ये दर्शाता है कि ये मार्ग चुनौतीपूर्ण है और इसे अपनाने के लिए गहरे ज्ञान और ध्यान की आवश्यकता होती है। इससे हमें अपने जीवन में ये समझना चाहिए कि भगवान तक पहुंचने के रास्ते अनेक हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है अपने मार्ग पर सच्चे और समर्पित रहना। अगर हम साकार रूप में भगवान की पूजा करते हैं तो हमें अपनी भक्ति में प्रेम और श्रद्धा का समावेश करना चाहिए, और अगर हम निराकार ब्रह्मा में विश्वास रखते हैं तो हमें अपने मन को नियंत्रित करते हुए ध्यान और साधना के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का ये उत्तर हमें ये भी सिखाता है कि भक्ति केवल किसी विशेष पद्धति का नाम नहीं है, ये भगवान के प्रति हमारा समर्पण है। चाहे वो साकार रूप हो या निराकार, सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन को भगवान के चरणों में अर्पित करें। जीवन की चुनौतियों के बीच भी अगर हमारी भक्ति अडिग रहती है तो यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति के माध्यम से आत्मा की उन्नति को जीवन का सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग बताया। जब हम ईश्वर में श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तब हमारा जीवन केवल बाहरी साधनों पर निर्भर नहीं रहता बल्कि आंतरिक रूप से संपूर्ण और शुद्ध हो जाता है। ये भक्ति हमें न केवल जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी स्थिरता प्रदान करती है। श्री कृष्ण ने समझाया कि जो व्यक्ति अपने मन और हृदय को परमात्मा के साथ जोड़ लेता है वो कभी भी दुखी नहीं होता। ये इसलिए क्योंकि वह जानता है कि हर परिस्थिति, चाहे वो सुख हो या दुख, भगवान की इच्छा और योजना का हिस्सा है। इस विश्वास से वो व्यक्ति जीवन की हर स्थिति को सहजता और समर्पण के साथ स्वीकार करता है। ऐसा व्यक्ति बाहरी कठिनाइयों से प्रभावित हुए बिना अपने अंदर गहरी शांति का अनुभव करता है। एक आस्थावान भक्त जब किसी कष्ट या पीड़ा से गुजरता है तो उसे भगवान की इच्छा मानकर सहर्ष स्वीकार करता है। वो समझता है कि ये उसकी आत्मा को और शुद्ध करने का एक माध्यम है। इस प्रकार भक्ति हमें न केवल ईश्वर के करीब लाती है, बल्कि हमारे दृष्टिकोण को भी परिवर्तित करती है। जहां सामान्य व्यक्ति कष्ट में टूट जाता है, वही भक्ति करने वाला व्यक्ति उन क्षणों में और भी मजबूत बनता है, क्योंकि वो जानता है कि भगवान उसकी हर स्थिति में साथ है। भक्ति केवल भावनात्मक या आध्यात्मिक जुड़ाव नहीं है, ये आत्मज्ञान का भी मार्ग है। जब हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं तब हमारा मन सांसारिक इच्छाओं और बंधनों से मुक्त होता है। ये मुक्ति हमें आत्मा के सत्य स्वरूप को जानने और अनुभव करने का अवसर देती है। भक्ति की ये स्थिति आत्मज्ञान का आधार बनती है, जहां व्यक्ति अपने और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं देखता। श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं हमें ये बताती है कि भगवान की भक्ति न केवल आत्मा की उन्नति करती है, बल्कि जीवन को एक नया दृष्टिकोण भी देती है। भक्ति हमें ये सिखाती है कि हर कष्ट और अनुभव हमारे भीतर छिपी दिव्यता को उजागर करने का साधन है। इसलिए अपने जीवन में भगवान की भक्ति को अपनाएं। ये न केवल आपको जीवन की अनिश्चितताओं से निपटने की ताकत देगा, बल्कि आपको एक ऐसा आंतरिक संतुलन और शांति प्रदान करेगा जिसे कोई भी बाहरी परिस्थिति डिगा नहीं सकती। भक्ति के माध्यम से ही हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं और आत्मज्ञान के शिखर तक पहुंच सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो शिक्षा दी है वो जीवन को पूरी तरह से समझने और उसे सही दिशा में चलाने का मार्गदर्शन करती है। जब कोई व्यक्ति भगवान के गुणों का निरंतर स्मरण करता है तो उसका मन दुनिया की मोहमाया और अवसाद से मुक्त हो जाता है। वो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहता है, क्योंकि भगवान के नाम में उसे आंतरिक शांति और बल मिलता है। ऐसा व्यक्ति संसार की अस्थिरता से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसकी आस्था और विश्वास भगवान में स्थिर होता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि एक सच्चा भक्त अपने सभी कार्यों को भगवान के चरणों में समर्पित करता है। वो किसी भी कार्य को खुद के लिए नहीं करता, बल्कि भगवान की सेवा के रूप में करता है। जब हम अपनी हर क्रिया और कर्तव्य को भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं तो हम संसार के कार्यों से अपना मोह तोड़ लेते हैं और जीवन में एक गहरी शांति का अनुभव करते हैं। ये समर्पण हमें ये सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य भगवान की सेवा है और हर कार्य को उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम के रूप में करना चाहिए। भक्ति का मुख्य उद्देश्य भगवान से मिलन है और इस मिलन की अवस्था परम शांति की होती है। जब भक्त भगवान के साथ आत्मीय संबंध में होता है तब उसका मन किसी भी प्रकार के शांति की तलाश में नहीं होता, क्योंकि वो शांति उसके भीतर ही होती है। ये मिलन केवल भक्ति में नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धता और प्रेम में भी है। जब हम भगवान से मिलते हैं तो हमें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उस अवस्था में परम शांति का अनुभव होता है। भगवान में शरण लेने से जीवन में सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। शरणागति का मतलब है कि हम अपनी संपूर्ण इच्छाओं, विकारों और अहंकार को भगवान के पास छोड़ देते हैं। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो वो हमारी सभी गलतियों, पापों और दोषों को दूर कर देते हैं। भगवान की कृपा से हम अपने आत्मज्ञान और शुद्धता की ओर बढ़ते हैं और जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो लोग दूसरों की सेवा करते हैं वे भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। सेवा का ये मार्ग केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि मानवता की सेवा भी है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम भगवान की रचनाओं के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम को व्यक्त करते हैं। भगवान का प्रिय वही होता है जो न केवल अपनी भक्ति में गहराई से रत होता है, बल्कि संसार के लोगों की भलाई के लिए काम करता है। सेवा के माध्यम से हम भगवान के साथ अपने संबंध को और गहरा करते हैं और अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ते हैं। इससे हमें यह समझना चाहिए कि भक्ति केवल पूजा और ध्यान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे हर कार्य, हर सेवा और हर पल में समर्पण और प्रेम का प्रतीक बन जाती है। जब हम भगवान के गुणों का ध्यान करते हैं, जब हम अपने कार्यों को समर्पित करते हैं और जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, तो हम वास्तव में भक्ति के उच्चतम स्वरूप को जीते हैं। इस भक्ति से हम अपने जीवन में शांति, संतुलन और उद्देश्य का अनुभव करते हैं और भगवान के साथ मिलन की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के हर पहलू में हमें एक महान शिक्षा दी है, जो हमारे जीवन को सही दिशा में चलने का मार्गदर्शन करती है। जीवन में हर कार्य को भगवान के लिए करना चाहिए, न कि किसी निजी लाभ के लिए। जब हम अपना हर कार्य, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, भगवान के लिए करते हैं, तो हमारा जीवन परम उद्देश्य की ओर बढ़ता है। ऐसे कार्यों में अहंकार या स्वार्थ नहीं होता और हमें इस संसार में कोई भी परिणाम की चिंता नहीं रहती। हम केवल अपने कर्तव्यों को भगवान की इच्छा के रूप में स्वीकार करते हैं और उनके लिए समर्पित रहते हैं। इससे न केवल हमारा जीवन सरल होता है, बल्कि हमारे कार्यों में भी गहरी आस्था और संतोष का भाव आता है। जो लोग क्रोध, घृणा और अहंकार से मुक्त होते हैं, वे भगवान के प्रिय भक्त होते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि भक्ति का वास्तविक स्वरूप केवल पूजा या ध्यान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे आचरण और भावनाओं में भी व्यक्त होती है। जब हम क्रोध, घृणा और अहंकार से मुक्त होते हैं, तो हम एक शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति बनते हैं, जो भगवान के करीब होता है। ऐसे भक्त अपने मन में किसी प्रकार की नफरत या द्वेष नहीं रखते और वे अपने जीवन में शांति और सौहार्द का पालन करते हैं। भगवत भक्ति का मार्ग सरल और सीधे दिल से किया गया कार्य है। श्री कृष्ण ने हमें बताया कि भक्ति का मार्ग कोई कठिन या जटिल नहीं है। ये केवल हमारे दिल से भगवान के प्रति श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का मार्ग है। जब हम भगवान के साथ अपने संबंध को सरलता और ईमानदारी से जोड़ते हैं, तो हमें किसी विशेष तरीके या विधि की आवश्यकता नहीं होती। ये एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है, जो हमें भीतर से शांति और संतोष प्रदान करती है। सच्चे भक्त के मन में कभी द्वेष और ईर्ष्या नहीं होती। एक सच्चा भक्त अपने जीवन को भगवान की सेवा और प्रेम के रूप में जीता है। उसके मन में न तो किसी से प्रतिस्पर्धा होती है और न ही किसी से नफरत। वो हर व्यक्ति में भगवान का दर्शन करता है और इसलिए किसी के प्रति भी द्वेष या ईर्ष्या नहीं रखता। ये भावना ही उसे शुद्ध और सच्चा बनाती है और भगवान के प्रति उसकी भक्ति को और भी प्रगाढ़ करती है। एक सच्चा भक्त हमेशा संतुलित और संयमित रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये सिखाया कि भक्ति केवल प्रेम का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये आत्मनियंत्रण और संतुलन का भी प्रतीक है। जब हम भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, तो हमारे भीतर एक प्राकृतिक संयम और संतुलन उत्पन्न होता है। हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और जीवन के सभी पहलुओं में संतुलित रहते हैं। ये संतुलन न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे आत्मिक विकास के लिए भी आवश्यक है। सारांश में श्री कृष्ण ने हमें ये सिखाया है कि सच्ची भक्ति हमारे आचरण, हमारी भावनाओं और हमारे कार्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जब हम भगवान के लिए अपने कार्य करते हैं, जब हम क्रोध, घृणा और अहंकार से मुक्त रहते हैं, जब हम सरलता और ईमानदारी से भक्ति करते हैं और जब हम संतुलित और संयमित रहते हैं, तो हम भगवान के प्रिय बन जाते हैं। इस तरह से हम न केवल अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं, बल्कि भगवान के साथ अपने संबंध को भी प्रगाढ़ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें जीवन के वास्तविक सार को समझाया है और उनके उपदेशों से हमें एक नया दृष्टिकोण मिलता है कि कैसे हम अपने जीवन को संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ से मुक्त रहता है, वो भगवान का सबसे प्रिय भक्त होता है। जब हम अपने जीवन में स्वार्थ और लोभ को त्यागते हैं तो हम भगवान के साथ एक सच्चे और शुद्ध संबंध स्थापित करते हैं। स्वार्थ और लोभ से मुक्त व्यक्ति अपनी इच्छाओं को संयमित करता है और अपने कार्यों में केवल सत्य और नैतिकता का पालन करता है। इस प्रकार वो अपने जीवन में भगवान की कृपा और आशीर्वाद को आकर्षित करता है।

बताता है कि पश्चाताप और शरण लेने से न केवल हमारी आत्मा शुद्ध होती है बल्कि हमें भगवान की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। भक्ति से मनुष्य के भीतर सच्ची शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। जब हम भगवान के प्रति भक्ति और श्रद्धा के साथ जीवन जीते हैं तो हमारे मन में शांति का वास होता है। भक्ति के मार्ग पर चलने से हम अपने भीतर संतोष की भावना महसूस करते हैं क्योंकि अब हमारे जीवन का उद्देश्य केवल भगवान की सेवा और भक्ति बन जाता है। इस शांति और संतोष के माध्यम से हम जीवन की परेशानियों का सामना सहजता से कर पाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति भगवान के प्रति निष्ठावान होते हैं उनका जीवन सुखमय होता है। जब हम भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा और विश्वास रखते हैं तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ढाल सकते हैं। निष्ठा का अर्थ केवल भगवान के प्रति श्रद्धा रखना नहीं है बल्कि ये अपने हर कार्य और विचार में भगवान की उपस्थिति को महसूस करना है। ये निष्ठा हमें जीवन के हर संघर्ष में मजबूती देती है और हमें सुख की अनुभूति कराती है। जो व्यक्ति प्रेम और शांति से भगवान की पूजा करते हैं वे जीवन में हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। भगवान की पूजा केवल आचार व्यवहार तक सीमित नहीं है बल्कि ये एक सच्चे प्रेम और शांति के साथ की जाने वाली प्रक्रिया है। जब हम भगवान के प्रति प्रेम और शांति का अनुभव करते हैं तो हमारे भीतर एक अनोखी शक्ति उत्पन्न होती है। इस शक्ति के साथ हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं क्योंकि भगवान का प्रेम और शांति हमें हर कठिनाई में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। सारांश में भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि भक्ति का मार्ग स्वार्थ और लोभ से मुक्ति, पश्चाताप, निष्ठा, प्रेम और शांति से जुड़ा हुआ है। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल भगवान के प्रिय बनते हैं बल्कि हम अपने जीवन को संतुलित और सुखमय भी बना सकते हैं। भगवान में आस्था रखने वाला व्यक्ति आत्मनिर्भर और साहसी होता है। जब हम भगवान में पूरी आस्था रखते हैं तो हमें जीवन के प्रत्येक पहलू में शक्ति और साहस मिलता है। ये आस्था हमें जीवन की मुश्किलों का सामना करने के लिए मानसिक दृढ़ता देती है। भगवान पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति किसी भी संकट के समय खुद को अकेला नहीं महसूस करता क्योंकि वो जानता है कि भगवान हमेशा उसके साथ है, जिससे वो आत्मनिर्भर बनता है और किसी भी चुनौती से घबराता नहीं है। जो व्यक्ति भक्ति में गहरे विश्वास रखते हैं उनका जीवन सच्चे उद्देश्य की ओर बढ़ता है। भक्ति केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है बल्कि ये जीवन के उद्देश्य को समझने और उस पर ध्यान केंद्रित करने का माध्यम है। जब हम अपनी भक्ति को सच्चे विश्वास और निष्ठा के साथ निभाते हैं तो ये हमारे जीवन को सही दिशा देती है। भगवान में आस्था रखने से हमें अपने जीवन के उद्देश्य का पता चलता है और हम अपनी यात्रा में सच्चे मार्ग पर चलते हैं जिससे हम अपनी आत्मा की उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि भक्ति का कोई निश्चित रूप नहीं होता, ये एक व्यक्तिगत और अंतरात्मा का अनुभव होता है। भक्ति एक व्यक्तिगत अनुभव है जो व्यक्ति के अंतरात्मा से जुड़ा होता है। ये किसी बाहरी रूप या कर्म से नहीं बल्कि सच्ची भावना और श्रद्धा से उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि भक्ति का कोई भी रूप हो सकता है, चाहे वो मंत्र जाप हो, पूजा हो या भगवान के साथ मानसिक संवाद। ये सब उस व्यक्ति के आस्थावान हृदय पर निर्भर करता है। हर व्यक्ति का भक्ति का अनुभव अलग अलग होता है लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही होता है, भगवान के साथ जुड़ाव और आत्मज्ञान प्राप्त करना। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हर कठिनाई का सामना सहजता से कर सकता है। भक्ति हमें मानसिक शांति और धैर्य प्रदान करती है जो हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार करती है। जब हम भगवान के प्रति अपने विश्वास को सच्चे मन से बढ़ाते हैं तो हमारी आत्मा में इतनी ताकत और धैर्य आता है कि हम किसी भी मुश्किल का सामना बिना भय के कर सकते हैं। भक्ति हमें यह सिखाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं लेकिन अगर हमारा मन भगवान में रमा हो तो हम किसी भी परेशानी से नहीं घबराते। जो व्यक्ति संतुलन बनाए रखते हैं वे भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना एक महत्वपूर्ण गुण है। जब हम अपने विचारों

भावनाओं और कार्यों में संतुलन बनाए रखते हैं तो हम मानसिक शांति और संतोष की स्थिति में रहते हैं। श्री कृष्ण ने यह बताया कि जो व्यक्ति जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखते हैं वे भगवान के प्रिय होते हैं। संतुलन से हमारा मन शांत रहता है और हम अपने कार्यों में ईमानदारी और निष्कलंकता से जुड़े रहते हैं। इस संतुलन के माध्यम से हम भगवान के सबसे करीबी और प्रिय भक्त बन जाते हैं। निष्कर्ष में, भगवान में आस्था रखने वाला व्यक्ति साहसी, आत्मनिर्भर और उद्देश्यपूर्ण होता है। भक्ति के मार्ग पर चलकर हम जीवन की कठिनाइयों का सामना सहजता से कर सकते हैं और इस यात्रा में भगवान के साथ हमारे रिश्ते की गहराई बढ़ती है। भगवान में विश्वास रखना और जीवन में संतुलन बनाए रखना हमें न केवल आध्यात्मिक उन्नति देता है बल्कि हमें मानसिक शांति और संतोष भी प्राप्त होता है। भक्ति का मार्ग अहंकार और स्वार्थ से मुक्त होकर परमात्मा से जुड़ने का मार्ग है। भक्ति का वास्तविक अर्थ सिर्फ पूजा और अनुष्ठान नहीं है बल्कि ये अपने अहंकार और स्वार्थ को छोड़कर भगवान से जुड़ने की एक गहरी साधना है। जब हम अपने आत्मगौरव और स्वार्थ से मुक्त होते हैं तो हम अपने दिल और मस्तिष्क को भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा और प्रेम से भर देते हैं। इस मार्ग पर चलने से हम समझ पाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य केवल अपने स्वार्थ को पूरा करना नहीं बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन है। इस प्रकार भक्ति हमें आंतरिक शांति और परमात्मा के साथ एक अड़िग संबंध स्थापित करने का मार्ग दिखाती है। जो लोग भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं उनका मन कभी भी व्यर्थ विचारों से भरता नहीं है। जब हम भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं तो हमारा मन स्थिर और शांत हो जाता है। भक्ति के माध्यम से हमारा मानसिक संसार भगवान के ध्यान में रमा होता है जिससे नकारात्मक विचार, चिंता और भ्रम की स्थिति दूर हो जाती है। ऐसे लोग जो भगवान में गहरी श्रद्धा और विश्वास रखते हैं उनके मन में किसी प्रकार के व्यर्थ विचारों का प्रवेश नहीं हो पाता क्योंकि उनका हर विचार और कार्य भगवान के प्रति समर्पित होता है। यही वो मानसिक स्थिति है जो हमें संतुलित, शांति और सकारात्मक दिशा में अग्रसर करती है। भक्ति से परम शांति प्राप्त होती है। भक्ति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें मानसिक और आंतरिक शांति प्रदान करती है। जब हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करते हैं तो हमारा मन और आत्मा शांति से भर जाते हैं। भक्ति का मार्ग हमें सिखाता है कि हम बाहरी दुनिया की आपाधापी से ऊपर उठकर अंदर की शांति की ओर ध्यान केंद्रित करें। जब हम अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं तो हर कठिनाई और तनाव का सामना करने में हमें सहजता होती है क्योंकि हमारी आत्मा शांति से भरी रहती है। श्री कृष्ण ने बताया कि जो व्यक्ति सत्य और दया से जीवन जीते हैं वे भगवान के साथ एक होते हैं। श्री कृष्ण ने हमें बताया कि भक्ति का मार्ग सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है बल्कि ये हमारे जीवन के हर पहलू में सत्य और दया की भावनाओं को समाहित करता है। जो व्यक्ति सत्य बोलते हैं और दया से जीवन जीते हैं वे अपने जीवन में भगवान की उपस्थिति को महसूस करते हैं। उनके हर कार्य में भगवान का दर्शन होता है। जब हम सत्य और दया को अपनाते हैं तो हम भगवान के साथ एकजुट होते हैं क्योंकि भगवान स्वयं सत्य और दया के प्रतीक है। इसलिए भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में सत्य और दया के साथ चलना है। भक्ति का मार्ग हमें न केवल भगवान के साथ जुड़ने का मार्ग दिखाता है बल्कि ये हमें अपने जीवन को अहंकार और स्वार्थ से मुक्त कर शांति और संतुलन की दिशा में अग्रसर करता है। सत्य, दया और समर्पण से जीवन जीने वाले लोग भगवान के साथ एक होते हैं और उनके जीवन में परम शांति का वास होता है। आत्मनिर्णय और आत्मसमर्पण भक्ति के सबसे महत्वपूर्ण गुण होते हैं। जब हम आत्मनिर्णय और आत्मसमर्पण की भावना से भक्ति करते हैं तो हम अपनी पूरी इच्छा, अपने संकोच और भय को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। आत्मनिर्णय का मतलब है अपने कार्यों को सही तरीके से करना, जबकि आत्मसमर्पण का मतलब है अपने अहंकार और सभी व्यक्तिगत इच्छाओं को त्याग कर भगवान की इच्छा के अनुसार जीना।
यही भक्ति का वास्तविक रूप है। जब हम अपने आप को भगवान के हाथों में सौंप देते हैं तो हमारी यात्रा सरल, शुद्ध और अर्थपूर्ण बन जाती है। भक्ति से व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार होता है। भक्ति के माध्यम से एक व्यक्ति अपने अंदर से न केवल मानसिक शांति पाता है बल्कि एक अदृश्य शक्ति और ऊर्जा का अनुभव करता है। जब हम भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास और प्रेम रखते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास और बल का संचार होता है। भक्ति हमें यह समझने का अवसर देती है कि हम किसी भी कठिनाई या चुनौती से जूझने में सक्षम हैं, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे साथ है। इस विश्वास के साथ हम अपने लक्ष्य की ओर बिना डर और संकोच के बढ़ सकते हैं। जो भक्त परमात्मा के प्रति निरंतर प्रेम रखते हैं उनका जीवन प्रेमपूर्ण और शांतिपूर्ण होता है। भक्ति का सबसे बड़ा गुण प्रेम है। जब कोई व्यक्ति भगवान के प्रति निरंतर प्रेम करता है तो उसका जीवन शांतिपूर्ण और संतुष्ट होता है। भगवान के प्रति प्रेम ही उसे जीवन के हर क्षेत्र में प्यार, दया और सहानुभूति की भावना से भर देता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन एक ऐसी धारा की तरह होता है जो अपने चारों ओर शांति और खुशी फैलाता है। भक्ति में प्रेम को प्राथमिकता देने से व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है और उसका संबंध भगवान से प्रगाढ़ हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भक्ति का मार्ग सच्चे आत्मज्ञान के द्वारा खुलता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा कि भक्ति का वास्तविक मार्ग तब खुलता है जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। आत्मज्ञान से अभिप्राय है आत्मा की प्रकृति और भगवान के साथ हमारे संबंध को समझना। जब हम सत्य और ज्ञान के साथ भगवान को जानने की कोशिश करते हैं तो भक्ति के मार्ग पर चलने में कोई कठिनाई नहीं होती। आत्मज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि भगवान के साथ हमारा संबंध आत्मा से है और हम उसकी अनंत शक्ति का हिस्सा है। यह ज्ञान हमें भक्ति की गहरी और सच्ची समझ प्रदान करता है। भक्ति के मार्ग में आत्मनिर्णय, आत्मसमर्पण और निरंतर प्रेम की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये हमें भगवान के करीब लाती है और जीवन को शांति और ऊर्जा से भर देती है। जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति निष्ठावान होते हैं वे दुनिया के सभी दुखों से उबर सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि जब व्यक्ति अपने जीवन में भगवान के प्रति पूर्ण निष्ठा और विश्वास रखता है तो उसे कोई भी बाहरी दुख या कष्ट प्रभावी नहीं हो सकते। ईश्वर में विश्वास रखने से हम अपने दुखों को भी भगवान की इच्छा मानकर सहन करते हैं। इस प्रकार भक्ति हमें मानसिक रूप से सशक्त बनाती है और हमें किसी भी संकट से निपटने की शक्ति देती है। ऐसे लोग भले ही शारीरिक रूप से संघर्ष करें लेकिन मानसिक रूप से वे हमेशा शांत और स्थिर रहते हैं, क्योंकि उनका आस्था और विश्वास भगवान पर दृढ़ होता है। श्री कृष्ण ने बताया कि जो लोग भगवान के प्रति एकाग्रचित होते हैं वे अपनी जीवन यात्रा में कभी भी हारते नहीं हैं। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जब हर कार्य में ईश्वर को अपनी ध्येय और लक्ष्य मानकर चलता है तो उसे किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मिलती। भगवान के प्रति एकाग्रता का मतलब है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों में ईश्वर को सर्वोच्च स्थान देते हैं। जब हम भगवान को अपने जीवन का उद्देश्य मानकर जीते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें पराजित नहीं कर सकती। एकाग्रचित व्यक्ति अपने हर संघर्ष को ईश्वर की कृपा से पार करता है और अपने जीवन के हर कदम में विजय प्राप्त करता है। भक्ति का उद्देश्य आत्मा का सच्चा रूप जानना है। श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति का असली उद्देश्य आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझना है। जब हम ईश्वर में समर्पित हो जाते हैं और उसे पूरी श्रद्धा से अपना मार्गदर्शक मानते हैं तब हम आत्मा की वास्तविकता को अनुभव कर पाते हैं। भक्ति से हम अपनी वास्तविक पहचान को जान पाते हैं। हम न शरीर हैं न मन, बल्कि हम एक दिव्य आत्मा है जो अनंत और शाश्वत है। ये ज्ञान हमें जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर अग्रसर करता है, जहां हम स्वयं को ईश्वर के अंश के रूप में पहचानते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि जो भक्त हर एक कार्य में भगवान का ध्यान रखते हैं वे शांति और संतोष से भरपूर होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है
कि हमें अपने सभी कार्यों में भगवान का स्मरण करना चाहिए, चाहे वो छोटे से काम हो या बड़ा कार्य। यदि हम उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हम मानसिक शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर कार्य भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है। उनका जीवन भरे रहता है शांति और संतोष से, क्योंकि वे हर कार्य को भगवान की कृपा मानते हैं और किसी भी कार्य को अपने स्वार्थ से नहीं जोड़ते। भक्ति से मानसिक संकुचन और आत्म संकोच समाप्त होते हैं। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अपनी सीमाओं और संकोच को पार करता है। भगवान की भक्ति से व्यक्ति के मन में आत्मविश्वास पैदा होता है, जो उसके मानसिक संकुचन को समाप्त करता है। जब हम भगवान के प्रति निष्ठा रखते हैं और उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक मानते हैं, तो हमारी आत्मा में शक्ति और स्वतंत्रता का अनुभव होता है। भक्ति हमें ये सिखाती है कि हम किसी भी संकोच, डर या आत्मसंदेह से मुक्त होकर एक सशक्त और आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में अपने जीवन को जी सकते हैं। इन बातों से हमें ये समझ में आता है कि भक्ति केवल पूजा और आराधना तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर पहलू में भगवान के प्रति निष्ठा, प्रेम और एकाग्रता की स्थिति है। जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि भगवान के करीब भी पहुंचते हैं। भक्ति का मार्ग व्यक्ति को हर प्रकार की चिंता और भय से मुक्त करता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि जब व्यक्ति अपने मन और हृदय को भगवान में समर्पित कर देता है तो उसकी सारी चिंताएं और भय दूर हो जाते हैं। भगवान पर विश्वास रखने से हम जान पाते हैं कि हम किसी भी समस्या से अकेले नहीं जूझ रहे हैं, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे साथ है। चिंता और भय अस्थाई है, लेकिन जब हम भगवान की कृपा में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं तो हम हर कठिनाई को सहजता से पार कर सकते हैं। भक्ति एक आंतरिक शक्ति है जो हमें मानसिक स्थिरता और साहस प्रदान करती है। जो व्यक्ति भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं, वे जीवन में हर चुनौती को पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि श्रद्धा का मतलब केवल आदर नहीं, बल्कि ये एक गहरी आस्था और विश्वास है। जब हम भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को पूरे दिल से समर्पित करते हैं तो वो हमें हर संघर्ष और चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। भक्त का विश्वास अडिग होता है और यही विश्वास उसे जीवन में आने वाली हर कठिनाई और परीक्षा से निपटने के लिए तैयार करता है। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति किसी भी संघर्ष में अपने भगवान के साथ होने का विश्वास रखता है, और यही विश्वास उसे सच्ची शक्ति और धैर्य प्रदान करता है। भक्ति में विश्वास रखने से व्यक्ति कभी भी अकेला नहीं होता, वो हमेशा भगवान के साथ रहता है। श्री कृष्ण ने हमें ये सिखाया कि भक्ति का मार्ग केवल बाहरी आराधना नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक जुड़ाव है। जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं और उनका ध्यान करते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। भगवान हमारे साथ हर पल रहते हैं। वे हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारे कर्मों में हमारे साथ है। भक्ति का सबसे बड़ा लाभ यही है कि वो हमें शांति और सहारा प्रदान करती है, क्योंकि हमें ये आभास होता है कि हम कभी भी अकेले नहीं होते। भगवान का साथ हमेशा हमारे साथ रहता है और ये हमें हर क्षण में आत्मसंवेदनशील और धैर्यवान बनाए रखता है। जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में भगवान को याद करते हैं, उनका जीवन सच्ची सफलता की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जो लोग हर समय भगवान को स्मरण करते हैं, चाहे वे किसी भी स्थिति में हो, उनका जीवन सच्ची सफलता की ओर अग्रसर होता है। भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा करना नहीं है, बल्कि भगवान के प्रति निरंतर श्रद्धा और ध्यान रखना है। जब हम किसी भी परिस्थिति में भगवान का ध्यान करते हैं तो हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। ये निरंतर ध्यान हमें सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है और हमारे जीवन को एक सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन करता है। भगवान के साथ निरंतर संपर्क बनाने से व्यक्ति का जीवन पूर्ण रूप से बदल जाता है। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति
जब भगवान से निरंतर संपर्क में रहता है तो उसका जीवन स्वाभाविक रूप से बदल जाता है। भगवान के साथ लगातार जुड़ाव रखने से हम आत्मा की गहरी समझ प्राप्त करते हैं और हमारे विचार, कार्य और उद्देश्य साफ होते जाते हैं। श्री कृष्ण ने यह कहा कि जब व्यक्ति भगवान के साथ स्थायी संपर्क में रहता है तो उसकी जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल जाती है। उसका जीवन शांति, संतोष और प्रेम से भर जाता है। निरंतर भक्ति के द्वारा व्यक्ति अपने भीतर एक गहरी आंतरिक शांति और संतुलन पाता है जो उसे हर परिस्थिति में स्थिर और संतुष्ट बनाए रखता है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं वे कभी भी मानसिक व्यग्रता का सामना नहीं करते। श्री कृष्ण ने हमें बताया कि भक्ति में लीन रहने वाला व्यक्ति मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करता है। जब हम अपने मन और हृदय को भगवान में समर्पित कर देते हैं तो हर प्रकार की मानसिक व्यग्रता, चिंता और तनाव दूर हो जाते हैं। भक्ति के द्वारा मन शांत होता है और व्यक्ति एक सशक्त और सकारात्मक मानसिकता के साथ जीवन को देखता है। भगवान के प्रति अधिक श्रद्धा रखने से हमारी आंतरिक शांति बनी रहती है जिससे हम किसी भी परिस्थिति में मानसिक शांति को बनाए रख सकते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि हर भक्त के लिए भक्ति का मार्ग अलग होता है क्योंकि हर व्यक्ति का हृदय अलग होता है। भगवान के प्रति भक्ति का मार्ग हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है क्योंकि हर व्यक्ति का स्वभाव, उसकी आस्था और उसका जीवन अनुभव भिन्न होते हैं। श्री कृष्ण ने यह समझाया कि भक्ति का कोई एक तरीका नहीं है, ये हमारे हृदय और मानसिकता पर निर्भर करता है। हम अपनी भक्ति को अपनी परिस्थितियों और क्षमता के अनुसार अपनाते हैं। कुछ लोग ध्यान और साधना के माध्यम से तो कुछ लोग सेवा और समर्पण के द्वारा भगवान के करीब पहुंचते हैं। इसलिए भक्ति का मार्ग व्यक्तिगत होता है और श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हमें अपनी भक्ति को अपनी प्रकृति और आवश्यकता के अनुसार अपनाना चाहिए। भगवान की भक्ति से आत्मा की शुद्धि होती है। श्री कृष्ण ने हमें यह बताया कि भक्ति के माध्यम से हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। जब हम भगवान के प्रति अपने मन को पूरी तरह से समर्पित करते हैं तो हमारे भीतर के सभी विकार जैसे क्रोध, घृणा और अहंकार दूर हो जाते हैं। भक्ति के द्वारा आत्मा की शुद्धि होती है जिससे हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझ पाते हैं। भक्ति न केवल हमारे जीवन को बाहरी रूप से सुधारती है बल्कि ये हमारे अंदर की गहराई में जाकर हमारी आत्मा को पवित्र करती है। भक्ति के माध्यम से व्यक्तित्व में सुधार आता है। भगवान के प्रति सच्ची भक्ति के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आते हैं। जब हम अपनी आस्था को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं तो हमारी सोच, हमारी नियत और हमारा आचरण सुधरता है। भक्ति से हमारे भीतर संतुलन, संयम और विनम्रता आती है। हम जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और दूसरों के प्रति सहानुभूति और दया विकसित करते हैं। भक्ति का असर केवल हमारी आत्मा पर नहीं बल्कि हमारे पूरे व्यक्तित्व पर पड़ता है और हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। जो लोग भगवान की भक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं उनका जीवन श्रेष्ठ हो जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जब हम भगवान की भक्ति को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य मान लेते हैं तो हमारा जीवन अपने आप श्रेष्ठ बन जाता है। भक्ति से जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है और हमें जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण मिलता है। जब हम भगवान के साथ हर कार्य को जोड़ते हैं तो हमारे हर कदम में सफलता और सुख मिलते हैं। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जीवन के हर क्षण को भगवान के साथ जोड़कर जीता है और यही जीवन उसे उच्च और पूर्ण बना देता है। ये शिक्षाएं हमें ये समझने में मदद करती हैं कि भक्ति न केवल आत्मा की शुद्धि और व्यक्तित्व में सुधार लाती है बल्कि ये हमारे जीवन को एक महान उद्देश्य और दिशा भी देती है। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से हम जान सकते हैं कि भक्ति का असली सार केवल पूजा या ध्यान तक सीमित नहीं है बल्कि ये हमारे हर कार्य, विचार और आचरण में भगवान की उपस्थिति महसूस करने का तरीका है। श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति का रास्ता किसी भी मार्ग से कठिन नहीं होता, केवल समर्पण की आवश्यकता होती है। भगवान ने हमें ये शिक्षा दी
कि भक्ति का मार्ग अपने आप में सरल है, क्योंकि ये किसी बाहरी

0: या कठिनता पर निर्भर नहीं करता। भक्ति का मूल तत्व है समर्पण। हमारा हृदय, हमारी इच्छा और हमारे कर्म भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित होने चाहिए। जब हम भगवान के प्रति पूरी निष्ठा और श्रद्धा से समर्पित होते हैं तो भक्ति का मार्ग अपने आप सरल और सुगम हो जाता है। ये मार्ग किसी भी बाहरी कष्ट से परे है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने हृदय को शुद्ध कर देता है और भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा रखता है, उसके लिए ये मार्ग स्वाभाविक रूप से आसान हो जाता है। भक्ति से मनुष्य अपनी आत्मा के सत्य को जान सकता है। श्री कृष्ण ने भक्ति को आत्मा के सत्य को जानने का एक प्रमुख साधन बताया। जब हम भगवान में विश्वास और भक्ति रखते हैं तो हमारी आत्मा का सच्चा रूप धीरे धीरे सामने आने लगता है। भक्ति के मार्ग पर चलते हुए हम अपने असली स्वभाव को पहचान पाते हैं और जान पाते हैं कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि एक शाश्वत आत्मा है। भगवान में विश्वास और भक्ति हमें इस सत्य की गहरी समझ और आत्मज्ञान प्रदान करती है, जिससे हम आत्मा के परम उद्देश्य को समझ सकते हैं। जो व्यक्ति भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण रखते हैं, उनके लिए जीवन में किसी भी बाधा को पार करना आसान हो जाता है। जब व्यक्ति अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है तो वो हर प्रकार की बाधा या कठिनाई को सहजता से पार कर सकता है। भगवान के साथ संबंध प्रगाढ़ होने पर हर मुश्किल आसान लगने लगती है, क्योंकि भगवान की शक्ति से व्यक्ति को मार्गदर्शन और समर्थन मिलता है। भक्ति में समर्पण का अर्थ केवल आस्थावान होना नहीं है, बल्कि ये एक विश्वास है कि भगवान हर क्षण हमारे साथ है। और जो व्यक्ति इस विश्वास के साथ जीता है, वो जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना पूरी ताकत और शांति से कर सकता है। भक्ति का मार्ग शुद्ध हृदय और मन से यात्रा करने का मार्ग है। श्री कृष्ण ने हमें यह भी बताया कि भक्ति का असली मार्ग हमारे हृदय और मन की शुद्धता से जुड़ा हुआ है। जब हम पूरी ईमानदारी से और निस्वार्थ भाव से भगवान के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं तो हमारे मन और हृदय में शुद्धता और अच्छाई आ जाती है। ये मार्ग आत्मा की सच्ची शुद्धता की ओर ले जाता है, क्योंकि भगवान के साथ वास्तविक संबंध बनाने के लिए हमारा हृदय और मन शुद्ध होना चाहिए। इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति न केवल भौतिक बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त करता है। भक्ति की शक्ति से व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। भक्ति केवल बाहरी पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है, ये व्यक्ति को अंदर से सशक्त भी बनाती है। जब हम भगवान के प्रति भक्ति रखते हैं तो हमारी आत्मा में छिपी हुई शक्ति और सामर्थ्य का एहसास होता है। भक्ति हमें ये समझने की क्षमता देती है कि हम भीतर से कितने शक्तिशाली हैं और हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि भगवान के प्रति भक्ति से हमारे भीतर की असीम शक्ति जागृत होती है, जिससे हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं और उसे प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। भक्ति का मार्ग न केवल सरल है बल्कि ये आत्मज्ञान, शांति और शक्ति का स्रोत भी है। श्री कृष्ण ने हमें ये सिखाया कि भक्ति से जीवन में हर बाधा को पार किया जा सकता है और हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। जो व्यक्ति किसी भी कार्य को भगवान के लिए करते हैं, उनका जीवन सचेत और उद्देश्यपूर्ण होता है। श्री कृष्ण ने हमें ये सिखाया कि जब हम अपने सभी कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं तो हमारा जीवन अपने आप एक उच्च उद्देश्य की ओर बढ़ता है। जो व्यक्ति भगवान के लिए कार्य करते हैं, वे न केवल अपने कार्य में पूरी लगन और सत्यनिष्ठा रखते हैं बल्कि उनका जीवन उद्देश्यपूर्ण होता है। ऐसे लोग हर कार्य को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ते हैं, जिससे उनका जीवन स्वाभाविक रूप से सचेत और प्रेरित रहता है। भक्ति का ये मार्ग हमें ये समझने में मदद करता है कि जीवन में हर कार्य का एक दिव्य उद्देश्य है और जब हम उसे भगवान के लिए करते हैं तो हमें एक विशेष संतोष और आंतरिक शांति मिलती है। श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति का अभ्यास जीवन को सरल और सहज बना देता है। भगवान ने भक्ति को जीवन को सरल बनाने का एक प्रभावी मार्ग बताया है। जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे दिल और मन में शांति का संचार होता है और जीवन के सभी कठिनाइयां धीरे धीरे आसान हो जाती है। भक्ति हमें किसी भी तरह की चिंता, तनाव और उलझनों से दूर रखती है। जब हम भगवान में विश्वास रखते हैं और उनके प्रति आस्थावान होते हैं, तो हमें ये महसूस होता है कि हर परिस्थिति में भगवान हमारे साथ है। इस विश्वास के कारण हमारा जीवन सरल और सहज बनता है, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान हमें मार्गदर्शन देंगे। भक्ति में विश्वास रखने से व्यक्ति के जीवन में आंतरिक शांति और संतुलन आता है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमारे भीतर की आंतरिक शांति और संतुलन मजबूत होता है। भक्ति का अभ्यास हमें मानसिक स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है। जीवन की चुनौतियों और उतार चढ़ावों में हम शांत रहते हैं और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। श्री कृष्ण ने हमें बताया कि भक्ति से मन और आत्मा दोनों में संतुलन बना रहता है। किसी भी परिस्थिति में भक्ति हमें आत्मिक शांति और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है, जिससे हम जीवन को आसानी से स्वीकार कर सकते हैं। भगवान की भक्ति में समर्पण से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति के माध्यम से हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हैं। जब हम भगवान में समर्पित होते हैं, तो हम धीरे धीरे अपनी आत्मा के सत्य को जानने लगते हैं। भक्ति का समर्पण हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, क्योंकि ये हमें आत्म के वास्तविक रूप और उद्देश्य से जोड़ता है। भक्ति के माध्यम से हम भगवान के दिव्य गुणों को समझते हैं और इस समझ से हमें अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त होता है। समर्पण के साथ भक्ति करने से आत्मज्ञान का मार्ग खुलता है और हम अपनी जीवन यात्रा को सही दिशा में ले जाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति दया और प्रेम रखते हैं, वे भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि भगवान के साथ वास्तविक संबंध तभी बनता है जब हम दूसरों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखते हैं। भक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अपने हृदय में प्रेम और करुणा को स्थान देते हैं। जब हम भगवान की भक्ति में खुद को समर्पित करते हैं, तो हमारे भीतर दूसरों के लिए दया और प्रेम का भाव स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। ये भाव हमें भगवान के निकट ले जाता है, क्योंकि भगवान सच्चे प्रेम और करुणा को अत्यधिक महत्व देते हैं। जब हम अपने आसपास के लोगों से प्रेम करते हैं और उनकी मदद करते हैं, तो हम भगवान के साथ एक गहरे संबंध में जुड़ सकते हैं। भक्ति से अहंकार और स्वार्थ का अंत होता है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि भक्ति का अभ्यास करने से व्यक्ति के भीतर के अहंकार और स्वार्थ का अंत हो जाता है। जब हम भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति भाव रखते हैं, तो हमारा मन स्वार्थ से मुक्त होकर केवल भगवान के सेवा में समर्पित हो जाता है। भक्ति हमें यह समझने की क्षमता देती है कि हम सभी एक डिवाइन शक्ति के अंश हैं, और इस एहसास से हमारे अहंकार का विनाश होता है। स्वार्थ और अहंकार को छोड़कर हम आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझते हैं, जो हमें जीवन में संतुलन और शांति प्रदान करता है। जो व्यक्ति भगवान के नाम का जाप करते हैं, उनका जीवन समृद्ध और पुण्यपूर्ण हो जाता है। श्री कृष्ण ने बताया कि भगवान के नाम का जाप करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि ये आत्मा के पवित्रता को भी बढ़ाता है। जब हम नियमित रूप से भगवान के नाम का जाप करते हैं, तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है और जीवन में आशीर्वाद और पुण्य की वृद्धि होती है। भगवान के नाम का उच्चारण करने से हमारे मन और हृदय में भगवान का वास होता है और हम हर कार्य में उनकी उपस्थिति महसूस करते हैं। ये जीवन को सकारात्मक और समृद्ध बनाता है। भक्ति से आत्मा की पवित्रता बढ़ती है। श्री कृष्ण ने कहा कि भक्ति का मार्ग आत्मा को शुद्ध और पवित्र करने का एक प्रभावी तरीका है। जब हम भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ भक्ति करते हैं, तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हम अपने भीतर की सच्ची दिव्यता को महसूस करते हैं। भक्ति के माध्यम से हम अपने कृत्यों को सही दिशा में मार्गदर्शित करते हैं और आत्मा की पवित्रता में वृद्धि होती है। इससे हम अपने जीवन को अधिक समझदारी और प्रेम से जीने लगते हैं। जो लोग दूसरों की सेवा करते हैं, वे भगवान के सबसे प्रिय भक्त होते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि दूसरों की सेवा करना भगवान के प्रति सच्ची भक्ति का रूप है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तो हम भगवान के साथ अपने संबंध को और भी प्रगाढ़ करते हैं। भगवान खुद को सेवा करने वालों में निवास करते हैं और जिनके दिल में दूसरों के लिए दया और करुणा होती है वे भगवान के सबसे प्रिय भक्त होते हैं। इस प्रकार की सेवा हमें न केवल दूसरों की मदद करने की प्रेरणा देती है बल्कि ये हमें आत्मिक संतोष और शांति भी प्रदान करती है। श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति का मार्ग आत्मा की गहराइयों से जुड़ने का तरीका है। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि भक्ति केवल बाहरी आचार व्यवहार तक सीमित नहीं है बल्कि ये हमारे भीतर की आत्मा की गहराइयों से जुड़ने का एक तरीका है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम अपने भीतर की दिव्यता को जागृत करते हैं और आत्मा की गहराइयों से भगवान से जुड़ने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। भक्ति का मार्ग हमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप की पहचान करवाता है और हम उस परम सत्ता से एकात्म अनुभव करते हैं। इस जुड़ाव से हम जीवन को सच्चे अर्थ में समझ पाते हैं और भगवान के साथ अपनी दिव्य संबंध को महसूस करते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में हर पल को भगवान के ध्यान में रखते हैं वे शांति और आनंद में रहते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि जब हम हर पल भगवान के ध्यान में रहते हैं तो हमारे भीतर शांति और आनंद का वास होता है। ये ध्यान हमें मानसिक स्थिरता और आत्मिक शांति प्रदान करता है। जब हमारा मन और हृदय भगवान में पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो बाहरी परिस्थितियां हमारी आंतरिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकती। हम जीवन की हर चुनौती को सहजता से स्वीकार कर पाते हैं क्योंकि हमारे भीतर स्थायी शांति और आनंद का अनुभव होता है। भक्ति का मार्ग शुद्ध हृदय से यात्रा करने का मार्ग है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि भक्ति का मार्ग केवल बाहरी क्रियाओं का पालन नहीं है बल्कि ये शुद्ध हृदय और निस्वार्थ भाव से यात्रा करने का मार्ग है। जब हमारा हृदय निर्मल होता है तो हम भगवान के प्रति समर्पण से भक्ति करते हैं। इस मार्ग पर चलने से हम अपने भीतर की शुद्धता को महसूस करते हैं और जीवन को सच्चे अर्थों में जीने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। भक्ति का ये मार्ग आत्मिक शुद्धता की ओर बढ़ने की दिशा है जो हमें परम शांति और संतोष की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और इच्छाओं से मुक्त रहते हैं वे भगवान के प्रिय होते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जो लोग अपनी इच्छाओं और वासना से मुक्त रहते हैं वे भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं और सांसारिक सुखों के प्रति आसक्त नहीं होते तो हम सच्ची भक्ति की ओर बढ़ते हैं। इच्छाओं से मुक्ति का अर्थ है कि हम जीवन में संतुलित रहते हैं और किसी भी बाहरी सुख साधन के बिना भी भगवान में अपने सच्चे अस्तित्व को महसूस करते हैं। ऐसे लोग भगवान के करीब होते हैं क्योंकि उनका मन पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित होता है। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानता है। श्री कृष्ण ने कहा कि भक्ति का मार्ग हमें हमारी आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानने का अवसर प्रदान करता है। जब हम भगवान की भक्ति में पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हैं। भक्ति के इस मार्ग पर चलते हुए हम अपने आत्मा के असली स्वरूप को समझते हैं जो न केवल शुद्ध और अमर है बल्कि पूर्ण रूप से परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। इस आत्मज्ञान के द्वारा हम जीवन को समझने और आत्मा के सच्चे उद्देश्य को पहचानने में सक्षम होते हैं। इन उपदेशों से यह स्पष्ट होता है कि भक्ति एक गहरी आंतरिक यात्रा है जो हमें आत्मज्ञान, शांति और भगवान के साथ एकता की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि भक्ति का वास्तविक अर्थ केवल बाहरी पूजा और क्रियाओं में नहीं बल्कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति निरंतर प्रेम और समर्पण में है। भक्ति से जीवन में स्थिरता और संतुलन आता है। श्री कृष्ण ने बताया कि जब हम भगवान की भक्ति में लीन होते हैं तो हमारा जीवन संतुलित और स्थिर हो जाता है। भक्ति हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करती है जिससे हम जीवन के उतार चढ़ाव को आसानी से संभाल पाते हैं। इस स्थिरता के कारण हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते और हमारी आंतरिक स्थिति हमेशा शांतिपूर्ण रहती है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी पूजा और भक्ति में सच्चे होते हैं उनके लिए जीवन में सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। भक्ति की सच्चाई और निष्ठा से जुड़ा व्यक्ति भगवान के प्रति अपने समर्पण में शुद्ध होता है और इसी कारण जीवन की सारी कठिनाइयां उससे दूर हो जाती है। श्री कृष्ण ने हमें यह समझाया कि जब हम अपनी पूजा और भक्ति में निष्ठा और सत्यता बनाए रखते हैं तो भगवान हमारी सभी समस्याओं को अपने अनुग्रह से हल कर देते हैं। भक्ति के इस मार्ग पर चलने से हमें जीवन की असली सुख शांति का अनुभव होता है। जो लोग अपने विचारों और भावनाओं को शुद्ध करते हैं वे भगवान के साथ एक हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने यह बताया कि भक्ति का मार्ग केवल बाहरी पूजा तक सीमित नहीं है बल्कि ये हमारे भीतर की शुद्धता से जुड़ा हुआ है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को शुद्ध करते हैं तो हम अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करते हैं और भगवान के साथ एकाकार हो जाते हैं। यही असली भक्ति है। जब हमारा हृदय और मन पूर्ण रूप से भगवान में समर्पित होता है तब हम भगवान के साथ सच्चे रूप में एक हो जाते हैं। भक्ति का अभ्यास मानसिक शांति और आत्मसंयम की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति का अभ्यास हमारे मानसिक संकुचन को समाप्त करता है और आत्मसंयम को बढ़ाता है। जब हम अपनी दिनचर्या में भक्ति को शामिल करते हैं तो ये हमें अपने भीतर की उथल पुथल को शांत करने का अवसर देता है। इस अभ्यास के माध्यम से हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं जो मानसिक शांति और आत्मसंयम की प्राप्ति का मार्ग खोलता है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति को मुख्य उद्देश्य मानते हैं उनका जीवन पवित्र और सुखी होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो लोग भगवान के प्रति अपने समर्पण को जीवन का मुख्य उद्देश्य मानते हैं उनका जीवन पवित्र होता है। ऐसे लोग हर कार्य में भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं और उनके जीवन में शांति और संतोष का वास होता है। भक्ति का ये मार्ग उन्हें सच्चे सुख और आनंद का अनुभव कराता है क्योंकि वे अपने जीवन का उद्देश्य समझते हुए हर कार्य को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। भगवान के प्रति समर्पण से जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता समाप्त होती है। श्री कृष्ण ने बताया कि जब हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करते हैं तो हमारी सभी चिंताएं और डर समाप्त हो जाते हैं। भगवान पर विश्वास रखने से हम सच्ची शांति प्राप्त करते हैं और मानसिक रूप से मुक्त हो जाते हैं। जीवन के किसी भी संकट का सामना हम साहस और विश्वास से करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान हमेशा हमारे साथ है और वे हमें हर परेशानी से उबारने के लिए तत्पर है। श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति का अभ्यास व्यक्ति को आत्मा के असली उद्देश्य तक पहुंचाता है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि भक्ति का मार्ग न केवल भगवान के साथ जुड़ने का रास्ता है बल्कि ये आत्मा के सच्चे उद्देश्य को पहचानने का भी साधन है। जब हम भगवान की भक्ति में अपने हृदय और मन को लगाते हैं तो हम आत्मा के असली स्वरूप को जान पाते हैं और समझते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। इस मार्ग पर चलने से व्यक्ति को न केवल आत्मज्ञान मिलता है बल्कि जीवन के उद्देश्य का स्पष्ट बोध भी होता है। भक्ति का मार्ग परम शांति और सुख की प्राप्ति का मार्ग है। भगवान की भक्ति से व्यक्ति को एक ऐसी शांति मिलती है जो बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहती है। भक्ति का ये मार्ग शांति की स्थायी स्थिति तक पहुंचाता है जहां व्यक्ति न केवल मानसिक शांति बल्कि आंतरिक सुख की भी अनुभूति करता है। श्री कृष्ण ने हमें यह बताया कि जब हम अपनी पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ भक्ति करते हैं तो हमारा जीवन परम शांति और सुख से भर जाता है जो किसी भौतिक सुख से अधिक मूल्यवान होता है। जो व्यक्ति अपने कार्यों को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं उनका जीवन और उद्देश्य स्थिर होता है। श्री कृष्ण ने यह कहा कि जो लोग अपने सभी कार्यों को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं उनके जीवन का उद्देश्य और दिशा स्पष्ट और स्थिर होता है। इस समर्पण से उनका जीवन
1: आपकी आवाज आपकी पहचान। आज के कलाकार प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं नोई मुंबई से अर्चना अग्रवाल। वेलकम है, स्वागत है अर्चना जी आपका इस मंच पर। जैसा कि हमारे लिसनर्स जानते हैं कि अर्चना जी बहुत ही सुरी लगाती हैं और हमारे लिसनर्स आपकी आवाज से वाकिफ हैं, परिचित हैं। आपकी सुरीली आवाज के साथ आगाज करते हैं आज के इस सुरीले सफर का, जिसका नाम है आपकी आवाज आपकी पहचान।
2: देखना
1: किसी को फिर मिलना, मिलके फिर बिछुड़ना, बिछुड़ के फिर मिलना, और यूं ही गीतों का बहते रहना। और देखने के ख्याल को बयां कर रही हैं हमारी आज की कलाकार मुंबई की अर्चना अग्रवाल। आपकी आवाज़ आपकी

तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, और उनके घने साए में बीते ये जिंदगी, देखा तो दीवाने हो गए, मिल गए तो जिन्ना जाने क्या होगा। आपने सुना अर्चना अग्रवाल और उनके को सिंगर के साथ एक खूबसूरत गजल, और अब अगला गीत देखने को लेकर ही है, देखते हैं क्या मिलता है सुनने को। अर्चना जी की सुरीली आवाज के साथ

जी हाँ, हम बात कर रहे थे देखने की, मिलने की और मिलके जीने मरने की। और इस गीत में हमारी आज की कलाकार अर्चना अग्रवाल अपने खूबसूरत गीत में अपने को सिंगर के साथ इस गीत को आवाज दे रही थी। कुछ तो जादू है, जुबां की कारीगरी है या नजरों की जादूगरी। आपकी आवाज आपकी पहचान, और जादू सी आवाज लेके हमारे साथ हैं अर्चना अग्रवाल मुंबई से अपने सुरीले को सिंगर्स के साथ। अगला गीत

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज के कलाकार, और हमारे आज के कलाकार हैं अपने सुरीले को सिंगर्स के साथ अर्चना अग्रवाल। आपकी आवाज आपकी पहचान, और इस प्रोग्राम की आज की आवाज आज की सुरीली सिंगर अर्चना अग्रवाल। आइए सुनते हैं आपका एक और खूबसूरत गीत।

आपके गीतों का प्यार मिला है हमारे लिसनर्स को, और हमारे लिसनर्स आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं और फीडबैक दे रहे हैं। इन सबको हम शामिल करेंगे प्रोग्राम के लास्ट में। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज के कलाकार, आपकी आवाज़ आपकी पहचान, और आज की आवाज़ सुरीली आवाज़ अर्चना अग्रवाल की मुंबई से, जयपुर रेडियो के इस मंच पर।

खूबसूरत आवाज हमारे आज की कलाकार की अर्चना अग्रवाल और माई हार्ट इज आल्सो बीटिंग, क्योंकि इतने सारे फीडबैक्स हैं, उन सबका नाम हम कैसे लेंगे, इस सोच में हैं हम। देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। सुन रहे हैं आज के कलाकार। आइए सुनते हैं जिंदगी का गीत, जिंदगी की बात। जी हाँ, देखना, मिलना, बिछड़ना, ये सारी चीजें एक जीवन में जिंदगी के साथ चलती है। जिंदगी प्यार का गीत भी है, और गीतों का ही प्रोग्राम है जिसका नाम है आपकी आवाज आपकी पहचान। हमारे साथ अर्चना अग्रवाल।

जिंदगी प्यार का गीत है, उसे हर दिल को गाना पड़ेगा। गीतों की सौगात अर्चना अग्रवाल लाई हैं आज अपने को सिंगर्स के साथ। आपकी आवाज आपकी पहचान, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड सुन रहे हैं आप, और हम तो ये कहेंगे कि आज जयपुर रेडियो पर आवाज का चांद निकल आया है।

जयपुर रेडियो की चांद, आज की कलाकार अर्चना अग्रवाल, आपकी आवाज, आपकी पहचान, हम और लिख के दे दें। हमारी आज की कलाकार बहुत सुरीली गाती हैं।

जी हाँ, और हम लिख रहे हैं उन लोगों के नाम जिन्होंने बहुत सारे फीडबैक्स हमें प्रेषित किए हैं, भेजे हैं, और हम उन सब के नाम आपको सुनाएंगे प्रोग्राम के अंत में। आइए सुनते हैं हमारी आज की कलाकार का ये अगला गीत, आपकी आवाज़ आपकी पहचान।

जी हाँ, हमारे लिसनर्स सच कहते हैं कि आपने हमारे लिसनर्स का दिल जीत लिया अपनी सुरीली आवाज से। आपकी आवाज, आपकी पहचान। डिजिटल वॉइस वर्ड का जयपुर रेडियो वर्ड सुन रहे हैं आप। और अगला खूबसूरत गीत अर्चना अग्रवाल और उनके को सिंगर्स के साथ।

0: पे दिल आ गया कि सजनी पे दिल आ गया।
1: नैनों में सपना, सपनों की बात, दिल की बात और बहुत ही ऊर्जावान गीत, एनर्जी से भरा हुआ आपकी आवाज, आपकी पहचान, सच में दिल जीत लिया इस खूबसूरत गीत ने। क्या कहें, निशब्द हैं आपकी आवाज, आपकी पहचान, खूबसूरत आवाज हमारी आज की कलाकारा अर्चना अग्रवाल की। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत, ऐसा दीवाना हुआ ये दिल आपके गीतों को सुन के, तुम जो मिले तो मानो मंजिल मिल गई। बहुत खूबसूरत गीत, आइए सुनते हैं आवाज अर्चना अग्रवाल की।

जी हाँ, हमने तो नाम रखा हुआ है जयपुर रेडियो की सिंगर अर्चना अग्रवाल पहले से ही। आपकी आवाज, आपकी पहचान, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ड सुन रहे हैं आप। आपकी आवाज, आपकी पहचान। आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला गीत। आज की कलाकार अर्चना अग्रवाल की आवाज में।

बेहतरीन प्रस्तुति। दोस्तों, आप सभी के जीवन में कभी ना कभी तो ऐसा क्षण अवश्य आया होगा जब आपने अपने अंतर्मन के तार उस अलौकिक आदर्श शक्ति से जुड़े हुए महसूस किए होंगे। कुछ ऐसे ही अनुभूति ये भजन सुनकर आपको अवश्य होगी, जिसे लेकर आ रहे हैं संजय गुप्ता जी।

जी हाँ, सत्य ही तो है, ईश्वर सदा हमारे साथ। ईश्वर वंदना एक माध्यम खुद को ईश्वर के और निकट ले जाने का। फिर उपस्थित होंगे एक और भक्तिमय प्रस्तुति के साथ। तब तक जपते रहिए हरि का नाम और सुनते रहिए जयपुर रेडियो।

नमस्कार मित्रों, भजनों की सरिता में मैं लक्ष्मी आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा को सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता है। चलिए इनकी आराधना में इस गीत को सुनते हैं, जिसे मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गंगा की लहरें फिल्म के लिए गाया है। इस गीत के लेखक थे मजरू सुल्तानपुरी और इसके संगीतकार थे चित्रगुप्त जी। हमारे लिए प्रस्तुत करने आ रही है।

वाह ललिता जी, बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। मित्रों, विश्व माता जगद्धात्री ही जगदम्बा माता है। देवी महात्म्य अच्छाई और बुराई के बीच एक लड़ाई का वर्णन करता है, जहां देवी दुर्गा राक्षस महिषासुर के खिलाफ सद्गुणों का नेतृत्व करती है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। आइए सुनते हैं जगदम्बे माँ की गुणगान इस भजन में, जिसे मूल रूप से अनूप जलोटा जी ने गाया है। इसके लेखक हैं राजेश जौहरी और जयपुर रेडियो के लिए

आपने तो एकदम से माहौल ही भक्तिमय बना दिया है। मित्रों, संतोषी माता या संतोषी माँ, इन्हें संतुष्टि की माँ के रूप में सम्मानित किया जाता है। संतोषी माता की पूजा विशेष रूप से उत्तर भारत की महिलाएं करती हैं। संतोषी माँ व्रत महिलाओं द्वारा लगातार 16 शुक्रवार करने से ऐसा माना जाता है कि देवी की कृपा प्राप्त होती है। आइए संतोषी माता की आरती सुनते हैं, जिसे मूल रूप से उषा मंगेशकर जी ने गाया है। इस गीत के लेखक थे कवि प्रदीप और इसके संगीतकार थे सी अर्जुन। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं मुंबई से विद्या शंकर जी।

बेहद खूबसूरत विद्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, पुराणों में दुर्गा देवी को पुरुष देवताओं की सहायता करने, राक्षसों को मारने के लिए सक्रिय करने के रूप में चित्रित किया गया है। दुर्गा देवी अपने आप में भी सक्रिय है महिषासुर के साथ उसकी लड़ाई में। दुर्गा माता को कई भुजाओं के साथ वर्णित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक के पास एक हथियार है और एक भयंकर सिंह की सवारी भी है। हालांकि एक विजयी योद्धा दुर्गा जी को एक सुंदर रूप में भी चित्रित किया जाता है और कभी कभी उन्हें माँ भी कहा जाता है, जो इस देवी के बहुआयामी स्वरूप को प्रदर्शित करती है। आइए सुनते हैं इनकी आराधना में एक और भजन, जिसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं।

0: वहाँ संजय जी, हम तो भाव गदगद हुए। मित्रों, हम नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। वास्तव में नवरात्रि आपकी आंतरिक शक्ति का जागरण और प्रकटीकरण है। ये जीवन की विनाशकारी और अस्थायी प्रकृति का प्रतीक है। माँ दुर्गा के अनुयायी ये भी मानते हैं कि माँ दुर्गा पृथ्वी पर और उसके बाद के जीवन में उनकी रक्षा करती है जो उन्हें सर्वस्व मानते हैं। चलिए हम उस देवी माँ की आराधना में ये प्रसिद्ध आरती सुनते हैं। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रहे हैं डॉक्टर लवलेश पुरुषोत्तम, मोनिका दास, शोमा रॉय और तनुजा मुंद्रा।
1: बोल साचे दरबार।

0: बहुत ही मधुर और भक्तिमय प्रस्तुति मोनिका जी, लवलेश जी, शोमा जी और तनुजा जी। मित्रों, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। जाते जाते मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आओ झूमे गाय समूह की ओर से आप सभी श्रोताओं का और जयपुर रेडियो का धन्यवाद करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
1: नमस्कार।

0: जय माता दी,
1: जय माता दी। आपने सुना संवेद स्वर में महिषासुर मर्दिनी पाठ, इसे स्वर दिया स्वर परिवार के इन सदस्यों ने। आदेश शर्मा शामली यूपी से, अंजू गौड़ मुंबई से, योगेंद्र गौतम यूएसए से, शुभी श्रीवास्तव रायबरेली से, तरुण खोटियान, अमृता, अनीता जी, कविता, सचिन अरोड़ा, निश्चल श्रीवास्तव और उनके सभी साथियों ने। और अब समीर और वीना चौधरी की आवाजों में ये स्तुति।

आपने सुना समीर और वीना चौधरी की आवाजों में ये भक्तिमयी प्रस्तुति देवी माता की स्तुति के रूप में, और अब समीर सुना रहे हैं ये भजन।

मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा का ये स्पेशल एपिसोड लेके मैं आरजे भूमिका आ गई हूँ जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चू रानू 16 के साथ। आज का ये एपिसोड स्पेशल इसलिए है

आप इस गीत के मुखड़े को सुनने के बाद तो समझ ही गए होंगे कि हम इस एपिसोड को स्पेशल क्यों कह रहे हैं। हमारा इशारा अमर गायक इमॉर्टल वॉइस मोहम्मद रफी साहब के बर्थडे की ओर है। आज के इस पहले गीत में अर्चू रानू यानी अर्चना अग्रवाल का साथ दे रहे हैं अनिल शर्मा।

एक ऐसा सिंगर जो न केवल बॉलीवुड को पूरी तरह एक मुकम्मल मुकाम तक पहुंचाने में सफल रहा, बल्कि इस यूनिवर्स को एक ऐसी आवाज दे गया जिसको सुनकर हम ईश्वर, भगवान या अल्लाह की आवाज की कल्पना के नजदीक पहुंच जाते हैं। आज के इस एपिसोड में आवाज के इस सम्राट को अपना स्वर नमन दे रही थी अर्जुन रानू 16 और आपका साथ दे रहे थे अनिल शर्मा 1961। और अब आंखों में काजल है, काजल में मेरा दिल है। किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए इस गीत को इस मंच पर लेकर आए हैं अर्जुन रानू के संग सोनी शिवकुमार।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा, और जयपुर रेडियो बार बार ये ही कहता है आपकी आवाज आपकी पहचान। आवाज की इस पहचान को कोई मिटा नहीं सकता, वो सदा हमारे साथ रहती है, संग रहती है। और इस मिलन गीत में अपनी आवाज के साथ हमारे संग हैं अर्चू रानू 16। आपके साथ स्वर में स्वर मिला रहे थे सोनी शिव कुमार। एक बार फिर सोनी शिव कुमार कह रहे हैं, मेरे प्यार में मेरे इंतजार में सच सच कहो तुमने क्या किया, कभी भूला कभी याद किया।

और हम भी सच सच बता रहे हैं आपको। आप सुन रहे हैं मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा, आरजे भूमिका के साथ। और मेरे साथ हैं जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चु रानू 16। इस प्रोग्राम में हम आपको ये भी बता देते हैं कि जिन सिंगर्स ने वर्ष 2024 में अर्चु रानू यानी अर्चना अग्रवाल के साथ इस मंच पर सॉन्ग गाए हैं, वो सब सिंगर्स अपना नाम पंजीकृत करवा सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9352784724 पर हमें मिले फीडबैक के आधार पर आपकी रेटिंग तय की जाएगी। आइए सुनते हैं ये शॉर्ट वर्जन गीत, जिसमें अर्चु रानू का साथ दे रहे हैं अजय देव मुनमुन।

जिसका जितना हो आंचल उसको सौगात उतनी मिलेगी। और इसके संग हम ये बात जोड़ना चाहेंगे कि आंचल का माप हो सकता है, लेकिन आवाज की पहुंच को कोई माप नहीं सकता, जान नहीं सकता। इसलिए हम कहते हैं गाए जा गीत मिलन के, क्योंकि जीवन हमारा सीमित है, आवाज की कोई सीमा नहीं है। इस मंच पर अर्जुन रानू के संग आ गए हैं जीवन की सुरीली दास्तां समझाने और गाने फनी भूषण, अर्जुन रानू के संग।

ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो जीवन की रीत है। ये जीवन है, जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। इस गीत में साथ दे रहे थे अर्चुरानू का फनी भूषण। और अब राजा रानी क्या कह रहे हैं अपनी सुरीली आवाजों में, किशोर फॉर यू आए हैं अर्चुरानू के संग इस शॉर्ट वर्जन में।

राजा रानी की प्यार की कहानी हमने सुनी अर्जुन रानू और किशोर फॉर यू की जुबानी इस गीत में, और इस सुरीले से शॉर्ट वर्जन के साथ ही जयपुर रेडियो के इस मंच से मैं आरजे भूमिका आपको एक बार फिर बतला देती हूँ इस मंच के नंबर। हमारे नंबर हैं 9352-784-724। इस नंबर पर आप अपना सिंगिंग का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और हमारे लिसनर्स अपना फीडबैक दे सकते हैं। आज की ये सुरीली सौगात सुपर सिंगर अर्जुन रानू के संग यहीं तक। आरजे भूमिका को विदा दें। नमस्कार।

बहुत शुक्रिया आरजे भूमिका। और इसके बाद अब आ गए हैं हमारे इस मंच के मेल सिंगर अनुराग, और अनुराग लेके आए हैं अपनी सुरीली आवाज में अपने गाए हुए कुछ गीत। आइए शुरुआत करते हैं, सुनते हैं आपका ये पहला गीत।

प्यार मांगा है तुम्हें से ना इनकार करो। और ये आवाज रही हमारे सुरीले सिंगर अनुराग की। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा का ये खास एपिसोड। हमारे संग है अर्चुरानो 16 और अनुराग सिंगर के रूप में। आइए सुनते हैं अगला गीत अनुराग की आवाज में।

0: दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, और यदि गीतों से प्यार हो जाए, बेशुमार हो जाए, तो आप जयपुर रेडियो पर आ जाएं। यही कह रहे हैं अनुराग, हमारे आज के मेल सिंगर। आपकी आवाज, आपकी पहचान और बहुत सारे तकनीकी कारणों के वजह से हम अनुराग से यही अनुमति लेंगे और जारी रखेंगे प्रोग्राम भूमिका आज के सिंगर अर्चुरानू के संग।
1: और जयपुर रेडियो बार बार ये ही कहता है, आपकी आवाज आपकी पहचान। आवाज की इस पहचान को कोई मिटा नहीं सकता, वो सदा हमारे साथ रहती है, संग रहती है। और इस मिलन गीत में अपनी आवाज के साथ हमारे संग हैं अर्चुरानू 16। आपके साथ स्वर में स्वर मिला रहे थे सोनी शिव कुमार। एक बार फिर सोनी शिव कुमार कह रहे हैं, मेरे प्यार में मेरे इंतजार में सच सच कहो तुमने क्या किया, कभी भूला कभी याद किया।

और हम भी सच सच बता रहे हैं आपको। आप सुन रहे हैं मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा, आरजे भूमिका के साथ। और मेरे साथ हैं जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चू रानू 16। इस प्रोग्राम में हम आपको ये भी बता देते हैं कि जिन सिंगर्स ने वर्ष 2024 में अर्चू रानू यानी अर्चना अग्रवाल के साथ इस मंच पर सॉन्ग गाए हैं, वो सब सिंगर्स अपना नाम पंजीकृत करवा सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9352784724 पर। हमें मिले फीडबैक के आधार पर आपकी रेटिंग तय की जाएगी। आइए सुनते हैं ये शॉर्ट वर्जन गीत, जिसमें अर्चू रानू का साथ दे रहे हैं अजय देव मुनमुन।

अजय देव मुनमुन साथ दे रहे थे अर्जुन रानू का इस गीत में जिसे आपने अभी अभी सुना। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। अपने गीतों के साथ और अगले गीत में अर्जुन रानू के साथ आ गए हैं धनंजय आर्य।

जिसका जितना हो आंचल उसको सौगात उतनी मिलेगी। और इसके संग हम ये बात जोड़ना चाहेंगे कि आंचल का माप हो सकता है लेकिन आवाज की पहुंच को कोई माप नहीं सकता, जान नहीं सकता। इसलिए हम कहते हैं गाए जा गीत मिलन के, क्योंकि जीवन हमारा सीमित है, आवाज की कोई सीमा नहीं है। इस मंच पर अर्जुन रानू के संग आ गए हैं जीवन की सुरीली दास्तां समझाने और गाने फनी भूषण, अर्जुन रानू के संग।

0: ये सर दर्द, ओह मेरी कमर, और ये बंद नाक और जुखाम, कौन दिलाएगा इन सबसे राहत?
1: अरे इन सबसे राहत दिलाएगा JMD का बाम वेदा, जिसके आयुर्वेदिक गुण सर दर्द, बदन दर्द और सर्दी को दूर भगाए।
2: JMD, द वंडर ऑफ आयुर्वेदा।
3: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले, हल्ले हल्ले दिदिन तिनक दिन, दिदिन तिनक दिन, अरे हल्ले हल्ले क्यों? जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त, और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

0: need to be sad now. You can do all of this on a click away through Jaipur Radio. Send messages and dedicate your favorite songs to your loved ones on your favorite program. Your voice, your identity. So what are you waiting for? Download Jaipur Radio app through Play Store and tune into your favorite songs. Celebrate your special occasion only on your own radio, Jaipur Radio.
1: आओ झूमे गाए आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो आपकी आवाज आपकी पहचान।
2: संगीत जगत से जुड़े सभी संगीत प्रेमियों को मुकेश चोपड़ा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज की शाम कुछ खास है क्योंकि हम आज एक ऐसे गायक के बारे में बात कर रहे हैं जिनको हम सब सुरों के बादशाह के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ सही पहचाना, वो कोई और नहीं हम सबके चहेते मोहम्मद रफी जी हैं। रफी जी का जन्म 1924 में अमृतसर के कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था और उनको बचपन में सब फिंकू के नाम से पुकारा करते थे। उन्होंने कई भाषाओं में गाने गाए जैसे कि असमीस, कोंकणी, भोजपुरी, तेलुगु, मैथिली, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली जैसी भाषाएं। और तो और उन्होंने इंग्लिश, फारसी, अरेबिक, सिन्हला, डच, स्पैनिश जैसी भाषाओं में भी गाने गाए। उन्होंने हर तरह के गीत भी गाए जैसे कि भक्ति गीत, शास्त्रीय गीत, गजल, कव्वाली, देशभक्ति गीत, मस्ती भरे गीत और दर्द भरे गीत। तो फिर आज के गीतों के कारवां का आगाज करते हैं 1977 की फिल्म हम किसी से कम नहीं से, जिसमें ऋषि कपूर जी थे। इस फिल्म को बेमिसाल संगीत से सजाया आरडी बर्मन जी की धुनों ने और सुरों को लफ्जों से सजाया मजरू सुल्तानपुरी जी ने। इस फिल्म के सारे गाने खूब धूम मचा रहे थे पर उस साल का फिल्म फेयर का बेस्ट सिंगर अवार्ड मिला मोहम्मद रफी जी को और साथ ही साथ उसी गाने के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। तो फिर आइए उसी गीत को सुनते हैं मेरी और विद्या प्रकाश जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1980 की फिल्म आप ऐसे तो न थे से है, जिसमें राज बब्बर और रंजीता कौर थीं। इस फिल्म का जादू भरा संगीत दिया उषा खन्ना जी ने और गीत लिखे निदा फाजली जी ने। क्यों ना इसी जादू भरे गीत को सुना जाए विद्या जी और बिंदु जी की मधुर आवाज में।

0: में।
1: क्या खूब पेशकश की। आइए अगला गीत सुनते हैं 1973 की फिल्म एक नारी दो रूप से, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा और रश्मि धवन थी। इस फिल्म में मात्र 4 गाने थे और सारे के सारे गाने सुपरहिट हुए। इस फिल्म का मधुर संगीत दिया गणेश जी ने और बेमिसाल शब्दों से सजाया असद भोपाली जी ने। चलिए इसी फिल्म के एक बेमिसाल गीत को सुनते हैं MD त्यागी जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1963 की फिल्म उस्तादों के उस्ताद से है, जिसमें प्रदीप कुमार के साथ शशिकला थी। इस फिल्म के सारे गाने खूब हिट हुए। इस फिल्म का बेहद शानदार संगीत दिया रवि जी ने और गीतों को शब्दों से पिरोया असद भोपाली जी ने। आइए इसी शानदार गीत को सुनते हैं अनिल झुमका वाला जी की मधुर आवाज में।

बर्फीली वादियां, बर्फीले पहाड़ और ये मस्त सर्द हवा। क्या कहा आपने, कोई फिल्म का नाम याद आया? सही कहा, कश्मीर की कली। ये एक ऐसी फिल्म थी जो कश्मीर की बर्फीली वादियों में शूट की गई थी। इस फिल्म के मस्ती भरे गीत लिखे SH बिहारी जी ने और उतना ही मस्ती भरा संगीत दिया OP नैयर जी ने। आइए इसी मस्ती भरे फिल्म के मस्ती भरे गीत को सुनते हैं जूही जी और सज्जाद जी की मधुर आवाज में।

कैसी लगी ये बर्फीले पहाड़ों की सैर? कश्मीर की कली एक ऐसी फिल्म थी जिसमें शम्मी कपूर के सभी गीतों को स्वर दिया मोहम्मद रफी जी ने, और सारे के सारे गाने खूब सुपरहिट हुए। चलिए एक और मस्ती भरा गीत सुनते हैं गायत्री जी और डॉक्टर आदेश जी की मधुर आवाज में।

कहिए कैसी रही ये मस्ती भरी पेशकश। चलिए अगला गीत सुनते हैं 1973 की फिल्म धर्मा से, जिसमें प्राण, नवीन निश्चल और रेखा थी। इस फिल्म का बेहद खूबसूरत संगीत दिया मास्टर सोनिक और ओम प्रकाश सोनिक जी ने, और इस फिल्म के गीत लिखे वर्मा मलिक जी ने। आइए इसी फिल्म का एक मस्ती भरा गीत सुनते हैं अंजलि दत्त के और संजीव जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अगला गीत जो आप सुनेंगे वो 1967 की सुपरहिट फिल्म तीसरी मंजिल से है, जिसमें शमी कपूर के साथ आशा पारिक थी। इस फिल्म के सभी गीतों में मोहम्मद रफी जी ने शमी कपूर जी को अपनी आवाज दी और सारे के सारे गाने सुपरहिट हुए। इस फिल्म के मस्ती भरे गीत लिखे मजरू सुल्तानपुरी जी ने और उन्हीं गीतों को संगीत से सजाया आर डी बर्मन जी ने। आइए इसी फिल्म का एक खूबसूरत गीत सुनते हैं संगीता जी और कविता जी की मधुर आवाज में।

कहिए, थी ना ये एक खूबसूरत प्रस्तुति। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1961 की फिल्म जंगली से है, जिसमें शम्मी कपूर जी के साथ सायरा बानू थी। इस फिल्म ने कई फिल्म फेयर अवार्ड जीते और हर एक गीत सुपरहिट हुआ। इस फिल्म के शानदार गीतों में हसरत जयपुरी जी की कलम का जादू देखते ही बनता है और उन्हीं गीतों को मस्ती भरे सुरों में सजाया शंकर जयकिशन जी ने। आइए इसी फिल्म का एक मस्ती भरा गीत सुनते हैं डॉक्टर तरुणा जी और रामकृष्ण जी की मधुर आवाज में।

क्या शानदार गीत पेश किया। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1967 की फिल्म अदालत से है, जिसमें प्रदीप कुमार जी के साथ नरगिस थी। इस फिल्म के सारे गाने इतने मशहूर हुए कि आज तक गुनगुनाए जाते हैं। और इस फिल्म का संगीत दिया मदन मोहन जी ने और इस फिल्म के गीत लिखे राजेंद्र कृष्णन जी ने। आइए इसी फिल्म का एक मद भरा गीत सुनते हैं श्रुति जी और संजय जी की मधुर आवाज में।

0: वाह, बेहतरीन प्रस्तुति। दोस्तों, ख्वाहिश तो यही है कि आपके साथ जुड़े रहें, पर समय हमें रोक रहा है। वक्त है आपसे विदा लेने का। आशा करता हूँ कि आज की पेशकश आपको पसंद आई होगी। जाते जाते आओ झूमे गाएं ग्रुप की ओर से मैं मुकेश चोपड़ा आप सभी का और जयपुर रेडियो का धन्यवाद करता हूँ।
1: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले दिदिन तिनक दिन दिदिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

0: need to be sad now. You can do all of this on a click away through Jaipur Radio. Send messages and dedicate your favorite songs to your loved ones on your favorite program. Your voice, your identity. So what are you waiting for? Download Jaipur Radio app through Play Store and tune into your favorite songs. Celebrate your special occasion only on your own radio, Jaipur Radio.
1: उफ, ये सर दर्द, ओह मेरी कमर, और ये बंद नाक और जुखाम, कौन दिलाएगा इन सबसे राहत?
2: अरे इन सबसे राहत दिलाएगा जेएमडी का बामवेदा, जिसके आयुर्वेदिक गुण सर दर्द, बदन दर्द और सर्दी को दूर भगाएं।
3: जेएमडी, द वंडर ऑफ आयुर्वेदा।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान, और मैं आपके साथ पहली बार गुरप्रीत लेकर आई हूं एक शाम, 100 साल एक आवाज। सुना है आज हवा भी गुनगुनाएगी, और रफी साहब की जन्म शताब्दी में हर धुन रफी साहब की याद दिलाएगी। तो चलिए रफ़ी साहब की यादों के इस गहरे समंदर में डूबते हैं और उनकी अमर आवाज़ को एक बार फिर से दिल से महसूस करने के लिए बुलाते हैं जयपुर रेडियो में पुणे से आज के कलाकार। एक आवाज़ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, आपके चहेते जिन्हें आप बार बार सुनना चाहते हैं, और वो हैं सुदर्शन फाटक। वेलकम सुदर्शन जी, आपका जयपुर रेडियो में स्वागत है।
5: नमस्कार दोस्तों, आज 24 दिसंबर और आज के दिन आपके सामने रफी जी के गाने पेश करना, ये मेरे लिए किसी अवार्ड रिवॉर्ड से कम नहीं है। सबसे पहले थैंक यू जयपुर रेडियो फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अगर मैं बोलना चाहूँ आज के बारे में, आज के दिन के बारे में, रफ़ी जी के बारे में, तो मैं इतना ही कहूँगा कि समंदर से गहरा और आसमान से ऊंचा अगर कुछ है तो वो रफ़ी जी का सुर है। रफ़ी जी को जब सुनते हैं हम दूर से, सिर्फ सुनते हैं, तब ऐसा लगता है कितनी मुलायम आवाज़, कितने आसानी से गा रहे हैं, लेकिन वही जब हम कोशिश करने जाते गाने की, तब समझता है एक एक सुर कितना गहरा है। और आज मैंने जो कुछ भी कोशिश की है वो शायद उनके नाखून के बराबर भी ना हो, लेकिन ये मेरी तरफ से आज के दिन उनके 100वीं जन्मतिथि के अवसर पर मेरी तरफ से एक आदरांजलि है उनको।
4: थैंक यू सो मच सुदर्शन जी, सच अ ब्यूटीफुल थॉट। फ्रेंड्स, सुनते रहिए जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान, और मैं आपके साथ पहली बार गुरप्रीत। 100 साल पहले एक आवाज ने इस दुनिया में कदम रखा जो हर दिल के दर्द का मरहम बन चुका था, मोहम्मद रफी। रफी साहब का हर सुर एक दुआ बन के उठा और उनकी हर धुन मोहब्बत का पैगाम बन चुकी थी। तो चलिए सुनते हैं पहला नगमा हर दिल अजीज सुदर्शन की आवाज।

बेहद खूबसूरत अंदाज सुदर्शन जी का। और किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, हुजूर चांद से पर्दा कीजिए कहीं चुरा ना ले चेहरे का नूर। फ्रेंड्स, जिस तरह आपकी महबूबा का नूर कोई चुरा नहीं सकता, उसी तरह रफ़ी जी के किरदार की खुशबू कभी फीकी नहीं हो सकती। तो आइए ले चलती हूँ उनकी लाइफ के कुछ अनमोल किस्सों की तरफ और सुदर्शन फाटक के साथ उनके गीतों की तरफ। रफ़ी जी के परिवार का म्यूज़िक से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी उनका दुनिया का सबसे महान सिंगर में शुमार होना सिर्फ उनके जुनून और हार्डवर्क का सबूत है। जिस तरह सैगल साहब के शो में लाइट गुल हो जाने की वजह से मोहम्मद रफ़ी को गाने का मौका मिला और म्यूज़िक डायरेक्टर श्याम सुंदर जी ने उन्हें बॉम्बे आने का न्योता दिया, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री बिकॉज ऑफ हिज हार्डवर्क। चलिए इतिहास के एक पन्ने में से निकला एक सुकून भरा अगला गीत सुनते हैं दिल को छूने वाली सुदर्शन की आवाज़ में।

जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही तबीयत बहलती थी नन्हे रफी जी की, जब एक फकीर गाते हुए उनके गांव की गली से गुजरता था, जो रफी जी की इंस्पिरेशन थे। और रफ़ी साहब उस फकीर से इतने इंस्पायर्ड थे कि उस फकीर के आने से उनका हर दिन मानो रोशन हो जाता और बहार छा जाती थी। तो सुनते हैं ऐसा ही एक गीत सुदर्शन की नर्म आवाज़ में।

सो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है आपको ये सफर सुदर्शन और गुरप्रीत के संग? मुझे पूरा यकीन है कि दिलदार गायक के दिलदार श्रोताओं का दिल भी बड़ा होगा, जैसे रफी साहब का किरदार। क्या आपको पता है कि नए आने वाले कई म्यूजिक डायरेक्टर्स को मौका दिया था रफी जी ने, और सिर्फ एक रुपए की साइनिंग अमाउंट लेकर गीत गाए? कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग आजकल? तो जिनका किरदार एक राजा जैसा हो, उनके लिए ये गीत तो बनता ही है। फ्रॉम अनदर वंडरफुल ह्यूमन बीइंग सुदर्शन, जो वर्चुअल सिंगिंग प्लेटफॉर्म स्टार मेकर की फैमिली BML यानी बॉलीवुड म्यूजिक वर्ल्ड के कैप्टन यानी राजा हैं। तो चलिए सुनते हैं अगला।

अब तक है जमाने पे जिस आवाज का जादू, उसके मेरे ऊपर उपकार बड़े थे। कहना है रफी के लिए बड़ा मुश्किल, इंसान बड़े थे या कलाकार बड़े थे। ऐसा कहना था हमारे म्यूजिक डायरेक्टर रविंद्र जैन जी का। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार राजेश खन्ना काका और संगीत जगत के मसीहा मोहम्मद रफी की ऐसी जुगलबंदी हुई कि आज भी हर आशिक अपनी महबूबा के लिए वो गीत गाकर उसकी आंखों में डूब जाना चाहता है। उस गीत का जादू आज भी बरकरार है। तो सुनते हैं सुदर्शन की जादुई आवाज में वो गीत।

सो फ्रेंड्स, अब तक हमने जो गीत सुने, हर गीत ने हमारे दिल में रफी जी के रंग छोड़े हैं सुदर्शन की आवाज में। अब जो अगला गीत है वो एक लाइवली एंड प्लेफुल सॉन्ग है, नहीं शम्मी जी पर नहीं बल्कि बॉलीवुड के एक सौम्य और संजीदा एक्टर नवीन निश्चल पर फिल्माया गीत। तो दोस्तों, आनंद लेते हैं मस्ती और जोश से भरे अगले गीत का।

सुदर्शन फाटक की आवाज में ये गीत एक नए रंग में दिखाई दिया। तो चलिए बढ़ते हैं मस्ती से सरोबार एक और गीत की तरफ।

भर गए ना आप जोश में? ये जोश और उमंग ऐसे ही बरकरार रखी हमारे जोशीले गायक सुदर्शन फाटक ने। और मोहम्मद रफी जी की बात करें तो चाहे जॉनी वॉकर का मजाक मस्ती भरा अंदाज हो, दिलीप कुमार की गहरी और दर्द भरी गजल, अमिताभ बच्चन का पावरफुल परसोना हो या शम्मी कपूर का एनर्जेटिक और फ्लर्टेशियस स्टाइल, रफी साहब की आवाज हर हीरो के लिए एकदम फिट लगती थी।

उनका गाना सुनते तो ऐसा महसूस होता जैसे वो खुद ही गा रहे हों। और इसी तरह हमारे आज के कलाकार सुदर्शन फाटक भी हर गीत उसी अंदाज से बखूबी निभा रहे हैं। जो आप सुन रहे हैं, तो सुनते हैं अगला गीत सुदर्शन की आवाज में।

जैसे रफ़ी जी के रोमांटिक नंबर्स उनके सिग्नेचर बन चुके थे, उसी रोमांटिक इमोशंस को सुना सुदर्शन की रोमांटिक आवाज़ में। सुनते हैं अगला क्लासिक सॉन्ग।

ऐसे तो रफी साहब के कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन जब धर्मेंद्र जी के लिए जट्टियमला पगला दीवाना नाच नाच कर स्टूडियो में रिकॉर्ड किया रफी जी ने, तो धर्मेंद्र ने उनको गले लगा कर कहा, वाह क्या अंदाज में गाया है। तो रफ़ी ने उनसे कहा कि मैंने तो अपना काम कर दिया है, अब पर्दे पर लाना तुम्हारा काम है। तो सुनते हैं धर्मेंद्र जी पर फिल्माया गया यमला पगला दीवाना से कहीं हटकर अगला गीत।

यूं तो मेरी हर बात समझ जाते हो तुम, फिर भी क्यों मुझे इतना सताते हो तुम? तुम बिन कोई और नहीं है मेरा, क्या इसी बात का फायदा उठाते हो तुम? सुदर्शन की आवाज ने इस गीत को पूरी तरह महसूस करवाया। और आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान, 100 साल एक आवाज, मोहम्मद रफी की आवाज। और मैं आपके साथ पहली बार गुरप्रीत लेकर आई हूं अगला गीत।

0: नाउमीद थे चारागार मेरी हालत को देखकर, पाया तबस्सुम तेरा दवा उनकी काम कर गई। रफ़ी जी का बेहद खूबसूरत सॉन्ग आपने सुना सुदर्शन की आवाज़ में। किसी को उसके कद का गुमान था, वो आसमान था, सर झुका कर बैठा था। रफ़ी जी की सिंगिंग इतनी एफर्टलेस और सोलफुल थी कि लगता ही नहीं था कि कोई गाना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। सैड सॉन्ग में वो दर्द भर देते जो सीधा दिल को छू जाता, और कॉमेडी सॉन्ग में ऐसी मस्ती कि चेहरे पर हंसी आ जाए। तो चलिए सुनते हैं उनका एक और रंग सुदर्शन की आवाज में।
1: मारे, खेल मारे, जंप फेल।

आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो, आपकी आवाज़ आपकी पहचान। और आज के कलाकार हैं सुदर्शन फाटक पुणे से, और मैं आपके साथ पहली बार गुरप्रीत। चेहरे पर इसी हंसी को बरकरार रखें, और आज की शाम अपने अंतिम पड़ाव पर है, तो थोड़ा और करीब आ जाएं और सुनिए ये गीत।

दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। आज की शाम का आखिरी नगमा, ये गीत उन्हें हमारे दिलों में हमेशा के लिए अमर रखेगा। तो दोस्तों, इस गीत और अपने जज्बात के साथ रफ़ी साहब को एक सच्चे ट्रिब्यूट में महसूस कीजिए। सुदर्शन की आवाज़ और गुरप्रीत यानी मेरे साथ पहली बार, सुनते हैं उनका बहुत ही खूबसूरत गीत सुदर्शन की आवाज़ में।

0: नौशाद साहब के कुछ अल्फाज रफ़ी साहब के लिए। महफिलों के दामनों में, साहिलों के आसपास, यह सदा गूंजेगी सदियों तक दिल के आसपास। मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी।
1: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज़ आपकी पहचान। एक और खूबसूरत प्रोग्राम आपके समक्ष पेश है और ये प्रोग्राम लेके आए हैं यूके से

रवि कुमार। रवि साहब के गीतों को खूबसूरत तरीके से आपने पिरोया है, आपने अपने स्वर में गाया है और उन गीतों को हम तक पहुंचाया है, तो हम वेलकम करते हैं रवि कुमार साहब का जयपुर रेडियो वर्ल्ड पर। आपकी आवाज, आपकी पहचान और हम क्या दें मिसाल।

आवाज में जो एक्टिंग अदायगी थी रफी साहब के, वही अदायगी रवि कुमार साहब की है। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं ये खूबसूरत गीतों का गुलदस्ता जिसे लेके आए हैं रवि कुमार साहब यूके से हमारे साथ। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो फर्ट।

अमानत फिल्म के लिए इस गीत को रफी साहब ने गाया था और आज हमारे साथ गा रहे हैं रवि कुमार साहब। इस गीत का संगीत दिया था रवि ने और गीत था साहिर लुधियानवी का। बेहद खूबसूरत गीत हम सुन रहे हैं रवि कुमार साहब की आवाज में। आपकी आवाज आपकी पहचान, जी हाँ, जयपुर रेडियो की पहचान बन चुकी है आपकी आवाज। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, आइए सुनते हैं।

गीत की अपनी जुबान होती है, गीत की अपनी कहानी होती है, और रवि कुमार ये कहानी कह रहे हैं अपनी जुबानी। आपकी आवाज, आपकी पहचान, अब क्या मिसाल दूं।

इंसान बन गई है किरण महताब की, अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबा की। एक खूबसूरत गीत आरती फिल्म से लिया गया है और ऑन स्क्रीन प्रदीप कुमार और मीना कुमारी एक्ट्रेस पे फिल्माया गया था। इस गीत का संगीत दिया था रोशन ने और इस गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी साहब ने। बेहद खूबसूरत गीत है ये और इस गीत को हम रोमांटिक गीतों में अमर गीत कह सकते हैं। और हमारे आज के जो स्वर हैं रवि कुमार साहब, उन्होंने बेहतरीन तरीके से इस गीत को अपनी आवाज से सजाया और आप तक पहुंचाया। बहुत बधाई, आपकी आवाज आपकी पहचान।

तुमसा नहीं देखा, इस फिल्म का ये गीत शमी कुमार साहब पर ऑन स्क्रीन फिल्माया गया था और अमिताभ ही साथ में एक्ट्रेस के रूप में था और गीत था साहिर लुधियानवी साहब का और आवाज हमारे इस प्रोग्राम में रही रवि कुमार साहब की। आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफी स्पेशल प्रोग्राम और उसको स्वर दे रहे हैं हमारे आज के स्वर रवि कुमार। आपकी आवाज, आपकी पहचान।

फिल्म असली नकली का ये गीत देवानंद साहब और साधना एक्ट्रेस पर फिल्माया गया ऑन स्क्रीन। म्यूजिक शंकर जयकिशन साहब का था और गीत को लिखा था हसरत जयपुरी साहब ने और अपनी आवाज अपने स्वर में सजाया हमारे लिए यूके से रवि कुमार साहब ने। ये खूबसूरत गीतों का गुलदस्ता आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से। आपकी आवाज आपकी पहचान और रफी साहब का एक बहुत मशहूर गीत है ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी। आइए सुनते हैं रवि कुमार साहब से ये गीत। आपकी आवाज आपकी पहचान

इस गीत को फिल्म महबूब की मेहंदी के लिए रफी साहब ने गाया था। म्यूजिक इस गीत का लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का रहा और गीत लिखा था आनंद बख्शी साहब ने। और आपके लिए आज के स्वर में रवि कुमार साहब ने ये गीत आप तक पहुंचाया। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड।

जब भी मौसम की बात चलेगी तो लोफर फिल्म का ये गीत कभी भी हमारे जहन से दूर नहीं हो सकता। इस गीत को ऑन स्क्रीन एक्टर धर्मेंद्र साहब और मुमताज पर फिल्माया गया था। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी साहब ने।

आपने सुना फिल्म प्यार ही प्यार का ये गीत। ऑन स्क्रीन धर्मेंद्र और वैजयंती माला पर फिल्माया गीत आनंद बख्शी साहब ने लिखा था और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और हमारे आज के स्वर रवि कुमार आप तक पहुंचा रहे थे ये गीत, आपकी आवाज आपकी पहचान। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड आज के

तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। जी हाँ, गीत को संगीत से सजाया था एसडी बर्मन साहब ने और इसको ऑन स्क्रीन देवानंद साहब और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया था। और आप तक इस गीत को पहुंचा रहे थे हमारे आज के स्वर, आज के कलाकार रवि कुमार साहब। आपकी आवाज़, आपकी पहचान।

आज के छोटे प्रोग्राम आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो वर्ल्ड से। अभी आपने सुना एक गीत जिसे आवाज दे रहे थे रवि कुमार आज के स्वर। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी साहब ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का था और धर्मवीर फिल्म से इस गीत को लिया गया। ऑन स्क्रीन जीनत अमान और धर्मेंद्र पे फिल्माया गया था ये गीत। आपकी आवाज आपकी पहचान आप सुन रहे हैं आज के स्वर प्रोग्राम में रवि कुमार साहब के वो गीत जो रफी साहब ने गाए हैं।

मुझे दर्द-ए-दिल का पता न था मुझे आप किस लिए मिल गए। ये खूबसूरत गीत आकाशदीप फिल्म से था। इसका संगीत दिया था चित्रगुप्त ने और गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने। और आज इसको स्वर दे रहे थे हमारे आज के स्वर रवि कुमार साहब। आपकी आवाज आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। खूबसूरत गीतों का ये गुलदस्ता लेके आए हैं यूके से रवि कुमार साहब जयपुर।

0: हसरत जयपुरी साहब का गीत, शंकर जयकिशन का संगीत और ऑन स्क्रीन शमी कपूर साहब और आशा पारिक पर फिल्माया गया ये गीत फिल्म पगला कहीं का से था और इसे आज स्वर दे रहे थे इस मंच से हमारे आज के स्वर रवि कुमार साहब यूके से। दुआ है हमारी आवाज सुने आपकी दुनिया सारी। रवि कुमार साहब बहुत बधाई बहुत शुभकामनाएं, यूं ही गाते रहें और यूं ही हमारे लिसनर तक अपने गीत पहुंचाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का ये संगीतमय सफर यहीं तक, आपकी आवाज आपकी पहचान, बहुत आभार बहुत शुभकामनाएं रवि कुमार साहब यूके से। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: हे हाय दोस्तों, मेरा नाम है, अब तक तो आप मेरी आवाज पहचान गए होंगे। इतना पुराना और लंबा रिश्ता जो बन गया है आप लोगों के साथ, कोई फेमस सेलिब्रिटी तो नहीं फिर भी खजा

खाने की कमी नहीं है मेरे पास, अनमोल खजाने लेके आई हूँ अपने आओ झूमे गाए म्यूजिक ग्रुप से, सिर्फ जयपुर रेडियो आपकी आवाज आपकी पहचान पे। मेरा नाम है रति भार्गव और पास में मेरे जो कोहिनूर हैं, नवरत्न हैं, उनके नाम कुछ यूं हैं: किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आरडी बर्मन, मोहम्मद रफी, आशा भोसले, गुलजार और हमारी बॉलीवुड जगत के जगमगाते सितारे जैसे माधुरी, श्रीदेवी, डिंपल कपाड़िया, शर्मिला टैगोर, जूही चावला, जयप्रदा, जया बच्चन, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, अनिल कपूर, शाहरुख खान, सनी देओल, संजय दत्त, आशा पारेख, शर्मिला, नीतू वगैरह वगैरह। हमारा आज का ये एपिसोड है बॉलीवुड की चांदनी और लोगों के दिलों पर राज करने वाली हवा हवाई पे। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए हैं, मैं बात कर रही हूँ श्रीदेवी की, जो सिनेमा जगत की पहली महिला सुपरस्टार रह चुकी हैं। श्रीदेवी को लेडी अमिताभ बच्चन और पहली सुपरस्टार का दर्जा दिया जाता है। 13 अगस्त 1963 को जन्मी श्रीदेवी का जन्म हुआ था शिवकाशी तमिलनाडु में। श्रीदेवी ने 4 साल की उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था और चाइल्ड एक्टर के तौर पर साल 1967 में तमिलनाडु कंदन करुणे में काम किया था। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले श्रीदेवी तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में काम कर चुकी थी। श्रीदेवी ने बॉलीवुड में 4 दशक से भी ज्यादा समय तक लोगों को अपनी एक्टिंग से मनोरंजन किया। तो चलिए दोस्तों, आपको श्रीदेवी से जुड़े कुछ अनकहे किस्से सुनाते हैं और उनके कुछ बेहतरीन गाने जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। तो सुनते हैं श्रीदेवी का ये जादू भरा परफॉर्मेंस बिमल और कविता की मधुर आवाज।

चांदी के पर्दे पे जो चांदनी थी, जो बेजान सीन को अपने प्रेजेंस से जिंदा कर देती थी, और जिनकी आंखों में इन्फेक्शस सी चमक थी, एन एक्ट्रेस हु लिटरली ब्रॉट स्क्रीन टू लाइफ, वो लाइफलेस कैसे हो सकती हैं? श्रीदेवी, आपने हमें जादू दिखाया और जादू सिखाया। मेरी आंखों के सामने उभर रहे हैं वो इम्पेक्शियस एक्सप्रेशंस, वो चमकती आंखें, वो दमकते एक्सप्रेशंस, और हम तो उन्हें ऐसे ही याद रखेंगे। ट्रांसपेरेंट छतरी, ट्रांसपेरेंट रेनकोट, ट्रांसपेरेंट परफॉर्मेंसेस, श्रीदेवी सच में इस जादू के लिए शुक्रिया। फिल्म लम्हे को 30 साल हो चुके हैं। इस फिल्म में श्रीदेवी और अनिल कपूर की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना, तानिया और जगदीश की मधुर आवाज।

क्या आप जानते हैं दोस्तों, श्रीदेवी का वास्तविक नाम श्री अम्मा अय्यर अयप्पन था। पर्दे पर उनके लिए श्रीदेवी नाम तय किया गया। बता दें कि श्रीदेवी उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने धर्मेंद्र और उनके बेटे सनी देओल दोनों के साथ काम किया। श्रीदेवी के करियर की बात करें तो उन्होंने चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर साउथ इंडस्ट्री से शुरुआत की थी। इसके बाद बॉलीवुड में उन्होंने 16 सावन से डेब्यू किया, जिसमें वह जितेंद्र के साथ नजर आई थी। जितेंद्र के साथ 16 फिल्मों में से 13 उनकी सुपरहिट फिल्में रहीं। सुनते हैं ये हमारा अगला गाना फिल्म हिम्मत वाला से, बोल इंडिवर के, म्यूजिक दिया बपीदा ने और गाया बेहद खूबसूरती से किशोर दा और लता मंगेशकर ने। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं आपके लिए किशोर और संगीता अपनी सुरीली आवाज से।

श्रीदेवी ने 90s में आई थिंक लड़कियों से बहुत सारा प्रेशर हटा दिया है ना। हमेशा स्लिम होना, हमेशा खूबसूरत दिखना, एलिगेंट होना, प्रॉपर होना, स्टाइल मारना कोई जरूरी नहीं, ये समझा दिया। बी योर नेचुरल मैड क्रेजी सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ, आई मीन जो मूछे लगा के आंखें भेंगी करके भी पूरे देश का दिल जीत सकती थी, वो कितनी हेल्दी रोल मॉडल थी, सोच के देखिए। पर्दे पर अपने चुलबुले अंदाज से सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाली थी हवा हवाई, हर उम्र के लोगों की पसंदीदा थी। अगर आप भी तनाव फील कर रहे हो, अपना मूड अच्छा करने के लिए बस ये गाना सुन लीजिए और आपका मूड झट से अच्छा हो जाएगा। इसे सुनाने आ रही हैं गायत्री और मनीषा आपके लिए।

सिग्नेचर श्रीदेवी इन ऑल हर ग्लोरी, एक ही इंसान एक साथ मैड, इनसेन, सेक्सी, एलिगेंट, ब्यूटीफुल एंड स्टेलर परफॉर्मर कैसे हो सकता था। एक तरफ ऐसे गानों की मैडनेस सच एज न जाने कहां से आई, या करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, या फिर ऑफ कोर्स हवा हवाए न जाने कितने, तो दूसरी तरफ सेंसुअलिटी जो स्क्रीन पे आग लगा दे, मतलब जाबाज ले लो या मिस्टर इंडिया का दूसरा गाना ले लो एंड मेनी अदर्स, बीच में हम मेस्मराइज्ड। सुनते हैं दोस्तों वो गाना जाबाज मूवी का, हर किसी को नहीं मिलता, श्रीदेवी की स्टेलर परफॉर्मेंस जिसने आग लगा दी थी, मेरी यानी रति और गगन की आवाज में।

हिंदी फिल्मों में समाज को संपूर्ण बनाने की सारी विधा मौजूद है। नायक की खुद्दारी हो या नायिका का त्याग, या फिर आपसी प्रेम भाव का आचार विचार हो या समाज को एकजुट रखने का संदेश, यह सभी चीजें हिंदी फिल्मों में दिखाई जाती हैं। नायक और नायिकाओं के बीच प्रेम और आकर्षण की मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी और अनिल कपूर पर फिल्माया गीत कांटे नहीं कटते दिन ये रात इश्क और हुस्न की इंतहा को जग जाहिर करता है। किशोर कुमार और अलीशा चिनॉय की आवाज ने इस गीत को मधुरतम बनाया है। गीत आई लव यू के भाव से शुरू होता है और इसी भाव के साथ खत्म भी होता है। आइए सुनते हैं ये गीत प्रेरणा और रेस की आवाज में।

1989 में प्रदर्शित फिल्म चांदनी का ये गीत, इसमें श्रीदेवी और ऋषि कपूर ने पानी में आग लगा दी थी। हुस्न की अदा बारिश के मौसम में इस गीत में काफी सुहावनी बन पड़ी है। गीत संगीत और श्रीदेवी के बेजोड़ नृत्य के गीत को मधुर अंदाज दिया है आनंद बख्शी के लिखे इस गीत में। गीत काफी मनोहरी बना। इसे सुनते हैं मानवेंद्र और संगीता की सुमधुर आवाज में।

मैं आपके साथ रति भार्गव अपने आओ झूमे गायन के कलाकारों के साथ आज के इस स्पेशल सेगमेंट में याद कर रहे हैं उन्हें जो कुछ ज्यादा ही जल्दी चली गई। हम उन्हें तो मिस करेंगे ही और अभी उन्हें जितनी बेहतरीन फिल्में करनी थी उन्हें भी मिस करेंगे। 80 के दशक में एक और गीत देखने और सुनने को मिला जिसमें हुस्न और इश्क का बेजोड़ संगम था। हमारा अगला गाना हुस्न और इश्क की अदा पर चांदनी मूवी का ये गाना सुनते हैं प्रियंका और गिरीश की मधुर आवाज में।

श्रीदेवी को हिंदी सिनेमा में एक कमर्शियल हीरोइन के रूप में जाना जाता था। उन्होंने अपने करियर में नागिन से लेकर चाल पास, चांदनी, जुदाई, खुदा गवाह, नगीना, मिस्टर इंडिया जैसे कई शानदार फिल्मों में दमदार अभिनय किया। अभिनेत्री फिल्मी पर्दे से दूर हो गई थी, हालांकि 15 साल के लंबे समय के बाद 2013 में उन्होंने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में शानदार वापसी की। सुनते हैं हमारा अगला नगमा दो दोस्तों की दास्तान पे, और इसे सुनाने आ रहे हैं मुकेश और मंदार अपनी मधुर आवाज में।

0: रानी मेरा नाम, जूली और सोलवा सावन जैसी चुटपुट फिल्में करने के बाद हिंदी सिनेमा को अपने करियर का अगला मुकाम बनाने वाली श्रीदेवी 1983 में जितेंद्र के साथ फिल्म हिम्मत वाला की तो पूरी हिंदी पट्टी में हंगामा हो गया था। इतनी मादक और इतनी मोहक अभिनेत्री इससे पहले हिंदी सिनेमा में कोई दूसरी उनको नजर ही नहीं आई। इसके बाद श्रीदेवी ने हिट फिल्मों की लाइन लगा दी थी। आखिरी रास्ता, नगीना, जाबाज और कर्मा जैसी फिल्म करने के बाद वह 3 साल में ही नंबर 1 की कुर्सी पर आ बैठी थी। इसके बाद मिस्टर इंडिया, निगाहें से होते हुए करियर उनका अगला टर्निंग पॉइंट था चांदनी। श्रीदेवी को सफेद लिबास में ढली चांदनी देख उस समय हर लड़की उन्हें कॉपी करना चाहती थी। श्रीदेवी की ये फिल्म गवाही देती है इस बात की कि आज 30 साल के बाद भी चांदनी की चमक फीकी नहीं पड़ी है। और सुनते हैं उनका ये सुपरहिट गाना रूही और विश्वजीत की सुमधुर आवाज में।
1: आउच!

बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया।

0: कौन मैं?
1: यस
0: क्यों?
1: कोई फूल कोई तोहफा,

0: सपनों से सुंदर लग रही थी चांदनी बनकर इस गाने में, याद रहेंगी वो हमें हमेशा। रेस्ट इन पीस श्रीदेवी जी, थैंक्स फॉर द मैजिक। श्रीदेवी के जितने सॉन्ग्स करो कम है, इतने सॉन्ग्स हैं, इतनी बातें हैं, पर ट्रिब्यूट पूरा नहीं लग रहा। भरपूर तब होता है ट्रिब्यूट जब भरपूर जी कर जाए वो जिन्हें हम चाहते। ऐसे ही अचानक से बेवक्त बीच में से जब कोई चला जाए, व्हाट डू यू से, हाउ डू यू रिमेम्बर देम। जिस चेहरे में इतनी जान थी वो अब बेजान है, अभी तक यकीन नहीं होता है। इतनी जिंदा दिल परफॉर्मेंस जो दे गई वो अब खुद जिंदा नहीं है, पर रहेंगी ना हमेशा उसी चांदी के पर्दे पर जिसकी वो चांदनी थी, एंड ऑफ कोर्स हमारे दिलों में भी।
1: भक्ति प्रभा, भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
2: नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम भजनों की सरिता में। लक्ष्मी का सादर प्रणाम। मित्रों, भक्ति गीत प्रार्थना की एक विशेष अंश है, भगवान के साथ एक मिलाप का समय है। प्रार्थना में हम अपने आप को एक ऐसी शक्ति के सामने आत्मसमर्पण करते हैं जो

वाह संजीव जी, बहुत खूब। मित्रों, भारतीय परंपरा के कई महान संत थे, जैसे रामानुजाचार्य, संत रविदास, कबीर आदि, जिन्होंने हमें धार्मिकता का सही मार्ग दर्शाया। इनमें से एक थे गुरु अर्जन, जिन्होंने सिखों के आदि ग्रंथ को

संकलित किया जिसमें पिछले कई गुरुओं के गुरुवाणी शामिल थे। गुरु ग्रंथ साहिब में आधे से अधिक शब्द गुरु अर्जन द्वारा रचित हैं। चलिए एक शब्द सुनते हैं ललिता कृष्णमूर्ति की मधुर वाणी में।

वाह ललिता जी, अति मधुर प्रस्तुति। मित्रों, भक्ति संगीत में ऐसी शक्ति है कि वह सभी को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। संगीत ऐसा सात्विक आनंद है जो जाति, धर्म, लिंग, आयु, वर्ग सभी से परे है। संगीत सबके लिए है। संगीत को न सीमाओं से बांधा जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है। ये आबाद धारा सबके लिए सर्वत्र सुलभ है। हमारा अगला गीत फिल्म जॉनी मेरा नाम के लिए इंदी वर्जी ने लिखा था और इसे संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने। इसे मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गाया है और जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं विद्या शंकर जी।

वाह विद्या जी, इस सुमधुर प्रस्तुति से मन प्रफुल्ल हुआ। मित्रों, हमारे देश के संतों ने समय समय पर यह शिक्षा दी है कि वास्तव में भगवान और उनके नाम के बीच कोई अंतर नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान का नाम स्वयं भगवान से भी श्रेष्ठ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम का नाम भगवान राम से भी श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत में ये कथा है कि कलयुग में श्री हरि के नाम के जाप से ही जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि सब में राम और राम में है सब। तुलसी का प्रभु भी वही, नानक का रब भी वही। नाम भजन में ज्योति असीमित। देश है एक राम धुन जो मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गाया है प्रसिद्ध एल्बम राम श्याम गुणगान में। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं स्वागता पॉल और संजय हर ने।

संजय जी हम मन विभोर हुए। मित्रों, भगवान राम एक अवतार पुरुष थे, असाधारण पुरुष थे, करुणा मूर्ति थे। ये सभी के प्रति स्नेह और अपनापन का सामान्य भाव रखते थे, चाहे वह सज्जन हो या दुर्जन हो। वह तो ऐसे करुणा मूर्ति थे जो उनके शत्रु के प्रति भी स्नेही और दयालु थे। चलिए सुनते हैं एक भजन जो श्री अरबिंदो सोसाइटी के मेंबर्स द्वारा रचाया गया है। इस भजन को स्वरबद्ध किया था जगजीत सिंह जी ने। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं संजय फड़के जी और मैं लक्ष्मी बालचंद्र।

0: सूरज संजय जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा साथ दिया। मित्रों, सुविचार, सत्संग और निरंतर भगवान के जाप से सकारात्मक ऊर्जा निर्मित होती है। हम आशा करते हैं आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से प्रकाशित हो।
1: आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज, आपकी पहचान।
0: मित्रों, ये एक सामान्य बात है कि संकट के समय हम भगवान की ओर रुख करते हैं। हम घोर विनम्रता और प्रत्याशा दोनों के दोहरे रवैया के साथ आते हैं। हम परमेश्वर को आदेश तो नहीं देते, लेकिन हम साहसपूर्वक, श्रद्धापूर्वक उनके सिंहासन के सामने आते हैं, ये कहते हुए कि मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे। नक्शलियालपुरी की ये पंक्तियां फिल्म राम नगरी के लिए लिखा गया था। इसे संगीत से सजाया था जयदेव जी ने। इस गीत को मूल रूप से हरिहरन जी और नीलम सानी जी ने गाया है। आपके लिए इस गीत को प्रस्तुत करने आ रहे हैं संजय फड़के जी।

वासंजय जी, हम तो भाव गदगद हुए। मित्रों, एक व्यक्ति का आंतरिक जीवन और बाहरी ब्रह्मांड के बीच कोई अलगाव नहीं है। मन एक दर्पण की तरह है, जो कुछ भी सामने आता है वह उसमें प्रतिबिंबित होता है। आप जिस किसी के बारे में सोचते हैं, उसकी भावनाएं और उसकी मनस्थिति आप पर टिकी रहती है। अगर आप खुश लोगों के बारे में सोचते रहते हैं तो आप खुश हो जाते हैं। दुखी चीजों के बारे में सोचकर आप दुखी महसूस करते हैं। इसलिए साहिर लुधियानवी जी ने लिखा है, तोरा मन दर्पण कहलाए। इस गीत को काजल फिल्म के लिए संगीतकार रवि ने स्वरबद्ध किया था और आशा भोसले जी ने अपने मधुर वाणी से इसे सजाया है। जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं मोनिका दश और अनुराधा वैद्यनाथन।

वाह मोनिका जी और अनुराधा जी, अति मधुर प्रस्तुति। हमारे अगले भक्ति गीत में कौशल्या मैया कागर से पूछती है, तुम सच बोलो और मुझे बताओ कि मेरे प्राणों से प्यारे वे लोग कब आएंगे। तुलसीदास जी की गीतावली से ये रचना बैठी सगुन मनावती माता, आइए सुनते हैं संजय हरने जी की आवाज में।

बड़ी सुंदर प्रस्तुति संजय जी, आइए स्वागत करते हैं इस खूबसूरत शिव धुन के साथ। इस पारंपरिक धुन को प्रस्तुत करने आ रहे हैं संजय हरने जी, संजय फड़के जी, अनूप शर्मा जी, जय कृष्णन जी, ललिता कृष्णमूर्ति, श्वेता, शोमा सी रॉय, प्रेरणा जकादार, मधुलिका शर्मा और स्वयं मैं लक्ष्मी बालचंद्रन।

0: बेहद खूबसूरत प्रस्तुति, हम सचमुच मन विभोर हुए। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे थे प्रोग्राम भजनों की सरिता। इस भक्तिमय संगीतमय साधना को प्रस्तुत कर रही थीं लक्ष्मी बालाचंद्रन। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: आप सुन रहे थे बिंदु व्यास की आवाज में डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का, ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले दिदिन तिनक दिन दिदिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो आपका अपना रेडियो,
2: अपना शहर अपनी शान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
3: अरे ये लाहौर लाखों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
4: क्या हुआ चचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
3: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए हैं, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
4: तो मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
3: अरे बेटा कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटरू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ वहाँ घूम।
4: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
3: अच्छा?
4: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी।
3: अच्छा कौन सा ऐप है वो?
4: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
3: जयपुर रेडियो? पर बेटा हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर।
4: चचा देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
3: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
4: लाइए मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो।
0: आज की हमारी सिंगर है दुबई की।

जी हाँ, इस प्रोग्राम का नाम भी हमने यही रखा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और आप सुन रहे हैं राम रेडियो। जी हाँ, स्वतः ही ये नाम मुंह से निकला है और आप तक पहुंचा है। और जैसे ही हमने इस प्रोग्राम को अनाउंस किया, जयपुर रेडी के सभी सिंगर्स ने हमें बहुत ही उत्साह दिया और हर्ष से भरे हुए अपने गीत अपनी आवाज में हमें प्रेषित किए। हम उन सब का आदर करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं और सभी के गीत हम इस मंच पर इस प्रोग्राम के तहत रखेंगे, जिसका नाम है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और आज की इस संगीत यात्रा की शुरुआत हमने की है दुबई की बहुत ही सुरीली सिंगर संगीता माल्या। कुछ गीतों में आपका साथ देंगे यूके के रवि कुमार। तो शुरू करते हैं ये सुरीली यात्रा का विशेष प्रोग्राम, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।

हे राम, तुम्हारा नाम स्वयं ही काव्य है। कोई सिंगर बन जाए सहज सौभाग्य है, और ये सहज सौभाग्य जयपुर रेडियो के सभी सिंगर्स को प्राप्त है। राम का आशीर्वाद, उनकी कृपा हमारे सभी सिंगर्स पे, लिस्टर्स पे बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम वेलकम करते हैं संगीता माल्या का। आपकी आवाज, आपकी पहचान।

राम स्वनाम है धाम, राम धन्य है नाम, राम को प्रणाम। आइए राम को बार बार प्रणाम।

राम भजन करमन। राम है स्वनाम धाम, राम है स्वनाम धन, राम धन्य है नाम, राम को प्रणाम, राम धाम को प्रणाम। अयोध्या में आए हैं श्री राम, वो राम जो केशव है, जो माधव है, जो अच्युत है और जो सबके दृष्टा है, उस राम को प्रणाम, उस केशव को प्रणाम। अगले भजन में संगीता माल्या, अच्युतम केशवम।

सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का राम रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रोग्राम पायू जी मैंने राम रतन धन पायू, और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं दुबई से संगीता माल्या। हे राम, जग में सबसे सांचा तेरा नाम, हे अवध बिहारी पधारो, स्वागत है अभिनंदन है आपका। इस गीतमाला में इसको सफल बनाएं और हमारे सिंगर्स के साथ आप भी गाएं। मैं खोजता रहा अपने आप को, खोजता रहा सच को, लेकिन सच तो केवल केवल और केवल आपका ही नाम है। संगीता माल्या के साथ रवि कुमार।

आप सुन रहे हैं राम रेडियो और राम से कृपालु कौन है? कोई नहीं ना, उसकी दयालुता, उसकी कृपालुता को प्रणाम है, शत शत प्रणाम है, अभिनंदन है, स्वागत है। आप सुन रहे

श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। ये खूबसूरत भजन आपने सुना रवि कुमार और संगीता माचिया की आवाज में। आप सुन रहे हैं राम रेडियो।